सुप्रभात श्रोताओं, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून सन 2026। विविध भारती पर हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

को बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का

0: विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती,
2: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन। सुकरात का ये कथन है कि संसार में सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने का सरल और निश्चित उपाय यही है कि मनुष्य वास्तव में जैसा है वैसा ही अपने आप को व्यक्त करे। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। झरोखा के ठीक बाद यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 220। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता, श्रृंखला गजतत वाद्य। कलाकार हैं डॉ प्रकाश महाड़िक। इस श्रृंखला की चौथी कड़ी आज आप सुनेंगे। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा शाम 6:45 पर। सुबह 7:00 कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। सुबह 8:15 का समय है त्रिवेणी कार्यक्रम का और 8:30 पर कार्यक्रम चित्रलोक। सुबह 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर। इस कार्यक्रम का दोबारा प्रसारण रात 9:30 पर होगा। सुबह 10:00 कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। कवि प्रदीप के सुपुत्री एवं चित्रकार मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का तीसरा भाग आपको सुनवाया जाएगा। सुबह 11:00 कार्यक्रम होगा रंग तरंग और 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1:00 का समय है सुरीला सफर इस कार्यक्रम का और दिन में 2:00 सुनिए त्रिवेणी। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे और दिन में 3:00 का समय है सखी सहेली इस कार्यक्रम का। शाम 4:00 सुनिए कार्यक्रम पिटारा। इसके अंतर्गत कार्यक्रम सेहतनामा, जीवन शैली और योग इस विषय पर योग शिक्षक शारदा अग्रवाल से राजेंद्र त्रिपाठी की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। शाम 5:00 कार्यक्रम छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने।

शाम 7 बजे सुनिए कार्यक्रम जयमाला और 7:45 पर एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में, जिस फिल्म के गाने आप सुनेंगे उस फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने। रात 8 बजे कार्यक्रम हवा महल झलकी नीम हकीम, इसके लेखक हैं राजकुमार वाल्टर और निर्देशक हैं गोपाल सक्सेना। रात 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और 9 बजे सुनिए आपके लिए। रात 9:30 पर कार्यक्रम आज के फनकार अभिनेत्री और गायिका सुरैया पर केंद्रित होगा ये कार्यक्रम। रात 10 बजे का समय छाया गीत कार्यक्रम का है और 10:30 पर ढलती जाए रात। रात 11 बजे सुनिए कार्यक्रम रंग तरंग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 220।

चित्रकूट की सभा में भरत की अनुनय विनय सुनकर श्री राम के मन में असमंजस उत्पन्न हुआ और उन्होंने विह्वल हो भरत जो और जैसा चाहे वैसा ही करने का वचन दे डाला। ये सुनकर जहां एक ओर उपस्थित जनसमुदाय हर्षित हुआ, वहां दूसरी ओर देवताओं के मन में नैराश्य उत्पन्न हो गया। देवगण सहित इंद्र आशंकित हो गए, यदि भरत के आग्रह पर श्रीराम अयोध्या लौट गए तो सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उन्हें मालूम है कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त के वश में हैं। भक्त प्रहलाद ने नृसिंह के रूप में भगवान को प्रकट किया था। अतः देवताओं ने भरत के हृदय में प्रविष्ट होकर अपनी योजना को फलवती बनाने का निश्चय किया। देवगुरु बृहस्पति ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी। फलस्वरूप भरत के मन में अपना आग्रह त्याग कर ये विचार आया कि श्री राम की आज्ञा पालन करने में ही कल्याण है। उन्होंने स्वामी की प्रशस्ति करते हुए निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया।

0: गजतत्वाद्य प्रस्तुत है गजवाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की अगली कड़ी। कलाकार हैं डॉक्टर प्रकाश महाडिक।
1: कल हमने लोक संगीत में प्रचलित विभिन्न सारंगियों की बात की थी। आज हम शास्त्रीय संगीत में प्रचलित सारंगी के संबंध में विचार करेंगे। सच पूछा जाए तो सारंगी हमारी मूल्यवान और समृद्ध वाद्य संगीत परंपरा का परिचायक है। गज से बजाए जाने वाले वाद्यों में सारंगी एक ऐसा वाद्य है जिसका प्रथम सप्तक अचल थाट में, दूसरा सप्तक रागानुरूप और तीसरा सप्तक संवाद स्वरों में मिलाया जाता है। गायन में सारंगी की संगत से यदि वादक सुरीला हुआ तो जिस भरावट व आकर्षण की वृद्धि होती है वह अपने आप में अनुपम है। इसके आविष्कर्ता के संबंध में अमीर खुसरो, सारंग खान, मियां कल्लू खान, हकीम बकरात गो तथा रावण आदि के नाम लिए जाते हैं। इसके गज का आकार धनुष के समान होता है और धनुष को सारंग भी कहा जाता है। इसीलिए यह भी संभव है कि धनुष से बजाए जाने के कारण इसका नाम सारंगी पड़ा हो। वर्तमान पीढ़ी के श्रेष्ठ सारंगी वादक पंडित राम नारायण जी ने चर्चा के दौरान बताया कि एक जमाने में सारंगी को सौरंगी कहते थे और सौरंगी से बिगड़कर सारंगी नाम प्रचलित हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके आविष्कर्ता के संबंध में विभिन्न मत पाए जाते हैं। मध्यकालीन ग्रंथकारों ने सारंगी का उल्लेख भिन्न भिन्न नामों से किया है किंतु विस्तृत वर्णन नहीं किया है। फिर भी इतना अवश्य कहा जा सकता है कि 13वीं शताब्दी तक यह अल्प रूप में प्रचारित हो चुकी थी। संगीत राज ग्रंथ के आधार

आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 15वीं शताब्दी तक यह प्रचलित हो गई थी। यही कारण है कि आईने अकबरी और राग दर्पण ग्रंथों में सारंगी का वर्णन मिलता है। 17वीं शताब्दी में रचित राग दर्पण में सारंगी वादकों का वर्णन भी है। इसके अलावा संगीत नारायण ग्रंथ में सारंगी वीणा का विस्तृत विवेचन किया गया है। आइए इस मधुर वाद्य सारंगी पर राग किरवानी सुनते हैं। कलाकार हैं उस्ताद अब्दुल लतीफ खान।

अब हम सारंगी के आकार पर विचार करेंगे। सारंगी की लंबाई लगभग 2 फीट होती है। इसके नीचे वाले भाग को मंधान कहते हैं, जिसे चमड़े से मढ़ दिया जाता है। घुरच अर्थात ब्रीच की व्यवस्था इसी मंधान में की जाती है। मध्य भाग को छाती अथवा गला कहते हैं। छाती की बाईं ओर 24 छोटी छोटी खुटियां तरबों के लिए लगाई जाती है। सबसे ऊपर वाले भाग को मगज कहते हैं, जिसमें दाएं बाएं मुख्य तार हेतु 2-2 बड़ी खुटियां और 11 तरबों हेतु छोटी खुटियां लगाते हैं। इस प्रकार इसमें मुख्य 4 तार और 35 तरबों के तार लगाए जाते हैं। वर्तमान में सारंगी वादक मुख्य 4 तार को सामान्यतः इस प्रकार मिलाते हैं। प्रथम तात का तार मध्य सप्तक षड्स्वर में, दूसरा तात का तार मंद्र सप्तक के पंचम स्वर में, तीसरा

पांच का तार मंद्र सप्तक के शरद स्वर में और चौथा तार फौलाद का पंचम में अथवा मध्यम में राग के अनुसार मिलाते हैं। गज को दाहिने हाथ में पकड़कर तारों पर घर्षण किया जाता है। सितार, वायलिन आदि वाद्यों में स्वर उत्पत्ति हेतु अंगुलियों से तार को दबाया जाता है, जबकि सारंगी में स्वर निकालने हेतु अंगुलियों के नाखून का स्पर्श या घर्षण किया जाता है। भारतीय संगीत की सूत, घसीट, गमक, कर्ण, खटका, मुरकी आदि विशेषताओं को अभिव्यक्त करने की क्षमता रखने के बाद भी सारंगी जितनी लोकप्रिय होना चाहिए उतनी लोकप्रिय नहीं है, जिसका कारण वाद्यगत कठिनाई और व्यवहारिक जीवन से है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उस्ताद बुंदू खां और पंडित राम नारायण जी ने सारंगी वाद्य को एकल वाद्य के रूप में स्थापित करने का हर संभव प्रयत्न किया और इसमें इन्हें सफलता भी प्राप्त हुई है। अब हम पंडित राम नारायण जी के सारंगी का रसास्वादन करते हैं।

गज तत्ववाद्य। गज वाद्यों पर आधारित इस श्रृंखला की ये कड़ी अभी आपने सुनी। कलाकार थे डॉक्टर प्रकाश महाडिक, प्रस्तुति सहायक थे जयंत श्रीवास्तव और प्रस्तुतकर्ता चारूबाला खरे। संगीत सरिता के लिए इस श्रृंखला की रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी भोपाल की सौजन्य से। अब आज का संगीत सरिता कार्यक्रम संपन्न होता है।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले जो गीत आपको सुनवा रहे हैं ये दिल्लगी फिल्म का गाना सुरैया और श्याम की आवाजों में, शकील बदायूनी की बोल, संगीत नौशाद अली का। आज अभिनेत्री और गायिका सुरैया को उनके जन्मदिवस पर हम याद कर रहे हैं।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

अनमोल घड़ी फिल्म का ये गाना सुरैया की आवाज में आपने सुना, तनवीर नकवी के बोल, संगीत नौशाद का। अगला जो गीत है ये बड़ी बहन फिल्म का गाना सुरैया की आवाज में, कमर जलालाबादी के बोल, संगीत हुस्नलाल भगतराम का।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गीत शकील बदायूनी का लिखा हुआ श्याम सुंदर का संगीतबद्ध किया ये गाना सुरैया की आवाज में, फिल्म का नाम चार दिन।

अंतराल का समय पूरा हो चुका है, हम हाजिर हैं कार्यक्रम के बाकी गानों को सुनवाने के लिए। दास्तान फिल्म का गाना सुरैया की आवाज में, शकील बदायूं के बोल, संगीत नौशाद का।

प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि।

0: मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही है वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
3: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का कार्य भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
2: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ उन्हें समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
4: श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
2: मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में कल शाम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर

0: उन्होंने युवाओं को अत्याधुनिक विषयों में दक्ष बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और उनके संघर्ष को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
1: आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं आज से शुरू हो रही हैं। एक रिपोर्ट।
2: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, NCR और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं।
3: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बाराबंकी जिले में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। वहीं अंबेडकर नगर जिले में पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदली है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार GST, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने कल अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार

0: इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही हैं वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

0: ये आवाजें थी सुरैया और तलत महमूद की, शब्दकार मिर्जा गालिब, संगीत गुलाम मोहम्मद का, फिल्म मिर्जा गालिब।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: हम है रही प्यार के इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं चांद और सूरज। इस फिल्म का गाना सुवन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत सलील चौधरी का।

मोहब्बत इसको कहते हैं, ये फिल्म का नाम है। मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है खय्याम का।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको अनजान का लिखा हुआ गाना हम सुनवाते हैं। जीएस कोहली का संगीत, फिल्म का नाम नमस्ते जी।

अंतराल के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजों में मेरे सनम इस फिल्म का गाना। इस गीत को लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई ओपी नैयर ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। अगला गाना आपको सुनवाते हैं वक्त फिल्म का गाना, आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में, साहिल लुधियानवी के

वक्त फिल्म का ये गाना आपने सुना आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में, सहेल लुधियानवी के बोल, संगीत रवि का। इस गीत के साथ ही आज का हम हे राही प्यार के ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के?
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
5: हॉर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
4: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और

0: मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थीं। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
5: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना

0: सूचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
1: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
0: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
2: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
4: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा, विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार।

0: दैनिक जागरण में है। एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations

0: कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
1: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा है, अनंत है, आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं,
0: ऑयल पेंटिंग
1: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर, उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना वो अच्छा लगता है, कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहां बंध जाते हैं
0: जी,
1: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
0: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर,
1: वही तो वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
0: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने
1: आपको
0: आर्ट?
1: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
0: अच्छा जी।
1: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
0: जी जी जी।
1: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरी कला है मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहां पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
0: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला को मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है, अपनी कला को एक कला प्रति रहने दिया है,
1: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप है वो कम हो जाएगा, तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती हूँ, वो वैसे ही रहता है वहाँ पर। आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के लिए,
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
0: तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं और आसमान की
0: बात कर रहे हैं। तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
1: जी।

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहे, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं, या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा है, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी।
1: लोगों के पास, जैसे मैंने कहा, बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है, तो क्या कर सकते हैं? तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कॉन्सेंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कॉन्सेंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए, तो उसके लिए पोर्ट्रेट है। चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए
0: जी।
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं, तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी, तो वो क्या सीखना पसंद करती हैं?

0: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है। कपड़े पे पेंटिंग करना, तो अभी मेरे पास दो हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे को, बच्चों को, सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं, उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
1: मॉडर्न आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, इस तरह का, सभी तरह का
0: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको, आप अपना पेंटिंग बनाइए।
1: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
0: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं।
1: बहुत सुंदर।

0: मित्तल जी, आपने बताया कि आप इतने प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: तो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है।
0: हाँ हाँ।
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं, जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर के आजू बाजू रहती है
1: और रोज खाने के लिए आती है। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना

0: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल जी, वो क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में।
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ
0: जी।
1: और मैं ये कहना चाहूंगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए
0: जी,
1: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए
0: जी। बहुत खूब, बहुत शानदार। मितुल जी, आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनके जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को, उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपके हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं आभारी हूँ विविध भारती, मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
0: जी,
1: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे थे गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से, और आज की ये बातचीत बस यहीं तक। अब मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, नमस्कार।
2: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था तीसरा और अंतिम भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: उजाले।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया रंगून पिया है महासटैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ कटी लेके ओ रास्ते पर ओ सर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: ये एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: एक ताजमहल, एक लता मंगेशकर, एक विविध भारती। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

रंग तरंग इस कार्यक्रम को लेकर आज आपके साथ मैं हूँ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, दिन कोई भी हो सुहाना सा ही लगता है जब तक हमारा मन अच्छा है। जब मन दुखी होता है तो फिर चाहे बाहर कितनी भी खुशियां हो लेकिन हम अच्छा महसूस नहीं कर पाते क्योंकि मन सुखी नहीं है। तो मन को खुश रखना जरूरी है, उसके लिए मन की शांति जरूरी है। तो आइए इसी बात के साथ आज के इस कार्यक्रम की आगाज करते हैं। मिश्र संगीत के इस कार्यक्रम में आपको सबसे पहले आज सुनवाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की लिखी ये कविता, जिसे सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने और अपनी मीठी आवाज में इन्होंने इसे गाया है, जगजीत सिंह ने ही। और एल्बम का नाम है नई दिशा।

और आइए अब जगजीत सिंह के संगीत निर्देशन में सुनते हैं इन्हीं की आवाज में ये गजल। एल्बम का नाम प्यार का पहला खत। इस गजल को लिखा है हस्ती ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फाल्गुनी पाठक की आवाज में। एल्बम का नाम दिल झूम झूम नाचे। गीत और संगीत ललित सेन का।

देखा है तेरी आंखों को इस एल्बम का गीत अभी आपने सुना, आवाज और शब्द रचना साधु की, और इस गीत को सुरों में ढाला ललित ने।

का गाया और लिखा गीत आपने सुना तन्हा दिल इस एल्बम से। राम संपत ने इसे संगीतबद्ध किया था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर का लिखा ये गीत। संगीत से सजाया है साजिद वाजिद ने और एल्बम का नाम दीवान।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं काबुल एक्सप्रेस, इस फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है राघव सचर ने और संगीतबद्ध किया है राघव सचर ने। इस गीत को लिखा है आदित्य धर ने।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में सुनिए नक्शलायलपुरी का लिखा ये गीत, ललित सेन ने सुरों में ढाला है और एल्बम का नाम मेरी चुनर उड़ उड़ जाए।

संस्कृत भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता, सिर्फ विविध भारती पर।

लकी अली का गाया गीत आपने सुना, उन्हीं के संगीत निर्देशन में सईद असलम के बोल थे और सिफर था एल्बम का नाम। और आइए अब आपको सुनवाते हैं तू ही मेरे रब की तरह है, इस एल्बम से गीत सईद कादरी के बोल हैं और गोल्डी का संगीत।

आज का मिश्र संगीत का ये कार्यक्रम रंग तरंग अब यहीं पर संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूशनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का आगाज कर रही हूं मैं नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। लीजिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में आनंद बख्शी के। मुकेश की आवाज में ही गीत है, फिल्म का नाम है आनंद, गुलजार के बोल हैं और सलील चौधरी का संगीत। आइए आपको बता दें कि जैसे आज जो हम थीम ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कहते हैं। कहते हैं कि सपने ही वो रंग है जो हमारी आंखों में बसकर जीवन को नई दिशा देते हैं। कुछ सपने मुस्कान बनकर आते हैं तो कुछ उम्मीदों का दीप जलाते हैं और कुछ

0: हमें अपने प्रियजनों की यादों से जोड़ देते हैं। आज के इस यादों की महफिल कार्यक्रम में हम सुनेंगे ऐसे ही मधुर गीत जिनमें सपनों की दुनिया बसी है। आइए चलते हैं ख्वाबों और सुरों के इस खूबसूरत सफर पर। तो लीजिए, जैसा कि आपको बताया, मुकेश का गाया गीत आनंद फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं।
1: मैंने

सपनों की खास बात क्या है जानते हैं साथियों? खास बात यह है कि शायद जिन लोगों को अब हम असल जिंदगी में नहीं देख सकते, या फिर ऐसी कुछ हमारी महत्वाकांक्षाएं जो हमारी असल जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती हैं, वो कहीं ना कहीं हम सपनों के जरिए उन खुशियों को पा लेते हैं, उन लोगों से मुलाकातें कर लेते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए और सपने में हमें पता भी नहीं चलता कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो सपना है या सच, हमें तो वो सच ही लगता है। इसलिए

0: सपने हमेशा ही अच्छे लगते हैं, तब तक जब तक वो खुशनुमा सपने हैं। आइए इसी के साथ सुनते हैं झुक गया आसमां। इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।
1: कौन है जो सपना

मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। जो झुक गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया।

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से और आज का यादों की महफिल कार्यक्रम केंद्रित है सपने इस थीम पर। तो आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
1: और आइए अब आपको सुनवाते हैं राजेश रोशन और अमित खन्ना का लिखा ये गीत। धुन बनाई है राजेश रोशन ने, आवाज है किशोर कुमार और मन्ना डे की, फिल्म का नाम कार।

0: ये आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं गौरव श्रीवास्तव।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ गौरव श्रीवास्तव। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जब भी बात होती है तो हमने देखा है कि बीते एक दशक में, या यूं कहें कि जब से मोदी सरकार आई है, बीते 12 वर्षों में लगातार इसमें प्रगति देखने को मिल रही है। और ये प्रगति इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो अलग अलग तरीके से इसमें इनिशिएटिव्स लिए गए और लगातार जो इस पर फोकस किया गया, उससे आज जो क्रांति आई है वो बदलते दौर की एक नई तस्वीर पेश कर रही है। इन तमाम अहम पहलुओं पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इसके अलावा स्पेस सेक्टर हो, इसके अलावा अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं या क्वांटम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ये सब कुछ इतना बड़ा हुआ है बीते 12 वर्षों में, अभी हाल में कहां पे है और किस तरह से जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है वो क्या कुछ कहता है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
1: पहला सवाल सर यही है, 12 साल और उसके बाद जो लगातार इनिशिएटिव्स लिए गए, बहुत बड़ी गति मिलती हुई नजर आई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को, कैसे इस सफर को देखते हैं और क्या बड़ा होने वाला है जिससे भविष्य और ज्यादा बेहतर भारत का नजर आता है?
2: जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, जहां तक विज्ञान को लेकर के अगर हम बात करें या साइंस टेक्नोलॉजी की, तो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ
1: जी।
2: उसका प्रमुख बिंदु एक तो ये था कि इसको बहुत ज्यादा प्राथमिकता हासिल हुई। पहले साइंस टेक्नोलॉजी संबंधित विषयों को बहुत ज्यादा प्राथमिकताएं नहीं मिलती थी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स की तरफ से, और प्रधानमंत्री जी स्वयं इसमें रुचि लेने लगे। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, ये समझते हुए कि अगर आज की दुनिया में हमें इससे आगे बढ़ना है तो हम साइलोज में नहीं चल सकते
1: जी।
2: और तीसरा,

0: विज्ञान में जहां ईज ऑफ रिसर्च वो तो लाजिम अनिवार्य है, उसके साथ साथ अंततः उसका लक्ष्य है ईज ऑफ लिविंग फॉर अ सिटीजन, तो उसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया गया
1: जी।
0: हमारे बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव गत 12 वर्षों में ऐसे रहे हैं जिनका सीधा सीधा ताल्लुक नागरिक के साथ है या नागरिक के जीवन के साथ है, और जिसका परिणाम ये हुआ है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया जो पहले विज्ञान संबंधी समाचारों को या गतिविधियों को बहुत ज्यादा प्राथमिकता नहीं देता था, उसमें भी जिस तरह से हमारा स्पेस की अचीवमेंट्स हुई, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि स्पेस हैज गिवन अस स्पेस इन मेन स्ट्रीम मीडिया चंद्रयान के माध्यम से। अरोमा में जब लेवेंडर आया, अभी हाल ही में दो या तीन दिन का कैंप था मुंबई
1: जी,
0: में
1: जी,
0: तो हमारे युवा लगभग 30-40 या 50 लाख का लेवेंडर तेल फरोख्त करके आए हैं, तो एक नया एवेन्यू रोजगार का आ गया। इसी प्रकार यदि हम बात करते हैं क्वांटम की, तो मीडिया का भी उससे ताल्लुक है
1: जी,
0: डिफेंस का भी ताल्लुक है, और इसलिए सबको रुचि भी आई। हमने अपने लिए 8 साल का टारगेट रखा था, उसमें से आधा हिस्सा जो हमें 4 साल तक तवक्को थी कि हम पूरा कर लेंगे, वो 3 साल में ही मुकम्मल हो गया। तो अनेकों ऐसा स्काई कास्ट जो भी इंस्टॉल किया गया है, जिसके माध्यम से जब कोहरे का मौसम होता है तो बहुत दिक्कत आती है फ्लाइट्स में
1: जी,
0: पायलट को भी दिक्कत आती है, यात्रियों को भी असुविधा होती है, तो उसमें बहुत सारी बेहतरी हो कि इस प्रकार से फॉग की प्रेडिक्शन और ज्यादा एक्यूरेट प्रिसाइज हो टाइमिंग। तो ये चूंकि नागरिकों के साथ संबंधित ये विषय हैं, इसी प्रकार चाहे आप हमारा गवर्नेंस का ले लीजिए, तो हमारा सीपी ग्राम मॉडल है जिसको हमने एआई चैटबॉट के साथ जोड़ दिया, अभी 2 ही दिन पहले की बात है, तो उससे भी आम नागरिक, जहां एक जमाने में 2014 से पहले कुल मिला करके हमारे यहां सरकार में 2 लाख शिकायतें आती थी पूरे हिन्दुस्तान में साल भर में, आज वही संख्या बढ़कर के 25-30 लाख हो गई, क्योंकि लोगों की रुचि बढ़ी, क्योंकि वी वर प्रॉम्प्ट, वी वर रिस्पॉन्सिव, वी आर फॉलोइंग टाइम लाइन। हमारे 95-97% जहां पुराने जमाने में 2-2.5 महीने लगते थे अगर जवाब आए, जवाब कई बार आता ही नहीं था, वहां हमने ये सुनिश्चित किया कि हर ग्रीवेंस का जवाब भी आएगा, एआई ड्रिवन भी होगा और कोई ह्यूमन बात भी करेगा उससे, और उसकी टाइम लाइन घटा करके 12-13 दिन कर दी गई और बहुत जल्दी 1 हफ्ता हो जाएगी।
1: बिल्कुल सर, इसके अलावा भी हमने देखा है कि जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो भी हमें हाल ही में देखा कि बहुत बड़ा कीर्तिमान और उपलब्धि हासिल करते हुए नजर आया, कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि होमी बाबा ने इसकी नींव बहुत पहले रखी थी कि इसको अलग अलग फेजेज में किया जाएगा, पहला दूसरा फेज और उसके बाद तीसरे की ओर आगे बढ़ना, थोरियम क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा है। ये मात्राएं किस तरह से दिखाती हैं कि भारत का जो बढ़ता हुआ कदम है वो और ज्यादा सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है?
0: बहुत अच्छी बात कही, बल्कि मैंने उस दिन जिस दिन हमारा ये टारगेट अचीव हुआ तो मैंने ये कहा था कि होमी बाबा ने जो स्वप्न देखा था उसकी पूर्ति मोदी जी के हाथों से हुई है। द विंडिकेशन ऑफ होमी बाबाज ड्रीम हैज हैपन्ड थ्रू प्राइम मिनिस्टर मोदी। और अगर आप जरा गंभीरता से गहराई से सोचे तो समझ में आएगा कि होमी बाबा कितने दूरअंदेश व्यक्ति थे, हिन्दुस्तान की परिस्थितियों को समझते हुए, हमारे साधनों की लिमिटेशंस को समझते हुए उन्होंने हमें एक 3-स्टेज प्रोग्राम दिया। जो 3 स्टेजेस उन्होंने दी थी उसमें धीरे धीरे प्रगति हो, उस तरह से कैसे उन्होंने तय किया कि पहले स्टेज में हम प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हैवी वाटर होता है थोड़ा सा अलग किस्म का, जैसे आम पानी को आप H2O कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड, ये होता है D2O ब्यूट्रोस ऑक्साइड, लेकिन उसमें लाभ ये रहता है कि उसमें आम यूरेनियम इस्तेमाल होता है जो आपको पहाड़ों से या कोस्टल एरिया से मिलता है, उसमें कुछ एनरिचमेंट नहीं करनी ट्रीटमेंट, तो उसको इस्तेमाल से वो यूरेनियम 239 है, इस तरह से
1: उसकी मात्रा भी सर कम है,
0: मात्रा भी कम है, और उसका जो स्पेंट फ्यूल निकलता है प्लूटोनियम, तो होमी बाबा का ये तसव्वुर था, ये कल्पना थी कि जब हम उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेंगे तो उस प्लूटोनियम जो वहां का स्पेंट फ्यूल निकलेगा उसी को हम दूसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसको यूरेनियम 239 के साथ जोड़ के जो थोड़ा सा एनरिच्ड है
1: जी।
0: तो एनरिच्ड यूरेनियम को जब हम प्लूटोनियम के साथ जोड़ेंगे, जिसे विज्ञान की भाषा में मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल भी कहा जाता है
1: जी,
0: तो उससे एक रिएक्टर के लिए एनर्जी भी ईजाद होगी, और साथ ही साथ उसी रिएक्टर के बैग में हम थोरियम रख देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में जैसे आपने कहा कि सबसे अधिक स्टोर दुनिया का हिंदुस्तान में, ऑलमोस्ट 25% ऑफ द थोरियम इज फाउंड इन इंडिया, और मेनोजाइट हमारा मिनरल उसका एक हिस्सा है, तो उस थोरियम को जब हम बैग में रखेंगे तो जब वो रिएक्टर का दोनों यूरेनियम और प्लूटोनियम अपना काम कर रहे होंगे एज मिक्स फ्यूल, तो प्लूटोनियम से जो उसमें से कुछ एक न्यूट्रॉन्स निकलेंगे पॉजिटिव न्यूट्रॉन, उनको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा थोरियम एज ए रिजल्ट ऑफ सम सर्टेन केमिकल सीक्वल ऑफ रिएक्शंस, और इसको एक अलग किस्म के फ्यूल में कन्वर्ट करेगा जो होगा यूरेनियम 233, जो एनरिच नहीं है लेकिन है वो ईंधन ही, फ्यूल ही, और इस तरह से थोरियम से प्राप्त हुआ, थोरियम से पैदा किया गया यूरेनियम हमें मिलेगा जो हम तीसरी स्टेज में इस्तेमाल करेंगे, और जब हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो दूसरों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी, क्योंकि ये थोरियम तो हमारे घर में मौजूद है, तो इस तरह से किया था। और ये जो आपने कहा ये

0: अप्रैल मास में
1: जी
0: हम दूसरी स्टेज पर पहुंच गए जहां प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इजाद किया गया और इसकी धूम सारी दुनिया में है। साथ ही साथ चूंकि शांति एक्ट भी आया, वो भी प्रधानमंत्री जी के ही हस्तक्षेप से हुआ, बिकॉज पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के लिए जरूरत बात होती है कि न्यूक्लियर सेक्टर को खोल देना प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, और किसी ने
1: सर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब खोला गया, न्यूक्लियर का सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के लिए जब मर्ज होता हुआ नजर आ रहा है और खोला गया, ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते हैं उन लोगों के लिए जिनके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो इसमें कुछ करना चाहते हैं?
0: बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया पूछा। पहली बात तो ये है कि एक बहुत क्रांतिकारी निर्णय था, बहुत कम देश ऐसे हैं दुनिया में जिन्होंने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर के लिए खोला है
1: जी।
0: तो इसके लिए भी जैसे मैंने कहा, इट रिक्वायर्स पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल करेज, पॉलिटिकल कन्विक्शन, वो मोदी जी के कारण संभव हुआ। अब जब खुल गया तो कई लोग जो शायद सिनिसिज्म की वजह से कहते हैं या आलोचना की दृष्टि से कहते हैं कि साहब अब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज के लिए खोला गया, ऐसा नहीं है। बल्कि जो हमने शांति एक्ट लाया है उसमें अलग अलग स्लैब्स रखी है। अगर आप 1000 मेगावाट का लगाना चाहें तो आपकी स्लैब कम है, बड़ा लगाना चाहे ज्यादा 100 मेगावाट का लगाएं। अब तो स्मॉल रिएक्टर्स हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हैं, दूसरे स्मॉल रिएक्टर्स जो 200 मेगावाट से भी कम कैपेसिटी के होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बड़ा इकोसिस्टम बनाया गया है पिछले 12 साल में, जिसको आप कंबाइन करके कुछ एक लोग अगर युवा मिल जाएं, एक ग्रुप बनाए स्टार्टअप का एंड देन मैच्योर इंटू एंटरप्रेन्योरशिप। तो जैसे हमारा RDI फंड भी है, 50% सरकार की ओर से मिलता है बहुत कम इंटरेस्ट पर, तो आप एक छोटा रिएक्टर भी लगा सकते हैं। यानी दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि शांति एक्ट के आने के बाद और प्राइवेट सेक्टर खोलने के बाद, बड़े हाउसेस तो अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्टार्टअप्स के, एंटरप्रेन्योर्स के, उनके लिए भी लाइवलीहुड, रोजगार का एक नया साधन और बड़ा ल्यूक्रेटिव साधन होगा। और आने वाले जमाने में इसकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये युग है, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी का होना लाजिम रहेगा ही रहेगा।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और, एक बड़ी उपलब्धि जो लगातार हम देख रहे हैं कि आपके नेतृत्व में भी आगे बढ़ती हुई नजर आई है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, उसके नेटवर्क को लेकर। कहा तो 8 साल का एक रोड मैप तैयार किया गया था 2000 किलोमीटर का, 1000 किलोमीटर 2 साल के अंदर अंदर पूरा हो गया। क्या चैलेंजेस इसके पीछे और कैसे उपलब्धि इतनी जल्दी हासिल की गई?
0: क्वांटम मिशन हमने लॉन्च किया था सन 2023 में और 8 साल के लिए एक प्लान बनाया था। उस समय भी मैंने ये कहा था कि क्वांटम मिशन की लॉन्चिंग मात्र फिजिकल लॉन्चिंग नहीं है, इसमें एक बड़ा सिंबॉलिक मैसेज भी गया है। वो ये कि हम उन चंद एक 4-5 देशों में हैं जिनका क्वांटम मिशन है। यानी वो जमाना जाता रहा, एक दुनिया भर में ये पैगाम गया कि वो जमाना जाता रहा जब कोई इनिशिएटिव कोई और देश लेता था और फिर 10-15 बरस के बाद हम उसका अनुसरण करते, चाहे वो टेलीविजन था, चाहे वो इंटरनेट था, चाहे वो मोबाइल थे, जो अमरीका में 1950 के दशक में, यहां पर 1970 के दशक में पहुंचे या सीखे। अब हम बराबर चल रहे हैं तो क्वांटम में। और फिर हमने जब 8 साल का टारगेट बनाया, क्योंकि उसके 4 वर्टिकल्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम सेंसिंग, क्वांटम मटेरियल्स, तो उसके लिए 8 साल के अलग अलग टारगेट्स बनाए गए। और जैसे आपने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण रहता है कम्युनिकेशन, क्योंकि एनक्रिप्टेड सिक्योर, हालांकि अभी भी आपके व्हाट्सएप इनक्रिप्टेड है, लेकिन वहां ऐसा होगा कि वो संभव ही नहीं होगा उसको अनक्रिप्ट करना। डिफेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। उसमें हमने टारगेट रखा था कि हम 2000 किलोमीटर तक क्षमता विकसित करेंगे 8 वर्षों में क्वांटम कम्युनिकेशन करने की, लेकिन उसमें से आधी जो 1000 है हमने 2 या 3 सालों में कर ली। यानी हम 8 साल का टारगेट हो सकता है 8 साल से पहले ही कर लें और हम उससे आगे बढ़ जाएं।
1: बिल्कुल सर, एक सवाल और आता है कि जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी की जब बात करते हैं, क्योंकि हमने तमाम क्षेत्रों को देखा कि किस तरह से उनमें प्रगति नजर आई, बायोटेक्नोलॉजी में जब हम उम्मीद प्रोग्राम की बात करते हैं, किस तरह से ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा किफायती होगा, उनको सुविधा पहुंचाता हुआ नजर आएगा जो जेनेटिक डिजीजेस से कहीं ना कहीं 2-4 हो रहे हैं और कई बार टेस्ट भी कराते हैं लेकिन पता नहीं चलता, क्या है सर ये उम्मीद प्रोग्राम और कैसे लोगों को फायदा होगा?
0: ये बात करने से पहले मैं ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं कि ये इसलिए संभव हुआ कि वहां पर भी अभी कोई 2-3 साल पहले हमने बायो E3 पॉलिसी लाई, उसमें भी हमारी पहल है। बहुत चंद एक देशों में जिनकी एक डेडिकेटेड बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी है, बायो E3, अर्थात बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी फॉर एम्प्लॉयमेंट। और वो भी तभी संभव हुआ जब प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री जी के आगे रखी गई तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को भी ये समझाया कि आज शायद इसका महत्व ना समझ आए लेकिन कल हम किसी देश से पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये भी दुनिया भर में अर्थशास्त्रियों का भी मानना है कि आने वाली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जेनेटिक ड्रिवन होगी, रीसाइक्लिंग होगा, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स का होगा, यानी इकोनॉमी का शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से हटकर के सर्कुलर की तरफ चला जाएगा, जेनेटिक्स की जाएगा। और उसमें भी हमने पहल कर ली है। और हमारा हिंदुस्तान ऐसा है कि यहां पर जीन्स को ले तो बड़ी डाइवर्सिटी है
1: जी।
0: हमने उसमें भी सीक्वेंसिंग 10,000 देशवासियों की करने में हम अभी तक सफल हो चुके हैं, हमारा इनिशियल टारगेट है अबाउट 1 मिलियन। इसी प्रकार रेयर डिजीजेस, वो जेनेटिक डिजीजेस जो पैदाइश से होती हैं, कभी कभी उनके सिम्टम्स

0: हो सकता है पैदाइश के समय या जन्म के समय जाहिर ना हो, थोड़ा आगे चल करके हो, क्योंकि इन बीमारियों की संख्या बहुत कम हो रहती है, बहुत कम, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया है, चाहे वो नी मैन पिग डिजीज है, इस तरह के, इसलिए इसको प्राथमिकता भी कम मिलती थी, इसलिए इसके डायग्नोसिस की सुविधाएं भी दुर्लभ थी, इसलिए इसकी दवाई भी बहुत महंगी थी। लेकिन कोई छूट ना जाए, कोई भी नागरिक हमारे शोध से, हमारी सेवाओं से, तो इसलिए ये उम्मीद का कार्यक्रम शुरू किया, जिसके तहत लगभग अभी भी 3 लाख ऐसे लोग हैं जिनको इसका लाभ पहुंचा है
1: जी।
0: और उसमें हम अलग अलग चरणों में, उसमें जो रेयर जेनेटिक डिजीज है उनमें किस तरह से सहयोग दिया जा सके मरीज को, डायग्नोसिस कैसा हो, अर्ली डिटेक्शन हो, उसके बाद टेस्ट की क्या फैसिलिटी रहे, औषधियों की क्या रहे, उसको लेकर के
1: जी।
0: और इसी तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का अगर आप देखें तो बायो-E3 पॉलिसी के ही तहत हिंदुस्तान का सबसे पहला एंटीबायोटिक भी हमने याद किया है। अभी तक जितने एंटीबायोटिक थे, जो पहला एंटीबायोटिक आया था सन 1948 के लगभग, पेंसिलिन, उस समय पाउडर का था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में उसका पाउडर थोड़ा इस्तेमाल किया गया था वुंड्स पे, तो वहां से पता चला कि साहब ये इन्फेक्शन के लिए फायदेमंद रहता है। उसके बाद इसके इंजेक्शन बने, बाद में टेबलेट बनी, तो उसको इस समय क्वीन ऑफ ड्रग्स कहा जाता था। लेकिन तब से लेकर के जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स हुई है, चाहे वो पेंसिलिन के बाद क्लोरोफेनिकॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, जेटा, वो सारी बाहर से सॉल्ट आते हैं। पहली बार हमने यहां ट्रायल किया, यहां सॉल्ट ट्रायल किया और प्राइवेट पार्टनर के साथ उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं।
1: सर अब बात करेंगे स्पेस की, क्योंकि स्पेस में बहुत सारा काम हुआ है, गगनयान मिशन पर सबसे ज्यादा नजर है, क्या तैयारियां उसको लेकर, और बीते दिनों में जो हमने देखा, चाहे चंद्रयान मिशन हो या इसके अलावा अलग अलग जो मिशन लॉन्च किए जा रहे हैं, उसमें कितनी प्रगति मिलती हुई नजर आ रही है जो गगनयान मिशन को बहुत सक्सेसफुल बनाए।
0: मुझे लगता है कि स्पेस सेक्टर में सबसे पहला क्रांतिकारी मोड़, जैसे एटॉमिक को लेकर के आपने शांति की बात की, वो था 5 बरस पहले, जबकि जैसे मीडिया ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज अनलॉक्ड स्पेस सेक्टर, पहली बार स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल दिया गया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि विज्ञान, शोध, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कमर्शियलाइजेशन तभी संभव है कि आप प्राइवेट सेक्टर को पहले दिन से ही साथ लेके चले।
1: सर ये इससे भी कनेक्टेड है, जो प्राइवेट रॉकेट्स भी लोग जो बना रहे हैं अलग अलग।
0: अब देखिए, आज से 5 साल पहले हमारा स्पेस इकोनॉमी हिंदुस्तान की कोई बहुत ज्यादा उल्लेखनीय नहीं थी, आज हमारी स्पेस इकोनॉमी लगभग $9 बिलियन और इतनी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है कि आंकलन ये लगाया जाता है, हमारी जो प्रोजेक्शंस इंडिकेट करती हैं कि अगले 8-10 सालों में हम 5-6 गुना बढ़ करके $40-45 बिलियन हो जाएंगे, जिसका अर्थ ये हुआ कि स्पेस इकोनॉमी विल बी एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी एज वी मूव टूवर्ड्स 2047। और हमारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप सिंगल डिजिट हुआ करते थे, आज 400 से बढ़ गए, और एक हाल ही में शुरू हुआ स्टार्टअप हमारा यूनिकॉर्न भी हो गया पिछले ही कुछ दिन पहले। अब प्राइवेट सेक्टर में रॉकेट्स भी बनाए जा रहे हैं, लॉन्चिंग्स भी हो रही हैं, और वो इसलिए संभव हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर का सहयोग पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो रहा है और दोनों एक समन्वय बना करके कोलैबोरेटेड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। और आने वाले समय में हिंदुस्तान की ये भी खासियत है, हमारे रॉकेट्स तो जा ही रहे हैं, रॉकेट से खबर हमारी बहुत ज्यादा बनती है, जैसे चंद्रयान के लेकर के, इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग साइट, लेकिन हिंदुस्तान की ये विशेषता है कि हमने स्पेस सेक्टर को जितना स्पेस मिशन के लिए इस्तेमाल किया है, उससे अधिक नागरिक जीवन में सुविधा लाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग, उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सुझाव पर गति शक्ति शुरू किया। गति शक्ति इज अ ग्लोबल मॉडल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में काम आता है, उसकी मॉनिटरिंग में, उसकी टाइमलाइंस को निर्धारित तरीके से संभालने में, उसकी जो बाधाएं हैं, तो ये गति शक्ति इज अ स्टोरी। हमारा लैंड फार्म्स को लेकर के जो कार्यक्रम है, ड्रोन्स और स्पेस को लेकर के, उसमें भी हमारा स्पेस का ही काम आ रहा है। हमारे मीडिया और टेलीविजन चैनल्स तो ही हैं, तो कहने का अर्थ यह है कि हमारा स्पेस सेक्टर इज वर्चुअली इन एवरी हाउसहोल्ड, एवरी इंडियन हाउसहोल्ड टुडे। और वॉरफेयर आपने देख ही लिया, ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें दो ही विभाग थे मुख्य तौर पर, एक स्पेस सेक्टर और दूसरा न्यूक्लियर सेक्टर, तो ये सारा वॉरफेयर, उससे हमारी क्षमताएं। और आज ये स्थिति है कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हम ना केवल इंडिजिनस बना रहे हैं, बल्कि इंडिजिनस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारा डिफेंस सेक्टर अधिकतर इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता था 2014 से पहले, 2025 में हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1.5 लाख करोड़ से अधिक है और हमारा एक्सपोर्ट हुआ है लगभग 23,000 करोड़ दूसरे देशों के। हमारी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम में जा रही है, इंडोनेशिया जा रही है, और बहुत सारे है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स यूरोपियन देशों में, फ्रांस इत्यादि में जा रहे हैं। इसी तरह से आप देखेंगे स्टार्टअप्स में, हम जब शुरू हुए तो 350-400 थे, आज हम तीसरे दर्जे पहुंच गए लगभग 2,26,000 से अधिक
1: जी।
0: और उनके माध्यम से जो जॉब्स जनरेट हुए उनकी संख्या लगभग 24 लाख है। इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम 38 आ गए, पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया।

0: जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए, और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है कि अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें?
0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी, ये तो इस्तेमाल में हो गई, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने जो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहां हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहां हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ यह है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहां मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है, एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं, पर हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है, इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है उनके लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके, और इस वक्त अगर दुनिया में हिन्दुस्तान की साख बड़ी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं, और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है, इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे 4 अलग अलग हैं, एआई कंप्यूटिंग, एआई डेटा, एआई इनोवेशन सेंटर्स, एआई फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है, 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल, और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं, जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दें तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है, खतरे का बायस तो ही है लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्च्यू, उससे भी बिजली याद होती है, तो समुद्र से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा वहां 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी, जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगी।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है, भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर, तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर,

तो साथियों, इस गीत में जो शब्द था वो था कभी कभी, आपने पहचान ही लिया होगा। और हमारे एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत मेरी जिंदगी के बहुत करीब है। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ फिल्मों के संवाद मेरे दिल में घर कर गए हैं और मेरी जिंदगी की दिशा और दशा निर्देशित करते हैं। पहला संवाद फिल्म आनंद का, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। दूसरा फिल्म बावर्ची का, अक्सर हम बड़ी बड़ी खुशियों की खोज में छोटी छोटी खुशियों के पल जो बहुत ज्यादा होते हैं उन्हें गवा देते हैं। मैं लोगों से प्यार से मिलता हूं और जहां तक हो सके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करता हूं। फिल्म बावर्ची का एक और संवाद, अपना काम तो सभी करते हैं, कभी दूसरों का काम करके देखिए कितनी खुशी मिलती है। साथ ही एक साथी ने लिखा है, सच कहें आज की इबारत हमें बिल्कुल अपनी सी लगी, क्योंकि छोटी खुशियों को लेकर आई है। छोटी छोटी खुशियों के मायने बहुत बड़े होते हैं, बस हम इन्हें देख नहीं पाते। हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, बस शायद दिखावा करना चाहते हैं, पर हम तो छोटी छोटी सादगी भरी बातों से ही खुश रहते हैं, बस उसमें अपनापन हो। अब देखो ना, कल थोड़ी बारिश हुई, हमने उसे बड़े ध्यान से देखा। जब पानी की बूंदें पौधों पर पड़ी तो पौधों की धूल साफ हो गई, ये देखकर हम खुश हो गए। फिर हम ये भूल गए कि बारिश से बाकी पूरा सब जगह खराब भी तो हो गया। इस बात तो सही है, बारिश जब आती है तो खुशियों की फुहार लेकर आती है। चलिए इसी के साथ सुनते हैं भूपिंदर सिंह और अनुराधा का गाया ये गीत दूरियां, इस फिल्म से सुदर्शन फकीर की रचना और जयदेव का संगीत।

कभी सुबह की सैर के वक्त किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी सांसों को आता जाता महसूस करना, पक्षियों की चहचहाट को सुनना असीम खुशी और शांति दे जाता है। प्रकृति कितना कुछ सिखा जाती है कि खुशी किसी के पीछे भागने में नहीं बल्कि ठहराव में है, हर पल को महसूस करने में है। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि कमेंट करूं या ना करूं। ऐसा क्यों भाई? अब इसका जवाब भी आप दे ही दीजिए अगले कमेंट में। खैर आगे बढ़ते हैं। एक साथी ने, उन्हें 12 बजे का कार्यक्रम पसंद आया, उसके बारे में लिखा है। एक साथी ने लिखा है, हमारे भोपाल में 2-3 दिन से बादल और सूरज की लुका छिपी चल रही है। हल्का फुल्का पानी भी आ जाता है, लेकिन सूरज की तपिश से कुछ तो राहत मिल गई है। अब देखिए किस तरह समय बदलता है और जज्बात भी उसके साथ बदल जाते हैं। आज जब सूरज की गर्मी के बीच हल्का फुल्का पानी आता है तो वो ठंडक अच्छी लगती है। यही हल्का फुल्का पानी जब भारी भरकम बारिश में बदल जाता है और जब कई दिनों तक गहरे बादल छाए रहते हैं, घने बादल छाए रहते हैं, तब जब हल्की सी वो धूप की किरण आती है ना, वो भी खुशी दे जाती है और तब हमें लगता है कि अरे सूरज दादा दर्शन तो दे दो। बिल्कुल सही कहा ना, ऐसा ही लगता है ना। तो चलिए इसी के साथ अगला गीत आपको सुनवाते हैं, देखते हैं कितने हमारे आज के श्रोताओं ने इसे सही पहचाना है। ये गीत है फिल्म शबनम से मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अख्तर के, जावेद अनवर के बोल और उषा खन्ना का संगीत।

0: शीघ्रम।
1: तो सादगी शब्द था इस गीत में जो हमारी इबारत में भी शामिल था और कई साथियों ने सही भी पहचाना। एक साथी लिखते हैं, जीवन का फलसफा बताती क्या खूबसूरत इबारत है आज की। मराठी में कहते हैं, तुझे आहे तुझ पाशी परी तू जागा चुकलासी। हमें मालूम ही नहीं होता कि जीवन के बहुत सारे सुनहरे पल छोटी छोटी बातों में हमारे पास ही छिपे रहते हैं और हम कस्तूरी मृग की तरह कस्तूरी की तलाश

वापस कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं छोटे सुखद पलों से बना होता है। सुबह की ताजी हवा, किसी अपने की मुस्कान, दोस्तों से बातचीत, बारिश की फुहार, चाय की प्याली या किसी की सच्ची प्रशंसा, ये छोटे छोटे पल मन को सुकून और आनंद से भर देते हैं। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है, वो जीवन का वास्तविक आनंद उठा पाता है। एक साथी ने लिखा है, मेरी हर सुबह ईश्वर की प्रार्थना के बाद विविध भारती, न्यूज़पेपर और अदरक इलायची दालचीनी वाली चाय के साथ होती है। दिल में खुशी, होठों पर मुस्कान और मीठी जुबान, सभी के लिए प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है। और हाँ, जानवरों और पक्षियों को दाना पानी रखना नहीं भूलता। अच्छी बात है, ये हमेशा ही होना चाहिए। अभी तो गर्मी इतनी है कि पक्षियों के लिए पानी दाना रखना एक अच्छी आदत है, ये हम कहेंगे। आइए इसी के साथ, इस जीवन की सफर वाली इबारत के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कभी धूप कभी छांव, इस फिल्म का गीत प्रदीप की आवाज में। इस गीत की रचना की है प्रदीप ने, चित्रगुप्त का संगीत।

फल करम के यहाँ सभी पाते, कभी सीधे कभी उल्टे पड़ते, अजब समय के पांव

चीजें हैं जो हमें मिलनी बाकी हैं और मिलती भी हैं। तो अगर ऐसा कभी कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो तो आप हमारे साथ फेसबुक पर साझा कर सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं मुकेश की आवाज में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, खयाम का संगीत, फिल्म का नाम कभी कभी।

तो धूप शब्द था जो हमारी इबारत में भी शामिल था और इस गीत में भी था। साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि किसी बात को लेकर आप बड़े दुखी हो रहे थे और फिर अचानक आपको पता चलता है कि ये बात उतनी दुखी होने वाली थी ही नहीं, या फिर हम शायद उस बात को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे लेकिन जिंदगी में उससे भी बढ़कर कई सारी अच्छी चीज

जी हाँ, तो पल वो शब्द था जो इस गीत में चुना गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है, ऊपर वाला पांसा फेंके नीचे चलते दांव, पंक्ति भाग्य और कर्म के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। भगवान या नियति जीवन की परिस्थितियां तय करती हैं। पांसा फेंकना, इंसान धरती पर जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि और कर्मों से फैसले लेता है। एक साथी ने लिखा है, कभी धूप कभी छांव, आज बादलों की ओट में सूरज भी अटखेलियां सी कर रहा है। कभी धूप खिलखिला रही है तो कभी छांव अपना आंचल लहरा रही है। जी हाँ, यही तो बारिश की धीमी धीमी शुरुआत हो रही है, जब कभी लगता है कि बस अब तो बरसात आने ही वाली है कि जल्दी से सूरज दादा आकर अपने दर्शन दे देते हैं, और जब चिलमिलाती धूप पड़ने लगती है तो कहीं बीच में से ही हल्की सी फुहार आ जाती है। बहरहाल कार्यक्रम का आधा समय हो गया है, और चलिए एक बार हम अपनी जो इबारत है उसे फिर से पढ़ देते हैं। यदि कोई साथी है जो फेसबुक पर नहीं है, एक बार फिर अगर सुनना चाहते हैं तो हमारी जो इबारत थी, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा के बीच ही छिपी

0: होती है। बस थोड़ा रुककर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो आइए इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में ये गीत फिल्म एहसास से। इंदिवर की रचना है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।
1: जो न छोटे हैं न बड़े

0: तो ये जो गीत था इसमें छोटे शब्द लिया गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है कि नेहा जी आप सवाल इस तरह से पूछें कि हम बिजी रहें, फिल्म का नाम पूछ सकते हैं, गीतकार पूछ सकती हैं, किस सन में ये फिल्म आई ये पूछ सकती हैं, हम बिजी रहेंगे। आपको लगता है इतने आसान सवाल हम पूछेंगे आपसे? क्योंकि ये सवाल तो कोई भी गूगल बाबा से देखकर, सोशल मीडिया की किसी भी साइट से देखकर जवाब दे सकता है। हमें वो बातें जानने में अच्छा लगता है जो हमें आपसे जानने को मिलती हैं, जो बातें यूनिक होती है आपके बारे में। जैसे कि देखिए, हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि हमारी जो मेड है वो भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, उसे जो समझ आया आपका सवाल तो उसका जवाब सुनो। अभी कुछ दिन पहले घर से आते समय उसका मंगलसूत्र कहीं गिर गया, वो बहुत उदास हो गई, पर उसने सबका काम किया और वो वापस गई तो उसका वो मंगलसूत्र मिल गया। उसे जाते समय हमने कहा, एक तो आज तेरा फास्ट है और दूसरा तू हम सबका काम करके जा रही है और तीसरा तुमने किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो पक्का तुम्हारी चीज तुम्हें मिल जाएगी। क्या बात है, हमें हमेशा ये लगता है कि देखिए जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा। और देखिए आपके साथ हुआ भी, मंगलसूत्र जैसी चीज गिरना ना सिर्फ मतलब हमें एक मानसिक पीड़ा देता है, ये हमारे एक संपदा का भी नुकसान होता है, लेकिन देखिए आपको मिल भी गया। तो कभी कभी होता है कि हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, सोचते हैं, मगर जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जितना समय हमने चिंता में व्यस्त किया, चिंता में मतलब गवाया, उतना अगर हम उसका जवाब ढूंढने में या हल ढूंढने में निकालते तो शायद परिणाम बेहतर होते। एक साथी ने लिखा है, सुबह की सैर पर जाते हुए और लौटते हुए सब्जी और फलों से भरे ठेले, कहीं फूलों की दुकान, किसी जानवर की अजब गजब हरकतें, फुदकते तरह तरह की चिड़ियाओं को देखकर भी मन बहुत हल्का महसूस करता है। कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारना चाहिए, बहुत से दुख दर्द भूल जाते हैं, किसी से हल्की फुल्की बातें करके भी मन हल्का सा हो जाता है। वहीं पर एक साथी लिखते हैं, मराठी लेखक हैं पुल देशपांडे, कहते हैं हमारी उम्र तब तक है जब तक हम लोगों को याद रहते हैं। बस यही बात है, हम पल दो पल के मेहमान हैं, फिर भी दिल में जीते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ सुनिए बातों बातों में इस फिल्म का गीत अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। अमित खन्ना ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत।
1: उठ सबके

एक साथी लिखते हैं, साधारण जीवन शैली का मतलब पीछे रह जाना नहीं होता, इसका मतलब है शोर कम करके असली आवाज को ही सुनना। जब प्लान कम होंगे तो पल ज्यादा मिलेंगे। छोटी छोटी खुशियां वही हैं जिन्हें जिनकी कोई डिमांड नहीं होती। चाय की पहली चुस्की से लेकर पहली बारिश में मिट्टी की वो सौंध ही खुशबू वाली खुशियां हम इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर की इच्छा तो बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजाम में लगी रहती है, पर जिंदगी की बड़ी खुशियों की किश्तों में नहीं आती। जिंदगी की बड़ी खुशियां किश्तों में नहीं आती, वो हर रोज छोटी छोटी खुशियों में ही निहित होती है। और एक साथी ने पहले जो गीत हमने बजाया उसे लेकर लिखा है, जो छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में है वो। यही सही है, जिस घर में बीच का भाई या बहन हो उसकी यही मुसीबत होती है। अब आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि आपके इस कमेंट से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप भी घर में बीच वाले भाई हैं या बहन है। तो चलिए बताइए, क्या मुसीबत ऐसी होती है जब आप बीच वाले भाई या बहन होते हैं। तब तक सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज है, आनंद फिल्म का ये गीत है, योगेश ने इसे लिखा है और सलील चौधरी का संगीत। पिछले गीत का शब्द था खुशी और इस गीत का कहीं दूर।

जैसे कि हमने पूछा था अपने एक साथी से कि बीच के भाई बहनों की क्या समस्या होती है, तो उसके जवाब में एक साथी ने लिखा है, छोटे छोटे कामों के लिए हम बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े कामों के लिए हम छोटे होते हैं। जैसा जी चाहे घर वाले हमारा उपयोग कर लेते हैं। आपकी ये

बात पढ़कर बड़ी हंसी आई मुझे, और सही कहा आपने कि होता है ऐसा। इवन एक उम्र ऐसी आती भी है जब हम अगर कुछ बच्चों जैसी हरकत करें तो डांट पड़ जाती है कि अब इतने छोटे हो क्या, और अगर कोई बड़ों के बीच में कोई बात कर ले तो तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि बड़ों में बात करो, ये भी हो जाता है। तो ये तो सब बातें होनी ही है। एक साथी ने लिखा है, हमने कई बार ऐसे कई काम देखे हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। एक बार हम गुरुजी के प्रोग्राम में नागपुर जा रहे थे और इतनी तेज बारिश की गाड़ी से जाना मुश्किल था स्टेशन तक। उधर ट्रेन राइट टाइम, जो हमारी दोस्त स्टेशन पहुंच गई थी उसने कहा ट्रेन चलने वाली है, हम अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप ही हमें पहुंचाएंगे। वो हम कैसे पहुंचे नहीं पता, हम अंदर गए, हमारे सामने ही ट्रेन का डिब्बा और हम ऊपर चढ़े और ट्रेन चल दी। अब इसे क्या कहेंगे नहीं पता। जी हाँ, कभी कभी होता है कि हमें लगता है अब तो ये काम संभव ही नहीं है, लेकिन किसी तरह कोई चमत्कार हो जाता है और असंभव काम संभव हो जाता है। एक साथी ने लिखा है, किसी भी काम और परेशानी में चिंतन करना करना ही समझदारी है। चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। बिल्कुल सही आपने कहा। और लीजिए अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की, गुलजार के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, बीच वाले भाई या बहन को बड़ा भाई या बहन दोनों की सुननी पड़ती है। सब कहते हैं वो बड़ा है और वो तुमसे छोटा है, बेचारा चक्की में पिस जाता है। एक साथी ने लिखा, बचपन में एक कहानी या वाकया सुना था कि एक व्यक्ति बहुत टाइट जूते पहनकर बाहर जाया करते थे। घर आकर जब जूते उतारते थे तो उनको बहुत आराम महसूस तब वो बहुत आराम महसूस करते थे। लोगों ने सलाह दी कि थोड़े ढीले जूते पहने, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जीवन में कोई सुख नहीं है, जब मैं जूते उतारता हूँ तो बहुत सुख महसूस करता हूँ। देखिए, किसी के लिए कोई बात कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। शायद हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो किसी के लिए कितना सुकून देने वाली बात हो सकती है। आज का जो सुरीला सफर का कार्यक्रम है, हमें संपन्न करना होगा क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं दे रहा। बस इतना ही कहेंगे कि आज की संगीत यात्रा में हमने उन छोटे छोटे एहसासों को छूने की कोशिश की जो अक्सर भागती दौड़ती जिंदगी में नजरअंदाज हो जाते हैं। उम्मीद है कि इन गीतों ने आपके मन में कुछ मीठी यादें और कुछ सुकून भरे पल जरूर जगाए होंगे। चलते चलते बस इतना याद रखिये, जिंदगी की असली रौनक बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उन लम्हों में होती है जिन्हें हम दिल से जीते हैं। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

दोस्तों, मनुष्य के जीवन में पैसे का बड़ा महत्व है जो बढ़ता ही जा रहा है, और पैसे की बढ़ती अहमियत ने हर इंसान को कमाई के लिए दौड़ने पर मजबूर कर दिया है।

अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम धन अर्जित करते हैं। जरूरतें पूरी होने पर लोग जुट जाते हैं अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने में, जिसके लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती है, और इसी चक्कर में वे अपने करीबी लोगों से दूर होते जाते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर पैसे का गुरूर कतई अच्छा नहीं है।

जरूरतें पूरी करते करते हम अपनी इच्छाओं को पैसों से पूरा करने में लग जाते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता। ऊंची अट्टालिका में रहने वाला नर्म बिस्तर पर भी रात भर सो नहीं पाता, और दिन भर मेहनत करके एक इंसान पत्थर की सेज पर गहरी नींद सोता है। एक संतोषपूर्ण जीवन ही समृद्ध जीवन है। मन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। शांत मन किसी भी परिस्थिति में गुनगुनाता रहता है और आनंद से भरा होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगू, पिया है महा सटैली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर, ओ सड़क।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब और नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधता।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
9: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
8: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत

0: भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13वीं भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
2: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
4: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा,

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने

0: पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग

ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमरीका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमरीका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
0: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी, 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है, बहुत बहुत बधाई।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार, उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
0: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
0: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी

0: जान लेते हैं साथियों, जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
0: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
1: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
1: श्रोताओ, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो अब चलिए, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
0: बचपन की यादों को ताज़ा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9:49 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर,
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहाँ नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।

0: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
1: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई।
2: लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
1: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
2: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
1: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
2: क्या कंचा चाहिए?
0: नहीं।
1: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
0: नहीं।
2: तो फिर?
1: सवाल खूब रहा। क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
0: आह, कितने सुंदर कंचे। ओह।
1: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता तो कंचा ले सकता था। लिया होता तो।
0: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
1: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहाड़ा।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
1: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है। वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
6: आ गया।
0: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
1: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
0: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
1: उसे रामन ने ये सूचना दी थी।

0: उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
1: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37 रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
1: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
0: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
1: अप्पू,
0: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
1: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
0: उसका दम घुट रहा था।
1: बोल।
0: वो खामोश खड़ा रहा।
1: क्या नहीं बोलेगा?
0: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
2: मास्टर जी,
1: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
2: वो
0: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
1: हाँ हाँ बता, डरना मत।
2: वो
0: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
1: हाँ हाँ
0: वो कांपते हुए बोला।
2: वो कंचा।
1: कंचा?
0: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
1: स्टैंड अप।
0: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
2: दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
0: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
2: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े

0: plece-se.
1: Tab shak hua.
0: Kancha mile kaise? Kya maangne par dukandar dega? George ko saath lekar poochhe to nahi de to?
2: Kisi ko shak ho to pooch lo.
3: Master ji ne उस घंटे का सबक समाप्त किया।
2: क्या किसी को कोई शक नहीं?
0: नहीं मास्टर जी।
3: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
2: अप्पू क्या सोच रहे हो?
0: वो मैं
2: पूछ लो ना, शंका क्या है?
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
2: क्या सोच रहे हो?
0: वो पैसे।
2: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
0: हाँ।
2: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
3: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
0: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
3: चपरासी एक नोटिस लाया।
4: मास्टर जी, नोटिस है।
2: लो।
3: मास्टर जी ने कहा,
2: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
3: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया, उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
0: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
3: वो बेंच से उतरा।
2: किधर?
3: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
0: फीस देनी है।
2: फीस मत देना,
3: मास्टर ने कहा। वो छिझकता रहा।
2: ऑन द बेंच।
3: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
2: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
0: ध्यान दूंगा।
3: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
5: बच्चों एक एक करके आओ।
3: क्लर्क बाबू बता रहे हैं,
6: पहले मैं आया हूँ, मेरे बाकी पैसे।
3: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
0: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे, हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
3: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
2: क्या सब फीस जमा कर चुके?
6: जी मास्टर जी।
3: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी

0: शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
2: है।
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
3: माँ, अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई। इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए

0: पे उसने कहा,
1: दोपहर को दिए थे ना।
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
2: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन, मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
2: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
2: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।

0: सखी सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी आपको भी और मेरे सभी श्रोताओं को सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। कैसी हैं सोनाली जी आप?
0: मैं तो मजे में हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सहेली हमें बहुत दिनों बाद बाजार में या कहीं अन्य जगह पर दिखाई देती है और उसके कुछ दिन बाद तुरंत दिखाई देती है, तो हम कहते हैं देखिए ऐसे तो हम मिलते नहीं है, और कभी कभी बार बार मिलने लगते हैं।
1: मिले तो अचानक फिर मिलने लगे। मैं जान रही हूँ कि आप मेरी ही बात कर रही हैं। अभी पिछली बार ही हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई और लो आज फिर हो गई।
0: तो ऐसी मुलाकातें बार बार होती रहे तो
1: अच्छा लगता है।
0: तो चलिए विषय बता दें आज के।
1: बिल्कुल, आज के विषयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस,
0: जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ना?
1: जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है इसके बारे में। मतलब ये एक गंभीर विषय है, हो सकता है हमें यूं बात करते वक्त लगेगा, हम कहते हैं कि ठीक है ये करना चाहिए वो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातें नहीं है, उन बातों को व्यवहार में भी लाना है।
0: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर झल्लाहट के कारण या फिर किसी अन्य कारणों से हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनसे हम दुर्व्यवहार यानी बस कुछ

0: ऊंची आवाज में बात कर ले, उससे आगे तो क्षमा ही नहीं है अगर ऐसा कुछ है तो उनसे तुरंत माफी मांग लेना भी बहुत जरूरी है। और इस विषय में हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखकर भेजे हैं।
1: जी हाँ, उनको भी हम जरूर पढ़ेंगे। अगला विषय किस बारे में है बताएंगी?
0: जी आज कथा सुधा, जिसका सभी श्रोताओं को इंतजार है, आभूषण भाग 3, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। साथ ही बहुत जल्दी यानी कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए?
1: बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। सोनाली जी बस सुन ही रहे हैं कि बारिश आने वाली है, कब आने वाली है।
0: बस आएगी ना तो हम उसका बहुत खूबसूरती के साथ उसका स्वागत करेंगे। और हम कुछ ऐसा करेंगे बारिश के मौसम में, यानी खूब सारे पेड़ लगाएंगे। जो अभी हम जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उन गुठलियों को हमें सहेज कर रखना है। और जैसे ही बारिश आएगी तो हमें खूब सारे पेड़ लगाना है, ताकि हमें इतना इंतजार न करना पड़े।
1: वही तो बस सुन रहे हैं, लेकिन बारिश आने के पहले हमें कुछ तैयारियां भी करनी है ना।
0: तो वो कौन सी तैयारियां हैं, वो हमारे साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लिखिए आप, कि आप कौन सी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग अनाज को सुखाते हैं, कुछ घर की मरम्मत करवाते हैं, तो कुछ जो पेड़ है जिनकी टहनियां जो बहुत बढ़ चुकी है, जो गिरने का डर है, वो कटवाते हैं। क्या करते हैं आप, किस तरह से तैयारियां आपकी शुरू हो गई है, उस बारे में हमें लिखकर बताइए। और साथ ही व्यंजनों का जब जिक्र चलता है, तो आज हम उत्तर प्रदेश के व्यंजन, उसमें है मक्खन मलाइयों और बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी।
1: क्या बात है, मेरे लिए तो इनमें से दो चीजें बिल्कुल नई हैं, तो आज नई जानकारी जानने को मिलने वाली है।
0: और अब क्या करना है,
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: बड़ा ही सुंदर गाना था ये।
1: बहुत सुरीला गाना, और हमारे बहुत सारे सखियों ने और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा कि गाना बहुत पसंद आया। तो अब सभी को इंतजार है कथा सुधा का।
0: तो मुझे भी
1: है ना, मुझे भी। तो सुनते हैं आभूषण भाग तीन।
0: जी
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
4: मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते, प्रेम की शक्ति अपार है। पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है, एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है। पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। पर जब मंगला ने अंत को बात बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली।

0: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
1: जहाँ प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहाँ अब नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
2: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग।
2: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, 4 प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। 2 छोटे भाई, 1 बहन और माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातः काल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन? शीतला की मां कहती, 4 दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं? सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है? विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी मां के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। मां कहती, तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था। पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो। उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में, चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं, वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने

0: क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे, मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी।
1: ओ शीतला, शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो।
0: किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत को लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए, मन में तर्क किया,
1: ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। ओ शीतला, आ ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य, शीतला ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है, हो कोई चिंता नहीं, इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल सिंह मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा, पाप क्या है पता नहीं। शीतला, ओ शीतला।
0: अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानी से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
2: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही ये सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला बहन, मैं तेरा भाई हूं।
0: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी, मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूँ।
3: भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव

0: मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया? बस बातों ही बातों में तकरार हो गई।
1: इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहाँ अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी, कर्कश स्वर से बोली,
2: अरे बेटा तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है? ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सांप काटे हैं। अरे अपने बनाओ सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछती थी ये। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम, प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया, अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने। हाँ।
0: क्या वही अनोखे धन कमाने घर

0: देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है।
1: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो।
0: जिनके भाग्य में लिखा है वो यही सोने में लदी हुई है। मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं।
2: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला के मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले,
1: अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
2: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूँ।
3: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
4: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
5: हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद
4: आई, और इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का।
5: जी,
4: लेकिन बीच में एक गीत सुन लिया जाए
5: तो सुनते हैं एक गाना।

0: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार, है ना?
1: और दुगना होके मिलता है।
0: बिल्कुल, दुगना क्या, चौगुना, आठ गुना होके मिलता है। क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की, यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले लें।
0: बिल्कुल, लेते हैं।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है
1: सखी
0: सहेली। और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए,
1: बिल्कुल प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए,
0: उन्हें वक्त दिया जाए, क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े या फिर ना घूमना फिरना या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़ियां या बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता है, उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में दो चार पल सुख, उनके साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि उनके कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी, कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
0: लेकिन क्या होता है ना नेहा, की बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं, और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाए, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी, कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज, हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि

0: के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं।
1: या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना उस वक्त हम थोड़ी देर अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे या फिर क्योंकि क्या होता उन्हें नहीं पता होता, वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं। तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है।
0: और सोनाली जी, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही, ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं। अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं अभी अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर, पता चलता है गेम खेल रही। तो वही बुजुर्गों के साथ भी होता है, उन्हें नहीं समझ आता होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या कुछ काम
1: कर रहे हैं।
0: ऐसा हो जाता है। उनकी बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है।
1: बिल्कुल सही नहीं है कि कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई है। ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है नेहा कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। उन्हें परिवार में महत्व देना है और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती है ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
0: एक गीत सुनना चाहिए।
1: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए।
0: बिल्कुल, मना लेते हैं।

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से मान भी जाएंगी, है ना।
0: एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज के व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेमपूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहां थका हुआ मन सुकून पाता है। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है और दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में समाज में वो आदरणीय है। उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादीजी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात है,
0: ये तो बिल्कुल सही कहा। हमारे माँ पिता हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
1: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहिए। वो भर भर के आशीर्वाद देते। एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथी लिखते हैं, वृद्धजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्धजनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्धजनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई, ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी INPEA, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज द्वारा की गई थी और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
0: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की बौछार होती है।
1: वो बच्चे अलग ही संस्कारी नजर आते हैं।
0: क्योंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
1: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी, नाना नानी है, वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
0: जी हाँ। और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज है। बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है

0: घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पढ़ते,
1: बिल्कुल
0: वो कभी अवसाद का सामना नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है कि नहीं।
1: अब क्या करें,
0: तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए, तो एक गाना सुन लेते
1: सुनते हैं गीत।

0: कहाँ गुम है आप?
1: ठंडी हवा का इंतजार कर रही हूँ।
0: और ठंडी हवाओं के साथ बारिश की फुलवारी का भी
1: बहुत इंतजार है, क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी हाँ। गर्मी बढ़ गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे, पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे।
0: नहीं आ रहे, और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते हैं।
1: और उनका रंग इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। तपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है,
1: और वो जो खुशबू आती है ना,
0: सौंधी सौंधी खुशबू,
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते हैं।
0: वो तो है। लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी, जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।
1: बहुत
0: कई
1: जरूरी
0: सारे
1: है।
0: बिंदु हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए, बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना, क्योंकि क्या होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो, तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपंप वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है। तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें

0: जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना। इससे पानी की बचत तो होती है, साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है। तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए।
1: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत, दीवारें और खिड़कियों में कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि तेज बारिश में पानी जमा न हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
0: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता, फिर उसमें मच्छर पनपने लगता हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
1: बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।
0: इसलिए फिर वो जो है ना जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है जो बोतल्स वगैरह हैं और बहुत सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध न हो तो पानी को अच्छी तरह उबालकर छानकर पीने की आदत डालना जरूरी है और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाए।
1: बिल्कुल, एक साथ ही लिख रहे हैं बारिश तो भाई होनी होती है, तो आषाढ़, सावन, भादो और क्वार तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे। नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना, चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, न कि चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून के बारिश का हाल था, नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती है।
0: बिल्कुल, करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए, आप एक गाना सुनना,
1: गीत सुनना भी बहुत जरूरी है।
0: सुनते हैं गीत।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सकें। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त चीजें।
0: यानी अभी गर्मी में ना तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा खाने का मन होता है। पर जब बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूड़ी हो, आलू की सब्जी हो,
1: सोनाली जी अब तो आप और नाम मत लीजिए।
0: तो आज के हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाइयो और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाइयो सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली एक बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चयन इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताजी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबालकर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम, पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है। नेहा, आपने खाई है मिठाई?
1: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती होगी।
0: और वो ना दोनों में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मजा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है इस बारे में, फिर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन मलाई खा के आएंगे, क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
1: एक साथी ने लिखा है, उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमिष या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार, रसेदार या डुबकी वाले आलू, यानी कि बिना प्याज लहसुन के परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले। इसमें हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि, एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेदमी पूरी मसालेदार आलू की सब्जी बनाई जाती है।
0: यानी उड़द की दाल डाली जाती है, जिससे वो पूरी जो ना हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं वो थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेडमी पूरी होती है ना वो कड़क
1: रहती है। जो खाने में भी मजा आता है।
0: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक
1: और नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा, हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो, इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं, तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है, तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं। आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही।

0: ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा, पर ये योग का केवल एक चरण है जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
1: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे, हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
0: तो देखिए जैसा कि आज का माहौल है उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है।

0: गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुन पाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है दरअसल वही महान कहलाता है, और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है, तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं, और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है, अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए, किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है,
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखना कि एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए, दो ग्लास गर्म पानी आपने पिया। पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
0: कहते हैं लोग बेड टी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
0: फास्टिंग हो गया है,
1: तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होना चाहिए।
0: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए, तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
1: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको, शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
0: जी जी जी, तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे,
1: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए। आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्योदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है, और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी चहचहाट आने लगती है, तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए, कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए, घर पर ये चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
0: अच्छा
1: जी,
0: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
1: जी हाँ,
0: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
1: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
0: जाग जाएं,
1: हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
0: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
1: जी, तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी। बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था। आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल

0: दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन, जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा। जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती, तो माइंड में लगा रहता है कि अब क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप कोशिश करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर चार चार घंटे की होना चाहिए।
0: जैसे आपने जैसे प्रातः काल का तो बताया था, 8 बजे नाश्ता,
1: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए, फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए, शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए, और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना, रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारी
0: जनरेशन
1: है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में।
0: अच्छा।
1: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का, मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए, या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं, या गर्मी का टाइम है तो आप कड़ी चावल बना सकते हैं, या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी

0: फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए।
1: लेकिन क्या दिन के खाने में ये उचित है?
0: दिन में हम खा सकते हैं क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है। पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा? फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी। तो फिर एक खाना कोशिश तो जल्दी खाने की है, पर नहीं खा पा रहे हैं तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कढ़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप प्लेट खाना खा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
1: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूट खाया फिर पानी पी लिया, तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
0: बहुत अच्छा सवाल किया राजन जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है। बहुत ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है, आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
1: बिल्कुल सही।
0: तो जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए। पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए, थोड़ा पानी आप पीजिए। फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो एक घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहां तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए। फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं। और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो गलत बात है।
0: जी नहीं, बिल्कुल वो तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए,
1: ताकि बीच में पानी की आवश्यकता ही
0: पानी की आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता।
1: और कहा भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो, तो आपकी क्या राय है?
0: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है, तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए। खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया, और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए, यानी होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए। पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए भोजन के प्रति।
0: जी जी।
1: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
0: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी। तुम

0: शारदा जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने, तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर, और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं, आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजीन जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी, जी।
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की, मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उस पे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की
0: जी।
1: विहार मतलब की रिक्रिएशन बोलते हैं या मनोरंजन कह सकते हैं, या और भी इसे शीतलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ रिलैक्सेशन, एंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि एंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं हम तो ने तो टीवी देखा। बिल्कुल टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
0: अच्छा,
1: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना,
0: जी,
1: वो
0: जी।
1: भी हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शीतलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का शौक है,
0: म्यूजिक
1: का, किताब पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को बहुत, हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं या कुछ, हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते हैं। पर यदि आप एक

0: शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई है तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे आचार में ही आती है कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
1: अनुशासित
0: टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए, उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए। और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये मेरे लिए करे। तो हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।
1: जी जी जी।
0: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होकर कार्य होगा।
1: आपका कहने का तात्पर्य यह है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और काम भी पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा। जी जी,
0: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
1: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहाँ गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
0: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है जिंदगी।

0: अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा,
1: अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज

0: करते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं।
2: प्रति पल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना, इसकी आदत हमको होनी चाहिए। उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो है वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
2: क्या क्या किया,
3: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं क्योंकि हम उस पर गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक के अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए।
2: अच्छा।
3: कि रोज हमें कोशिश करनी, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे। हर रोज लिखिए, क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
2: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
3: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूक

0: सकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है, वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
1: वो टेक्निक जो आप बता रही थी उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
0: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
1: विचलित नहीं करेंगी।
0: आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
1: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है।
0: जी हाँ बिल्कुल, वही मेरे भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
1: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो है योग को जो प्राथमिक अवस्था होती है उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए?
0: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो, क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
1: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा हो।
0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
1: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
0: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से भर दे। उठे सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
1: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
2: उठे सबके कदम देखो रम पम।

0: शारदा जी गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है, तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या दो घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष हैं ऑफिस में हैं, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात करें वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं, कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना, अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर, हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। तो और खाने के बाद जैसे अब हम वहाँ पे तो हम नहीं आराम तो नहीं कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही हैं, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो और ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको, आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे। आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा,
0: और फिर तो से अपना काम करें।
1: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहाँ पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
0: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान में करो,
1: वहीं पर आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा

0: आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए, खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
1: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं, ऑफिस में काम करते करते भी कोई टिप्स मिल गया, बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
0: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए, किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए। आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, है तो आप एक हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
1: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
0: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी, मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं जो

0: गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जैसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए।
0: तो सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ, बिल्कुल शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा मन।
1: हाँ, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: अपना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रम FM 103 पर।

0: हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं चंचल कुशवाहा आपका स्वागत करती हूं आज के कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों, आज हम करेंगे ढेर सारी बातचीत और करेंगे मनोरंजन कुछ फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए दोस्तों, फिर हम चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हर यूथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पढ़ाई, जॉब, कंपटीशन, एग्जाम, सोशल मीडिया, हम लगातार स्क्रीन का यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बनता जा चुका है, जिसके कारण सबसे महत्वपूर्ण चीजें यानी कि हमारा स्वास्थ्य पीछे छूटता जा रहा है। अक्सर हम अपने भविष्य को बेहतर बनाने की चिंता में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने शरीर और मन की जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। देर रात तक जागना, समय से भोजन नहीं लेना, फास्ट फूड की आदत होना और साथ ही साथ फिजिकल एक्टिविटीज की कमी धीरे धीरे हमारे हेल्थ पर असर डालने लगती है। इसलिए हमें अपनी लाइफ और हेल्दी लाइफस्टाइल की ओर ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से भी फिट रहना चाहिए। दोस्तों, डेली व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए, पर्याप्त नींद लेना चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे ना तो न केवल हम स्वस्थ रहेंगे बल्कि हमारी कैपेसिटी और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, कहा भी जाता है कि स्वस्थ शरीर ही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन आज की बदलती लाइफस्टाइल, फास्ट फूड की क्रेविंग्स और अनियमित दिनचर्या और स्ट्रेस का असर हमारे शरीर के एक बेहद महत्वपूर्ण अंग यानी कि लिवर पर असर डालता है। इसलिए अब हम जानेंगे कि हम आधुनिक जीवन शैली में लिवर में छिपे खतरे से कैसे बच सकते हैं और उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको सुनवाते हैं विशेष भेंटवार्ता, जिसमें हम जानेंगे कि आधुनिक जीवन शैली में लिवर की छिपे खतरे और बचाव के बारे में, जिसके विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विजय कुमार शर्मा।
1: मस्तिष्क के बाद लिवर शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और जटिल अंग है। यह पाचन में मदद करने के साथ साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। लिवर की विफलता या बीमारी पूरे शरीर के तंत्र को प्रभावित कर सकती है। आज लिवर की सेहत, आधुनिक जीवन शैली में छुपे खतरे और बचाव के उपाय विषय पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित डॉक्टर विजय कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, लिवर एवं आंत रोग विशेषज्ञ, MLB मेडिकल कॉलेज झांसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। सॉलिड हैबिट्स, स्ट्रांग लिवर।
1: जी सर,
2: मतलब आपका हैबिट्स जितने सॉलिड रहेंगे आपका लिवर उतना ही हेल्दी रहेगा। सॉलिड हैबिट्स में कॉमनली जो चार चीजें जो मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहला आपका डाइट, जिसमें आप जंक फूड वगैरह कम रखिए। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज। तीसरा, अल्कोहल को अवॉइड करना है। चौथा, स्क्रीनिंग, कुछ भी बीमारी है तो उसको टाइमली डिटेक्ट कर लेंगे तो उसको टाइमली ट्रीट भी कर सकते हैं।
1: जी सर, सबसे पहले मेरा जो सवाल है कि जैसे कि जो हमारी युवा साथी हैं वो अक्सर अपने वर्क के सिलसिले से बाहर रहते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि वो बाहर का खाना, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड का सेवन करते हैं, तो आधुनिक जीवन शैली और प्रोसेस्ड फूड हमारे लीवर को किस प्रकार नुकसान पहुंचा रहे हैं?
2: प्रोसेस्ड फूड और आधुनिक जीवन शैली, जिसमें कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बाहर का खाना जिसमें ऑयली फूड्स, प्रोसेस्ड जो आइटम्स है, शुगर ज्यादा रहता है, उसकी वजह से फैटी लीवर हो जाता है। इसमें लीवर में फैट का जमाव हो जाता है जो आगे चल के उसमें सूजन पैदा करता है और आगे चल के वो लीवर को खराब करता है।
1: सर, अक्सर हम देखते हैं कि लीवर की बीमारियां अक्सर तब पता चलती हैं जब वे गंभीर हो जाती हैं। युवाओं को किन शुरुआती संकेतों पर ज्यादा ध्यान

0: देना चाहिए, इसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे?
1: शुरुआती लक्षणों में कुछ भी चेंज है, जैसे बिना कारण के मोस्ट ऑफ द टाइम आपको थकावट रहना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, भूख कम लगना, वजन कम होना, इसकी आंखों में थोड़ा पीलापन होना, पेशाब का पीलापन होना, इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, समय पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
0: जी हाँ, जैसे काफी बार अगर हमको ऐसे कुछ संकेत दिखते हैं तो हम अक्सर नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे
0: कारण हमें काफी बीमारी
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल, इसीलिए इन सब लक्षणों को नजरअंदाज न करके सही समय पर डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए, ताकि हम अगर कुछ बीमारी है तो उसको टाइमली डिटेक्ट कर सकते हैं उसको।
0: इसके साथ ही सर, आप हमें ये भी बताएं कि लीवर की स्थिति जानने के लिए कौन से बेसिक टेस्ट साल में और कितनी बार कराने चाहिए?
1: कॉमनली लीवर के लिए LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें के कुछ लीवर के एंजाइम्स होते हैं SGOT, SGPT, बिलिरुबिन, ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड है, फाइब्रो स्कैन है, जिसमें हम लीवर का फंक्शन कैसा चल रहा है उसके बारे में पता कर सकते हैं। LFT आप साल में एक बार करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड 2-3 साल में एक बार करा सकते हैं, या जो मरीज या जो लोग ज्यादा रिस्क पे हैं उनको थोड़ा ज्यादा फ्रिक्वेंटली कराना चाहिए ये सब इन्वेस्टिगेशन।
0: इसके साथ ही डॉक्टर साहब, आप हमें ये भी बताएं कि लीवर से जुड़ी हुई सामान्यता ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका समय पर उपचार न किया जाए तो वो गंभीर रूप ले सकते हैं?
1: इसमें कॉमनली जैसे Hepatitis B, Hepatitis C, एल्कोहलिक लिवर डिजीज, अगर हम इनको समय रहते इनका इलाज न करें तो ये आगे चल के लीवर को पूर्णतया खराब कर देती हैं, जिसको सिरोसिस ऑफ लीवर बोलते हैं, जिसके बाद केवल लीवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है। अगर हम इनको समय रहते डिटेक्ट करें, हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट करें, तो हम पेशेंट के जो लीवर का जो लीवर जो खराब हो रहा होता है हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, अगर समय रहते ट्रीटमेंट दे दें तो।
0: जैसे कि सर, अभी आपने हमें Hepatitis B और C के बारे में बताया, लेकिन आज ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको Hepatitis B और C के बारे में जागरूकता की कमी है, एक आम व्यक्ति को इसके टीकाकरण और जांच के बारे में क्या पता होना चाहिए?
1: हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण आजकल इम्यूनाइजेशन में इंक्लूड कर दिया गया है। आजकल जो भी नए बच्चे में जो भी बच्चे हैं उन सबको हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण नियमित रूप से किया जा रहा है, और जो अडल्ट हैं या जो लोग जिनमें रिस्क ज्यादा है उनको हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाना चाहिए। इसमें 3 टीके लगते हैं, जैसे एक आज लग गया, एक महीने बाद, एक 6 महीने बाद, इस तरह से हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण पूरा होता है। हेपेटाइटिस सी का टीकाकरण उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके लिए दवाइयां उपलब्ध हैं, अगर हम हेपेटाइटिस सी को डिटेक्ट कर लेते हैं तो हम उसका समय रहते इलाज कर सकते हैं।
0: चलिए, तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे उन युवाओं के लिए और उन व्यक्तियों के लिए जो हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में नहीं जानते हैं। इसके साथ ही सर, फैटी लीवर की समस्या आजकल सामान्य हो गई है, इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है और हमारी लाइफ स्टाइल को कैसे प्रभाव करती है ये?
1: फैटी लीवर, जैसे आजकल ज्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं उनके अल्ट्रासाउंड देखो सबको फैटी लीवर है। इसमें जो कॉमन रिस्क फैक्टर्स हैं जिनमें किन लोगों में ये ज्यादा देखा जाता है, उनमें सबसे पहले जिनका लाइफस्टाइल खराब है, जिनका बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड मील लेते हैं, जो ओवरवेट हैं, जिनको लंबे समय से डायबिटीज है, ये सब लोग हैं जो फैटी लीवर के लिए ज्यादा प्रोन है, इनको ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं फैटी लीवर।
0: मतलब ये तो साबित है कि अगर हमें अपने शरीर को और स्वस्थ रखना है तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज वगैरह ये सब जंक फूड अवॉइड करने जरूरी है।
1: बिल्कुल, इसके अलावा हमें अपना वजन और अपना शुगर, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको शुगर नियंत्रित रखना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक अनियंत्रित होने से भी ये फैटी लीवर के रिस्क को बढ़ाता है।
0: सर, आप ये भी बताइए कि एक स्वस्थ लीवर के लिए युवाओं को अपनी डेली रूटीन में कौन कौन से 3 बड़े बदलाव करने चाहिए?
1: इसमें एक तो व्यायाम शामिल करना चाहिए, दूसरा अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, तीसरा जंक फूड को बिल्कुल बंद करना चाहिए।
0: जैसे कि सर, हम देखते हैं कि जो हमारे आजकल की युवा श्रोता हैं, युवा लोग हैं, वो बॉडी बिल्डिंग और जिम का बहुत क्रेज है उनमें, तो क्या बिना डॉक्टरी सलाह लिए सप्लीमेंट और प्रोटीन पाउडर लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं?
1: जी बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जिनमें बहुत सारे हानिकारक केमिकल्स वगैरह मिलते हैं, इसके अलावा स्टेरॉइड्स वगैरह रहते हैं, तो कुछ भी प्रोटीन पाउडर या कुछ भी प्रोडक्ट लेने से पहले निश्चित रूप से डायटिशियन या डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए।
0: मतलब जैसे कि काफी बार हमारे जो युवा साथी हैं वो टीवी एड्स वगैरह में देख के कुछ भी सप्लीमेंट्स या प्रोटीन पाउडर वगैरह यूज करते हैं, तो वो हमें कम से मतलब वो

0: हमें डॉक्टर की सलाह से ही यूज करने चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: वरना ये हमारी बॉडी को हार्मफुल और नुकसान भी कर सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बहुत सारे जो ड्रग इंड्यूस्ड लेवर इंजरी रहते हैं, जिसमें कुछ लोग पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां वगैरह जस्ट बिल्डअप प्रोटीन और इन सब के लिए यूज करते रहते हैं और वो लीवर को खराब करते हैं।
0: सर, अक्सर हम सुनते आए हैं कि सामान्यता ऐसी धारणा है कि लीवर की समस्या एल्कोहलिक की वजह से होती है, तो इस धारणा के बारे में आपकी क्या राय है?
1: एल्कोहल निश्चित रूप से लीवर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। ज्यादातर जो पेशेंट एल्कोहलिक हैं, उनका लीवर धीमे धीमे डैमेज हो जाता है। अगर समय पे बंद नहीं करते हैं तो आगे चल के वो लीवर सिरोसिस और उसमें आगे चल के कैंसर भी होने की संभावना रहती है। इसलिए कुछ पेशेंट पूछते हैं अल्कोहल कितना मात्रा में सेफ है, तो मेरा यही कहना है कि अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
0: चलिए, तो अल्कोहल हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है।
1: बिल्कुल
0: सर, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और नींद का न आना जैसी समस्याएं आमतौर पर सामान्य है, तो यह हमारे लीवर को किस प्रकार प्रभाव करते हैं?
1: तनाव और नींद कम आने से हमारे शरीर में जो स्टेरॉइड्स वगैरह रहते हैं उनका ज्यादा सीक्रेशन रहता है, उसकी वजह से फैटी लीवर होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो ऑक्सीडेटिव एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह रहते हैं उनकी मात्रा कम हो जाती है, तो वो कहीं ना कहीं फैटी लीवर और लीवर के नुकसान करने में काफी हद तक जिम्मेदार होता है।
0: मतलब कि जैसे कि जो हमारे वर्कहोलिक या वर्क पेशेवर लोग हैं उनको मतलब स्ट्रेस से दूर ही रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो अपनी नींद को ही पूरा करना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आवश्यक है और तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसके लिए व्यायाम और योगा वगैरह करना चाहिए।
0: जी सर, ये तो है कि मतलब अच्छी नींद और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें व्यायाम करना बहुत ही जरूरी है।
1: निश्चित रूप से।
0: तो आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि लीवर को स्वस्थ रखने के लिए जंक फूड का सेवन न करें, प्रोसेस्ड फूड न खाएं, ज्यादा से ज्यादा फल फ्रूट्स का सेवन करें, एक्सरसाइज नियमित रूप से करें। स्वस्थ रहने के लिए लगभग आधा घंटा तो रोज कम से कम एक्सरसाइज करें, शराब का सेवन न करें, हेपेटाइटिस बी एवं सी का जो लोग ज्यादा रिस्क पे हैं वो समय समय पर अपनी जांच करवाते रहें। इसके अलावा अपना जो वजन वगैरह कम रखें, शुगर का नियंत्रण रखें, कोलेस्ट्रॉल को न बढ़ने दें और समय समय पर डॉक्टर को संपर्क करते रहें।
0: सर, इसके लिए कोई डाइट चार्ट वगैरह कुछ हो तो आप हमारी युवाओं को बताएं इसके बारे में?
1: डाइट चार्ट में एक प्रॉपर डाइट चार्ट में सब कुछ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं लिपिड संतुलित मात्रा में होना चाहिए। उसमें प्रोटीन के सोर्स जैसे एग, हरी सब्जियां, नट्स, ड्राई फ्रूट्स और अच्छी मात्रा में पानी वगैरह पीना चाहिए, अच्छे से हाइड्रेट रखना चाहिए। इसके अलावा जंक फूड का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, खाने में जो ऑयली फूड्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए और शुगर्स को कम से कम रखना चाहिए।
0: सर, ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी डाइट से पोषक तत्व को ही यूज करना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मिनरल्स, माइक्रो एलिमेंट्स एंड प्रोटीन, इनकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए।
0: तो श्रोताओं, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे स्वस्थ रखकर हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। इसलिए अपनी जीवन शैली में थोड़ा बदलाव कर अपने लीवर को स्वस्थ रखें, क्योंकि कई बार छोटी छोटी असावधानी गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है। हम अपने लीवर की देखभाल करेंगे तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद।
2: तो दोस्तों, हम सभी को अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ शायद हम सभी को डेली व्यायाम भी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सभी डेली व्यायाम करेंगे तो हम अपनी बॉडी को एक रिफ्रेशमेंट देंगे, साथ ही साथ हमारी जो बॉडी है वो एक अच्छी इम्यूनिटी से बूस्ट करेगी। तो आप भी आज से ही संतुलित आहार के साथ और एक प्रॉपर नींद के साथ आप व्यायाम को ऐड करें, ताकि आपको एक रिफ्रेशमेंट लगे और एक आपको एक ताजगी लगे। तो दोस्तों, जब हमारी जीवन शैली संतुलित हो, हमारा लिवर स्वस्थ हो और शरीर मन दोनों फिट रहे, तो लाइफ अपने आप खूबसूरत लगने लगती है। और जब लाइफ हमारी इतनी खूबसूरत लगे तो दिल से बस यही निकलता है कि लव यू जिंदगी। तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ हम सुनते हैं डियर जिंदगी का यह प्यारा संगीत।

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत लव यू जिंदगी फिल्म डियर जिंदगी से अमित त्रिवेदी और जसलीन रॉयल की आवाज में बेहद प्यारा सा गीत। तो दोस्तों अभी हमारी और भी चर्चा होने वाली है, फिलहाल चलते हैं हम छोटे से ब्रेक की ओर।
1: अरे भाई रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनिए 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से 3 बजे तक आकाशवाणी झांसी पर।

0: दोस्तों ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम युवाणी में। दोस्तों खाना और घूमना आखिर किसे पसंद नहीं होता? ऑलमोस्ट सभी हैं जिसको पसंद होता है, जैसे कि मुझे पसंद है, क्योंकि खासकर आज के यूथ्स को कभी दोस्तों के साथ किसी नए कैफे को एक्सप्लोर करना, कभी रेस्टोरेंट की स्पेशल डिश ट्राई करना, तो कभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फूड्स को फॉलो करना, ये सब आज के यूथ्स की लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है। लेकिन आपने दोस्तों कभी सोचा है कि जिस होटल, रेस्टोरेंट या कैफे में हम जाते हैं उसके पीछे कितने सारे प्रोफेशनल की मेहनत होती है? एक टेस्टी डिश तैयार करने वाले शेफ से लेकर सर्विस देने वाली पूरी टीम हर किसी की भूमिका निभाती है। अगर आपको भी लोगों से मिलना पसंद है, नई नई चीजें सीखना अच्छा लगता है और फूड और कुकिंग में इंटरेस्ट है, या फिर आप मैनेजमेंट स्किल्स की एक नए प्लेटफॉर्म पर दिखाना चाहते हैं, तो आप भी होटल, रेस्टोरेंट या कैफे में अपना करियर बना सकते हैं। पर दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको 10th और 12th को पास करना होगा। इसके बाद आप होटल मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन, बेकरी और जैसे नए कोर्सेज को कर सकते हैं। और दोस्तों इन कोर्सेज के माध्यम से आपको इंडस्ट्री से जुड़ी प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो दोस्तों अगर आपको कुकिंग का शौक है तो आप शेफ के रूप में अपना करियर बना सकते हैं। और आज के समय में शेफ केवल किचन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपनी यूनिक रेसिपी और क्रिएटिविटी के थ्रू लोगों का मन भी जीत लेता है। तो दोस्तों अगर आप अपना खुद का होटल और रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं तो दोस्तों है ना ये मजेदार आपके लिए ऑप्शन। तो दोस्तों अगर आपको भी दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, खाना पसंद है और कई सारी चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद है, तो आप आज से ही इसमें करियर बना सकते हैं और अपना एक खुद का होटल और रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट में है तो आप होटल मैनेजर या फिर फूड और बेवरेज मैनेजर या फिर आप इवेंट मैनेजर जैसे पोस्ट पर भी काम कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको और भी जानकारी लेनी है तो आप कई सारी यूनिवर्सिटीज में जाकर इन सारे कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं और इसमें एक बेहतरीन ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे तो काफी पसंद है खाना भी और एक्सप्लोर करना भी, तो आशा करती हूँ कि आपको भी होगा और आप भी आज से ही इसके बारे में सोचना शुरू करेंगे। तो दोस्तों अभी और भी ढेर सारी आपको जानकारियां मिलने वाली है, फिलहाल चलते हैं फिर से एक और छोटे से ब्रेक की ओर।
1: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
2: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
3: लग जा गले के फिर,
1: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: होगी मशहूर करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीते कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: दोस्तों ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम युवाणी में। तो दोस्तों अभी हमने जाना कि कैसे होटल रेस्टोरेंट कैफे यूथ्स के लिए शानदार करियर लेकर आ रहे हैं। पर दोस्तों जब बात होटल और रेस्टोरेंट की होती है तो सबसे पहले याद आता है टेस्टी फूड्स यानी कि स्वादिष्ट खाना का। लेकिन दोस्तों सिर्फ टेस्ट ही काफी नहीं बल्कि खाने का असली महत्व है स्वाद के साथ हमारे शरीर की जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी। इसलिए हम सभी को खाने की प्लेट सिर्फ पेट भरने तक का साधन नहीं है बल्कि हमारे स्वास्थ्य की नींव भी है। इसलिए जरूरी है कि हमारी प्लेट कलरफुल हो यानी कि रंग बिरंगी व संतुलित हो। अक्सर हम देखते हैं कि बाहर खाने जाते हैं कुछ भी डिश को देखते हैं तो हम उसकी कलरफुल से ही जज कर लेते हैं। तो आप हमेशा कलर से ही उसको जज ना करें बल्कि आप ऐसे फूड को ऑर्डर करें जिसमें न्यूट्रिएंट्स हो काफी सारे। तो दोस्तों एक हेल्थी प्लेट में

दाल, वेजिटेबल्स, सैलेड, फ्रूट्स, दूध, दही जैसी कई सारी चीजें शामिल होनी चाहिए, क्योंकि हर फूड हमारे शरीर को अलग अलग टाइप की न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है। और दोस्तों, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि आप जब भी किसी फूड को लेते हैं तो आप सीजनल फूड को लें, रेदर देन वो वाले फूड्स को जो आप बिना किसी मौसम के यूज करते हैं। अगर आप सीजनल फूड को लेते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्दी होगा और ज्यादा प्रोटीन भी देगा। तो दोस्तों, दाल और दूध में भी हमें कई सारे प्रोटीन

हेल्दी होगा और ज्यादा प्रोटीन भी देगा। तो दोस्तों दाल और दूध में भी हमें कई सारे प्रोटीन्स मिलते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रूट्स जिसमें हमें विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। तो दोस्तों आज के समय में फास्ट फूड और जंक फूड का चलन काफी ज्यादा है। हम सभी भी देखते हैं कि हम यूथ्स को, हम बच्चों को सबसे ज्यादा फास्ट फूड और जंक फूड ही पसंद आते हैं। और जब भी हम बाहर जाते हैं तो मन तो सभी का करता है, चाहे हम फिर पार्टी में जाएं तो खाने का सबका मन कर जाता है। तो दोस्तों स्वाद के साथ साथ खाना ठीक है, लेकिन उनको डेली की हैबिट बनाना वो शायद हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होगा। तो आप जानते भी हैं कि हम पार्टी का नाम सुने और पार्टी में जाएं और कुछ खाए नहीं, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो आप पार्टी में बिल्कुल जाएं, एंजॉय करें, किसी के फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाएं, शादी में जाएं, लेकिन आप वही प्लेटिंग का खाना देखें जो हमारे लिए न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों चलिए फिर आपको ले चलते हैं आज की पार्टी के गीत की ओर और सुनवाते हैं फिल्म बजरंगी भाईजान से।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे गीत आज की पार्टी, और पार्टी का नाम सुन के, इन्विटेशन का नाम सुन के कोई पार्टी में जाए ना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों आप बिल्कुल जाइए पार्टी में, एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेशन कीजिए, और बाहर जाने पर भी आप वही न्यूट्रिएंट्स को, फूड्स को लीजिए जिसमें आपको न्यूट्रिएंट्स अच्छे अच्छे प्रोवाइड हो। तो दोस्तों आज की मेरी आपके लिए यही सीख है कि आप अच्छा फूड लें, टेस्टी फूड लें और हेल्दी फूड लें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का कार्यक्रम, और आप व्यायाम को करने वाले हैं अपने डेली लाइफ में या नहीं, ये अपने सुझाव आप हमारे आकाशवाणी झांसी के इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पर जरूर भेजें। हमारा पिन कोड है 284128। तो इसी के साथ अपने दोस्त चंचल कुशवाहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

0: नारी जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को प्रत्यंचा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों कैसी हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बहनों आजकल मौसम ने थोड़ी सी करवट तो ली है, थोड़ी सी राहत मिली है गर्मी से। ऐसे में हमें अपना ख्याल रखना है, साथ ही साथ परिवार का भी ख्याल रखना है, क्योंकि बहनों हम महिलाओं के ऊपर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। हम महिलाओं को वैसे भी काफी मुश्किलों से गुजरना होता है, फिर चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो, उसके साथ बच्चों की परवरिश करना हो या बाहर के काम हो, लेकिन हम महिलाएं हर काम को आसानी से कर लेती हैं। इन सब जिम्मेदारियों के बीच हम महिलाएं अपने अधिकारों को भूल जाती हैं। बहनों महिलाओं के अधिकार लैंगिक समानता सुनिश्चित करते हैं, ताकि महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा, कार्य, संपत्ति और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। भारत में संविधान और विभिन्न कानूनों द्वारा महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा को कानूनी मान्यता दी गई है। भारतीय कानून में महिलाओं को प्राप्त कुछ अधिकार हैं, जिसमें कानूनी समानता तथा समान कार्य के लिए समान वेतन, घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकार, कार्यस्थल पर यौन पीड़न से बचाव, संपत्ति और उत्तराधिकार का अधिकार, सुरक्षित गर्भपात का अधिकार, मातृत्व लाभ, शिक्षा का अधिकार। आज घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून विषय पर हम जानकारी के लिए और अधिक जानकारी के लिए आपको सुनवाने जा रहे हैं पुनः प्रसारित भेंटवार्ता, जिसमें भेंटवार्ताकार हैं गिरीश किशोर विश्वकर्मा जी, जो कि अधिवक्ता हैं, जिनसे बातचीत की है पल्लवी वर्मा ने। आइए सुनते हैं पुनः प्रसारित भेंटवार्ता।
1: हमारे देश में प्राचीन काल से ही महिलाओं को पूजनीय माना जाता है। माना जाता है कि जिस घर महिलाओं का सम्मान और आदर किया जाता है, वहाँ खुद भगवान निवास करते हैं। यह कहने सुनने मात्र की बात लगती है, क्योंकि आज भी कई घरों में महिलाएं हिंसा का शिकार होती हैं। आज के सभ्य समाज में जहाँ महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाता है, उन्हीं के साथ कई तरह की हिंसाएं भी समाज में मौजूद व्यक्ति ही करते हैं। इसके प्रति महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए और आज हम इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे, और इस विषय पर और अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अधिवक्ता गिरीश किशोर विश्वकर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार।
2: नमस्कार। महिलाओं के बिना समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
1: बिल्कुल।
2: चाहे परिवार हो या रिश्ते, महिलाएं हमेशा इंसान के जीवन का अभिन्न अंग है।
1: जी।
2: इसके बावजूद भी महिलाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि हर पड़ाव पर भेदभाव व कई प्रकार की हिंसा का सामना करना पड़ रहा है, जो लंबे समय से चला आ रहा है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में लगभग 15 मिलियन किशोर लड़कियां, जो कि 15 से 19 वर्ष आयु की होती हैं, अपने जीवन में कभी न कभी उत्पीड़न का शिकार होती। इसके अलावा 3 बिलियन महिलाएं वैवाहिक बलात्कार की शिकार होती हैं। आंकड़ों के अनुसार लगभग 33% महिलाओं व लड़कियों को शारीरिक यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। वैश्विक स्तर पर मानव तस्करी के शिकार लोगों में लगभग 50% वयस्क महिलाएं हैं। रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में लगभग 650 मिलियन महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 3 में से 1 महिला किसी न किसी प्रकार की शारीरिक हिंसा का शिकार होती है।
1: किशोर जी, ये तो एक तरीके की हिंसा के बारे में, महिलाओं के साथ ऐसी और कौन कौन सी हिंसाएं हैं जो हमें देखने को मिलती हैं?
2: महिलाओं के साथ कई प्रकार की हिंसा होती है।
1: जी।
2: जैसे शारीरिक दुर्व्यवहार, जिसमें गला दबाना, धक्का देना, पिटाई करना, हानि पहुंचाना या धमकी देना शामिल है।

युवा साथियों के लिए अभी युववाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। एफएम 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत।

0: दूसरे प्रकार की होती है यौन हिंसा, जबरदस्ती यौन संबंध बनाना या ऐसी यौन क्रिया की मांग करना जिसे वो नहीं करना चाहते। तीसरी प्रकार की होती है भावनात्मक दुर्व्यवहार, जैसे गाली देना, ताने देना, असम्मानपूर्ण व्यवहार करना। चौथा, परिवार तथा समाज से अलग थलग करना, भयभीत करने के लिए परिवार या समाज का सहारा लेना, इसमें टेक्स्ट मैसेजेस भेजना, फेसबुक पोस्ट करना आदि शामिल हो सकते हैं।
1: ग्रीस जी, ये तो बात की हिंसाओं के अलग अलग प्रकार के बारे में। इसके बाद जो सामान्यता हमें देखने को मिलती है, कई न्यूज़पेपर में, अखबारों में आए दिन पढ़ने को मिलता है कि महिलाएं घरेलू हिंसा का काफी शिकार हो जाती हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: घर में घर के लिए लोग ही दुश्मन बन जाते हैं। कई छोटी छोटी बातों पे ऐसा माहौल बन जाता है कि घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं हो जाती हैं। घरेलू हिंसा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य
1: जी।
0: महिलाओं के अपने साथियों व पूर्व साथियों के द्वारा घरेलू हिंसा भुगतने की संभावना ज्यादा रहती है।
1: जी जी।
0: दुर्व्यवहारकर्ता मोहक तथा अपने समुदाय में सम्मानीय हो सकता है अथवा स्वयं को एक पीड़ित के रूप में दर्शा सकता है। जो लोग घरेलू हिंसा में जीते हैं वे अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर जयकाल और श्री हाइड अथवा बाहर देवदूत व घर में राक्षस के साथ रहते हैं। दुर्व्यवहारकर्ता अक्सर अपने दुर्व्यवहार से नकारते हैं अथवा जिस व्यक्ति से दुर्व्यवहार करते हैं उस पर आरोप लगा देते हैं। उन्हें लगता है कि वे दुर्व्यवहार करने के अधिकारी हैं और उनके द्वारा ऐसा व्यवहार तर्कसंगत है। घरेलू हिंसा के साथ जीने वाले बच्चे यदि इस हिंसा को देखें या सुने नहीं तब भी उन पर इसका प्रभाव पड़ता है। उनकी देखभालकर्ताओं द्वारा जीवन में घर पर अनुभव किए जाने वाले भय और व्यवधान के कारण ऐसा होता है। बच्चों के लिए घरेलू हिंसा एक सदमा होता है।
1: मान लीजिए यदि किसी महिला के साथ ऐसी कोई घरेलू हिंसा हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में उस महिला को क्या करना चाहिए?
0: ऐसी महिला को घर में चुप नहीं बैठना चाहिए
1: जी।
0: चाहे उत्पीड़न उस महिला के साथ हो या उसकी जानकारी में किसी और महिला के साथ हो, उसे एक जागरूक महिला की तरह आगे आना चाहिए और दूसरी महिलाओं की मदद करनी चाहिए।
1: इसके अलावा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि घरेलू हिंसा के लिए कौन कौन से कानूनी प्रावधान हैं?
0: इसमें सबसे पहले आप अपने संबंधित थाने में जाएं
1: जी।
0: और अपने साथ हो रहे उत्पीड़न की जानकारी दें
1: जी।
0: और आपके साथ अपने सबूत भी रखें और उनको पुलिस महोदय को आप इस घटना से अवगत कराएं
1: जी।
0: यदि कभी कभी कुछ कारणों से पुलिस आपके शिकायत पर कार्य नहीं करती है
1: जी।
0: तो आप मुख्यमंत्री के पोर्टल जन सुनवाई पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कार्रवाई निश्चित होगी। इसके लिए महिला थाना भी बना हुआ है और अपने आप शिकायत महिला थाने में ले जा सकती हैं। वहां दोनों पक्षों को बुलाकर समाधान निकाला जाता है और गंभीर स्थिति में संबंधित व्यक्ति पर मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। यदि शिकायत गंभीर है और किन्हीं कारणों से पुलिस कार्रवाई न करे तो आप राज्य महिला आयोग या राष्ट्रीय महिला आयोग के पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत कर सकती हैं। साथ ही साथ अगर इससे भी आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप सीधे कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं और मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जो आप जिनकी डिमांड कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू? आप वित्तीय सहायता मांग सकते हैं, आप भरण पोषण मांग सकते हैं, आपने जरूरत के सब सामान यदि आपको नहीं मिल रहे हैं तो वो उसकी डिमांड कर सकते हैं।
1: और भी कई ऐसी चीजें होती हैं कि क्या कहते हैं, महिलाएं होती हैं जो कई तरीके से सक्षम होती हैं पर उसके बावजूद भी वो इस घरेलू हिंसा को सहती रहती हैं। बहुत शिक्षित होने के बावजूद वो घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते।
0: हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं
1: जी।
0: और वो शराब पीकर आता है और वो शराब नहीं छोड़ना चाहता और आप अपने पति से बहुत प्यार करती हैं, तो ये भी एक घरेलू हिंसा का कारण होता है कि आप सहती जाती हैं। आपको सहना नहीं है, आपको बदलना है, आपको अपनी आवाज उठानी है। ठीक है, आप अपने पति से प्यार करती हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उसकी गलतियों का एहसास कराना बहुत जरूरी है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप वोकल नहीं होंगे, तब तक उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहां गलत हूं, मैं क्या गलती कर रहा हूं। तो ये अच्छी बात है कि आप अपने पति से प्यार करती हैं, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर वो कोई गलती कर रहा है, अगर वो मारपीट कर रहा है, अगर वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आपको आगे आके एहसास दिलाना चाहिए, आपको बोलना चाहिए कि अगर ये गलती, ये गलत काम आप नहीं छोड़ोगे तो मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। भले आप प्यार करती हो लेकिन आपको दबना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आपको सहते नहीं रहना चाहिए।
1: यूं कहें कि परस्पर आपसी

0: सहयोग से बैठकर बातचीत कर भी आप ऐसी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और बड़े बुजुर्गों के साथ आपसी सहमति से ही इन सबको निपटा सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं होता कि हर बार आपको या किसी तरीके का कोई कानूनी कार्यवाही करनी पड़े। किशोर जी, ये तो हमने बात की घरेलू हिंसा के कानूनी प्रावधानों के बारे में, पर कई बार घर में छोटी छोटी बातें भी घरेलू हिंसा का रूप ले लेती हैं, तो इसके लिए घरेलू रूप से क्या समाधान किए जा सकते हैं?
1: ये बड़ी अच्छी बात कही आपने
0: जी।
1: कई बार ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो घरेलू हिंसा का रूप ले लेती हैं। जैसे कई बार बच्चों का ना होना एक कारण होता है, कई बार बेटा ही ना होना जिसके वजह से वंश चलता है और लोग ये मानते हैं कि अगर हमारा बेटा नहीं होगा तो आगे वंश नहीं चलेगा। इस सोच को हमें बदलना होगा क्योंकि महिलाएं आज हर एक हिस्से में आगे आई हैं और उन्होंने अपनी सफलता का परचम गाड़ा है, चाहे वो शैक्षणिक हिस्सा हो या कहीं भी नौकरी की बात हो, हर जगह महिलाएं अग्रणी रूप से आगे हैं और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है हम जहां सफलता नहीं हासिल कर सकते। तो ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी। अगर आपके बच्चे नहीं है तो आप बच्ची गोद ले सकते हैं, अगर आपका बेटा नहीं है तो आप बेटे को गोद ले सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप इस वजह से घरेलू हिंसा में पड़ जाएं और अपनी पत्नी की मारपीट करें, ये चीजों को बदलना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए महिलाओं को आवाज उठानी पड़ेगी, महिलाओं को चुप नहीं बैठना है। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो आगे आकर आप घरेलू हिंसा के तहत कार्रवाई करें, थाने जाएं, महिला राज्य आयोग आपके साथ है, कानून आपके साथ है, आप घबराएं नहीं, आप चुप नहीं बैठें, आप आगे आएं।
0: किशोर जी, कई बार महिलाओं की ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि वे चाह कर भी इस घरेलू हिंसा से नहीं बच पाती और मजबूरन उन्हें उसी व्यक्ति के साथ रहना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है?
1: हाँ, कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि महिलाएं डिप्रेशन में चली जाती हैं, महिलाओं को कोई रास्ता नजर नहीं आता है।
0: हाँ।
1: महिलाओं को ये नहीं समझ में आता है कि अगर मैं अपने पति के प्रति कोई कार्रवाई करूंगी तो वो कार्रवाई होगी कि नहीं। कभी कभी वो राजनीतिक तौर पर बहुत सक्षम होते हैं, कभी कभी वो पैसे के रूप में बहुत सक्षम होते हैं और महिलाएं कभी कभी बहुत निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने घर के बड़ों की मदद लेनी चाहिए और उनको अपनी स्थिति से अवगत कराना चाहिए। उन्होंने ये बताना चाहिए कि ऐसी स्थिति मेरे साथ अक्सर होती है और घर के बड़े जरूर मदद करेंगे और आप इस स्थिति से निकल पाएंगे, लेकिन आपको चुप नहीं बैठना है, आपको आगे आके सबको बताना है, जो भी आपसे संबंधित लोग हैं उनको ये स्थिति से अवगत कराना है कि मेरे साथ ऐसी घटना हो रही है लगातार।
0: हाँ, सही बात। अगर आप घर के परिवार से नहीं बोल पा रहे, उनके सदस्यों को बताइए कि मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आपको सही सलाह भी दे पाएंगे। आप हमें और क्या जानकारी देना चाहेंगे इसके आगे?
1: आपको कभी दबाव में नहीं आना है, आपको चुप नहीं बैठना है, अपनी स्थिति को एकदम स्पष्ट करना है, अपने लोगों को बताना है, घर के बड़े लोगों को बताना है और आगे बढ़ें, तरक्की करें, देश को आगे ले जाएं।
0: आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मैनु स्वागत है आपका। अभी आपने सुना पुनः प्रसारित भेंटवार्ता, विषय था घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून। भेंटवार्ताकार थे गिरीश किशोर विश्वकर्मा, जो कि अधिवक्ता हैं, उनसे बातचीत की पल्लवी वर्मा ने। मैनु, बातें हम आपसे और भी करेंगे, लेकिन उसके पहले ले लेते हैं एक छोटा सा विराम।
3: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
4: पर कुछ धुनें कभी पुरानी नहीं होती।
5: लग जा गले के फिर,
3: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी कलाई होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: अरे भाई रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
3: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
4: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: मैनू स्वागत है आपका, मैनू आपको सुनवा देते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत। फिल्म है अनवर, गायक रूप कुमार राठौर व साथी कलाकार।

मैंने आप सुन रही थी बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म अनवर से, गायक रूप कुमार राठौर व साथी कलाकार। मैंने प्रधानमंत्री जी का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम धार्मिक अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों के सामाजिक आर्थिक विकास और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। इस योजना को 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें सबसे पहले शिक्षा के अवसर बढ़ाना, जिसमें ICDS आंगनबाड़ियों के माध्यम से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के बच्चों और माताओं को समान पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना है। शिक्षा के अंतर्गत छात्रवृत्ति योजनाएं, गैर सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, साथ ही कोचिंग और कौशल विकास में नया सवेरा और नई उड़ान जैसी योजनाओं के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना। दूसरे भाग में आर्थिक क्रियाकलाप और रोजगार के अंतर्गत ऋण सहायता, कौशल विकास, रोजगार में उचित हिस्सा। तीसरे भाग में जीवन स्तर में सुधार, ग्रामीण और शहरी आवास, साथ ही मलिन बस्तियों का सुधार करना है। और चौथे भाग में सांप्रदायिक सद्भाव और सुरक्षा के अंतर्गत हिंसा रोकना और विशेष अदालतें शामिल हैं। तो बहनों, ये तो बात हुई जानकारी नवीन 15 सूत्रीय कार्यक्रम की। बहनों, अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाना एक हानिकारक आदत है, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती है। इस आदत को बदलने के लिए अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें स्वीकार करने और स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने की आवश्यकता होती है। जब भी आप अपनी भावनाओं को छुपाने या अनदेखा करने लगे, तो तुरंत उस पल को पहचानें। खुद से पूछें कि आप वास्तव में क्या महसूस कर रही हैं। खुद को दोषी महसूस किए बिना अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। साथ ही साथ हमें यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि कोई भी भावना गलत नहीं होती। अपनी सच्ची भावनाओं को किसी करीबी, विश्वास पात्र या रिलेशनशिप एक्सपर्ट के साथ साझा करें। आप चाहें तो अपने विचारों को डायरी में भी लिख सकती हैं। यदि आपको गुस्सा, दुख या हताशा महसूस होती है, तो उसे छुपाने के बजाय किसी रचनात्मक काम, खेल या कला के माध्यम से उसको बाहर निकालें। तो बहनों, बातें हम आपसे और भी करेंगे, लेकिन सुन लेते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत फिल्म आक्रोश। गायक हैं अनुपम आमोद, जावेद अली व साथी कलाकार।

मैंने बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम आपको सुनवा रहे थे फिल्म आक्रोश से, गायक अनुपम आमोद, जावेद अली व साथी कलाकारों की आवाज में। लेकिन अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, क्योंकि जो स्टूडियो की घड़ी है वो कह रही है कि अब समय खत्म है कार्यक्रम का, अगले कार्यक्रम की तैयारी है। इसलिए जल्दी से कार्यक्रम का पता नोट कर लीजिए। कार्यक्रम का पता है नारी जगत कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड है 284128। साथ ही साथ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। और इजाजत दीजिए प्रत्यंचा को, नमस्कार।

अभी बहनों का कार्यक्रम नारी जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। एफएम 103 पर आकाशवाणी का यह झांसी केंद्र है। शाम के 6 बजे हैं। प्रस्तुत है किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

कार्यक्रम चौपाल सुनने वाले सबरे किसान भैया बहनन को और पंच भैयन को अपने भैया पवन की नमस्कार। हाँ तो भैया रो देखो जैसी संजय विरिया भाई और हम अपन के बीच में आ गए अपन से बतकाव कर विकलाने। तो देखो भैया बतकाव अपन से हम सबसे पहले कराते हैं अपनी खेती बाड़ी को, कैसे हमारे सभी किसान भैया ने देखो खरीफ फसलन की तैयारी में जुट जाते हैं इस समय, कैसे गर्मी को मौसम देखो चल रहा है और गर्मी देखो इसके बाद देखो बरसात भी कहूं कहूं देखो मौसम बदल भी और कहूं कहूं अवे बारिश की शुरुआत नहीं भैया है। तो देखो भैया हम अपन को बता देवे कि अगर अपन देखो खेती तो करते ही हैं और खेती अपन जब करते हैं तो एक चीज को अपन को बहुत जरूरी ध्यान रखने हैं कि जो अपने खेत की मिट्टी होते तो मिट्टी की जांच अपन को जरूर करवाने। कैसे भैया अगर जब अपन मिट्टी की जांच करवा ले तो उसमें क्या होता भैया कि अपन को जो सॉयल हेल्थ कार्ड जी अपन कर देंगे जो मिट्टी की जांच से मिलत है तो उसे देखो अपन को दुनिया तमाम की फायदा हो जाते है। का हो जाते भैया जब मिट्टी की जांच अपन करवाओ तो लैब में जब अपन मिट्टी भेजत हो तो ई के लाने देखो अपन को नमूना लेने पड़ते हैं। जब अपन नमूना ले तो नमूना अपन को खेत में से ई तरीका से लेने अलग अलग हिस्सा से अपन को नमूना ले लें। और एक बात को ध्यान रखने की जब अपन नमूना लेवे तो ऐसी जगह से लेवे कि जितने देखो गाय भैंस को गोबर न डलो हो, पेड़न की छाव न हो या को रासायनिक जो पदार्थ होते उनकी कहूं बोरी या को खाद ना डलो हो। तो ऐसे अपन 10-11 जगह से अलग अलग हिस्सा से नमूना ले सकते हैं। नमूना इकट्ठे करने के बाद अपन को प्रयोगशाला भेजने पड़ते हैं जो कि सरकारी प्रयोगशाला होती है, चाहे भैया अपन ब्लॉक स्तर पे ले जावे और चाहे अपन जिला स्तर पे अपन इको ले जा सकते हैं जांच करवा बिकलाने। तो इनमें देखो पीएच मान भी निकल जाते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास आदि की जांच जामे होते की। और जब हम कार्ड की बात करें तो जो एक आधार होता है रिपोर्ट कार्ड जी अपन बोलते हैं सॉयल हेल्थ कार्ड जी अपन कहेंगे तो इसे जानकारी मिल जाती है अपन को कि अपने खेतर में कौन कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन अपन फसल बो सकते हैं कौन से खेत में, जो भी अपन को सब पत्व फल जाते हैं। यानी कि जो कम खर्चा में अपनों कार्ड मिल जाते हैं वही में सब पूरी तरीका से लिखवा रहा थे कि अपन को कितने उर्वरक डालने और कौन सी फसलें अपन को अपने खेतन में बोने हैं। यानी कि अपन को खर्चा भी बचत है और जो हमारे किसान भैया ने अनाधुंध रासायनिक खादन को प्रयोग खेतन में कर रहे हो तो देखो इसे भी अपन को बचत मिल जाते है। और जब एक चीज और अपन को बता देवे कि जब सॉयल हेल्थ कार्ड अपन को बन जाते हैं तो लगातार जो अपनी मिट्टी को जो सुधार होते हैं जब जांच होते तो मिट्टी की जो गुणवत्ता होते है बातचीत अपनी की बनी जाती है। कैसे भैया जब उसके हिसाब से मिट्टी की जांच के हिसाब से अगर जब अपन खाद अपने देखो खेतन में डालो तो जरूर है कि अपन को फायदा जरूर हुए। तो इकला ने देखो हम अपन को बता दें कि जब अपन सॉयल हेल्थ कार्ड देखो बनवाओ तो इसमें तमाम प्रकार की जैसे हम अपन को बता ही रहे कि फायदा हो जाते हैं। और इसे एक चीज और हम अपन को बता दें कि जब अपन देखो सॉयल हेल्थ कार्ड अपन को बन जाते हैं मिट्टी की जांच अपन के खेत की हो जाते तो इसमें अपन जो मिलत है जो अपन उत्पादन लेते हैं चाहे अपन भैया गेहूं करवे चाहे इस समय भैया जायद खरीफ की बात करें तो जामे अपन चाहे भैया मूंगफली करवे चाहे उर्द करवे चाहे तिली की फसल लेवे तो इसे कहा कि जो अपनों जो अपने बीज निकलत जो अपने के खाद्य पदार्थों में से निकलत है वे अपन को देखो एकदम स्वस्थ मिलत है यानी कि बिना जहर के अपन को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसे कहा भैया कि जो अपन उनको अपने सेवन में ले रहे तो भी अपन को नुकसान नहीं करता है। तो इस बात को मैं किसान भैया ने विशेष तौर पर ध्यान रखे कि अपन बुआई से पहले अपने खेतन की जो मिट्टी की जांच है वह करवा लेवे और सॉयल हेल्थ कार्ड अपनो बनवा लेवे। मिट्टी की जांच को जो कार्ड बना था तो उसमें पूरा देखो ब्यौरा लिखो मिल जाते हैं अपन को जो हम अपन को देखो बताई चुके। तो भैया इस बात को मैं किसान भैया ने विशेष तौर पर ध्यान रखे कि बुआई के पहले जो अपन की एक मिट्टी की जांच हो तो वह अपन को करवाने हैं। और देखो भैया एक चीज और हम अपन को बता देवे कि जब अपन मिट्टी की जांच करवाऊ तो और जब मिट्टी की जांच अपन की हो जाते तो अपन को देखो पूरा पतो चल जाता और उसके बाद देखो एक चीज और हम अपन को बता दें कि देखो खेती तो अपन करते ही है और मिट्टी की जांच भी अपन करवा लो और मिट्टी की जांच करवा के बाद अपन को एक बात को और ध्यान रखने कि जब अपन बुआई करें तो बुआई जब अपन करते हैं तो अपन को अपने जो खेत हैं बुआई के पहले अपने खेतन की अपन को पूरी तरीका से तैयारी कर लेने हैं यानी कि अपन को खेत तैयार करने हैं। खेत तैयार में देखो तमाम प्रकार की चीजें हो जाती जैसे भैया अपन खेती में देखो तैयार कर रहे हैं खरीफ फसलन के

0: मैं तो सबसे पहले क्या करने भैया, अपन को जो खेत है, जो अपने खेत हैं, उनकी सफाई और जुताई अपन को करने हैं। सफाई में हम अपन को बता देवे कि जो अपन ने पिछली फसल अपन ने रबी में जो बुआई करी थी, उनकी जो डंठल होते हैं, अवशेष जो होते हैं, वे खेत में पड़े रहतेंगे, तो अपन उनको उठा सकते हैं, उठा के उनकी खेतन की अपनी सफाई कर लेवे। या भैया अपन लोग ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर से देखो, ट्रैक्टर की मदद से मिट्टी में अपन उनको मिला सकते हैं। जब ये मिट्टी में मिल जाते हैं तो देखो भैया अपने देखो फायदा भी करते हैं खेत को, और जो अपने अवशेष जो होते हैं वे अपनी नष्ट भी हो जाते, जिससे अपनों खेत भी एक सौ हो जाते हैं। और इसके बाद एक चीज को और ध्यान रखने के, जब अपन खेत में ये सब मिला दे तो खेत को समतलीकरण सोई अपन को करने हैं। जब समतलीकरण की बात आउते तो जो कहा होता है भैया, जब पानी बरसत, जब बारिश होते बरसात के मौसम में, तो कहा होता है अपने खेतन में अगर अपना समतलीकरण को खेत नहीं है, एक सौ खेत नहीं है, तो जगह जगह देखो पानी भर जाते हैं। और जब पानी भरा दे तो अपनी कछु फसलें ऐसी भी होती कि जितने पानी भरो रहे तो भी खराब हो जाती है। यानी कि तिल की अपन बात करें तो तिल की अगर हमारे किसान भैया ने बुआई कर रहे तो अपन को ऊंचाईदार खेत पे बुआई करने हैं, जहां हम अपनों को बताई दे। और अगर अपने खेत समतल नहीं है तो अपन समतल कर ले, जिसे भैया अपने जो फसल है वह खराब नहीं हो पाते। और जब समतल कर रहे थे तो बारिश को पानी एक जगह इकट्ठो नहीं हो, और यानी कि सामान्य रूप से पूरे खेत में एक सौ रहते हो, जिसे वो जल्दी सूख भी जाए और उसे अपनी फसल को नुकसान भी नहीं होता है। और एक चीज और हम अपन को बता दें कि हमारे बेसंतर ज्यादातर हमारे किसान भैया ने देखो मेड़बंदी भी करवाए, तो एक चीज की ध्यान अपन को और रखना है कि जब जो मौसम ऐसे हुए भैया, खरीफ की फसलें जो होती हैं वे बारिश में अपन करते हैं, तो ऐसे में देखो पानी तो बरसते ही है, वो पानी बरसत है तो अपने खेतन में कहा होते जलभराव हो जाते हैं। तो ई किला ने देखो अपन पानी निकासी की, यानी कि जल निकासी की अपन को व्यवस्था बनाए रख लें, छोटी छोटी अपन नालियां भी बना सकते हैं। कैसे भैया, अगर खेत में पानी ज्यादा भर गो और अपन की जो बंदियां डली या भैया अपन के जो मेड़बंदी अपन करे हैं और अगर फट गई, तो देखो भैया अपने खेत को जो लेला जी अपन बोला था, यानी कि जो ऊपर की अच्छी मट्टी होते वह बह जाते, और जब बह जाते तो देखो अपनी फसलें भी अच्छी नहीं होती हैं और अपनों खेत भी देखो खराब हो जाते। तो ई बात को भी हमारे किसान भैया ने ध्यान रखें कि अपन को अपने खेत की लेवलिंग, और लेवलिंग के बाद देखो भैया जो भी अपनी मट्टी है, जो भी अपन ने अपने खेत बनाए हैं, उनमें जल निकासी की व्यवस्था अपन को बनाकर रखने, जिससे अपन कोनो प्रकार से खेत को नुकसान ना हो पावे। तो इन बातों को हमारे किसान भैया ने विशेष तौर पर ध्यान रखें, और भैया बात का हम अपन आगे और करें, लेकिन कहना भैया एक उमदा सी अपन को भेंट वार्ता सुनवा देवे। तो कृषि में बीज उपचार को महत्व, आकाश यादव वरिष्ठ शोध अध्येता भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी से, पुष्पेंद्र भैया की बातचीत। तो भैया हम भी सुने और अपन भी सुनो कि बीज अपन को कैसे बुआई करने हैं, कैसे बीज उपचार करने हैं, कौन कौन से तरीका है जो डॉक्टर साहब बता रहे, तो हम भी सुने और अपन भी सुनो।
1: किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं और वैज्ञानिकों के जो सुझाव है वो भी आप तक पहुंचाते रहते हैं। आज आकाशवाणी के स्टूडियो में मौजूद हैं आकाश यादव, जो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में वरिष्ठ शोध अध्येता है, यानी कि शोध कार्य कर रहे हैं। आकाश जी, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाश जी, अभी इस समय पे गर्मी का मौसम है और हमारे किसान भाई खरीफ फसलों की तैयारी में लग जाएंगे और अधिक उत्पादन हो खरीफ फसलों में, उसके लिए हमारे किसान भाई बीज उपचार करते हैं, लेकिन बीज उपचार का कृषि में क्या महत्व है, इसके बारे में हमारे किसान भाइयों को आकाश जी बताएं कि जो बीज उपचार है, अगर हमारे किसान भाई बीज उपचार करते हैं तो इससे उन्हें कौन कौन फायदे होंगे।
2: नमस्कार किसान भाइयों, अधिक उत्पादन हेतु खरीफ फसलों में बीज उपचार के महत्व के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी कि जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटता है। इसी प्रकार यह लागू होती है हमारी फसलों उत्पादन में कि जिस प्रकार से हम स्वस्थ और निरोग बीज बोएंगे, वैसे ही हमारी फसल स्वस्थ होगी तथा अधिक उत्पादन प्राप्त होगा। इसके लिए बीज उपचार का बहुत ही महत्व है। बीज उपचार वह प्रक्रिया है जिसमें बीजों को हम बीज जनित या मृदा जनित रोगों से बचाव हेतु भौतिक, रासायनिक या जैविक कारकों की एक निश्चित मात्रा से बीजों का शोधन करते हैं।
1: आकाश जी, अब बीज उपचार के बारे में अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा है, तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये बताएं कि बीज उपचार कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे हमारे किसान भाई इसको कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन किसान भाइयों के मन में ये भ्रम होता है कि हम जो बीज लाए हैं सरकारी गोदाम से या ब्लॉक से, सर्टिफाइड दुकान है, वहां से जो बीज ला

0: आए हैं वो अमूमन बीज उपचारित करके बीज मिलते हैं, लेकिन उन बीजों में भी कई प्रकार से हम बीज उपचार कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। अगर हमारे किसान भाई विधिवत तरीके से बीज उपचार करें तो रोग राई का प्रकोप भी कम होता है और उत्पादन भी अच्छा होता है। तो आज हम बात करेंगे बीज उपचार के प्रकार के बारे में, तो कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं, किस किस तरीके से हमारे किसान भाई बीज उपचार कर सकते हैं।
1: किसान भाइयों, बीज उपचार के प्रकारों के बारे में अगर हम बात करें तो बीज उपचार को हम दो प्रकार से बीजों का उपचार कर सकते हैं, एक तो बीजों की ड्रेसिंग करके, दूसरा बीजों की कोटिंग करके। अगर हम बात करें बीज ड्रेसिंग के रूप में, तो इसमें हम बीजों को उपचारित करने के लिए एक बीज उपचार ड्रम का उपयोग करते हैं। इस ड्रम के अंदर हम निर्धारित मात्रा में आवश्यक बीज की मात्रा एवं दवाओं की मात्रा को उसमें रख देते हैं। इसके पश्चात ढक्कन को बंद करके 10 से 15 मिनट तक उसको घुमाते हैं। जब बीज की सतह पर दवा की परत पूर्ण रूप से चढ़ जाती है तो उसके पश्चात हम बीज को सुखा करके बुआई हेतु उपयोग में ले लेते हैं। किसान भाई, वो बीज उपचार की एक दूसरी विधि है जिसमें हम बीजों की कोटिंग करते हैं। इसमें हमें किसी बाहरी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके हम बीजों को भूमि की सतह पर फैलाकर दवा के मिश्रण को उसके ऊपर छिड़क देते हैं। इसके पश्चात हाथों में ग्लव्स को पहनकर हाथों से कोटिंग कर देते हैं। उसके पश्चात बीजों को छाया में सुखाकर हम बुआई के लिए उपयोग में ले लेते हैं। इसके बाद हम किसान भाइयों बात करेंगे बीज उपचार की विधियों के बारे में। तो मुख्यतः बीजों को उपचारित करने के लिए 6 विधियां उपयोग में लाई जाती है। सबसे पहले हम बीज को उपचारित करने की पहली विधि के बारे में बात करें तो इसमें हम नमक के घोल के द्वारा बीजों को उपचार करते हैं, जो आसानी से उपलब्ध होती है किसानों के लिए। इसके लिए हम 20 ग्राम नमक को लेकर 1 लीटर पानी में घोल लेते हैं और उस पानी के घोल में बीजों को डाल देते हैं। पानी के घोल की सतह पर जो बीज ऊपर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं, उनको हम निथार कर अलग कर देते हैं। इसके पश्चात बीजों को छाया में सुखा लिया जाता है और बीजों को बुआई के लिए उपयोग में लाते हैं। दूसरी विधि, बीजों को ताप के द्वारा उपचार दिया जाता है। इस विधि का उपयोग हम मुख्यतः मई जून के महीने में करते हैं, जब तापमान बहुत ज्यादा होता है। जब तापमान 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है तो बीजों को हम फर्श की सतह पर फैलाकर धूप में सुखाते हैं। इससे बीजों की सतह पर उपस्थित बैक्टीरिया और फंगस जो होते हैं वह मृत हो जाते हैं और हमारा बीज को जीवाणु एवं रोगाणुओं से मुक्त हो जाता है
0: जी।
1: तीसरी विधि में अगर हम देखें तो इसमें हम बीजों को कवकनाशियों के रसायनों से उपचारित करते हैं। इसके लिए बाजार में विभिन्न प्रकार के कवकनाशी रसायन उपलब्ध हैं। मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मक्का जैसी खरीफ की फसलों में कैप्टान या थायराम की 20 ग्राम 250 ग्राम मात्रा का उपयोग में लाते हैं। इसको हम बीज कोटिंग करके बुआई हेतु उपयोग में लाते हैं। आजकल बाजार में विभिन्न प्रकार के जैविक कारक भी बीज उपचार हेतु उपलब्ध हैं, तो इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के जैविक कारकों से बीजों को उपचारित करते हैं। इसमें ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ट्राइकोडर्मा विरडी, बैसिला सबक्लेस, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस जैसे बैक्टीरिया बहुत कारगर साबित हुए हैं। विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलों, धान, गन्ना, कपास, सब्जियों इत्यादियों में इन कवकनाशियों द्वारा हम बीजों को उपचारित करते हैं।
0: बिल्कुल आकाश जी, जो आपने बताया ट्राइकोडर्मा विरडी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानिया, इनकी मात्रा कितनी हमारे किसान भाई को यूज करना चाहिए? अगर हमारा किसान भाई प्रति किलोग्राम के दर से अगर बीज उपचार करे तो इसकी कितनी मात्रा हमारे किसान भाई को लेनी चाहिए?
1: बिल्कुल, इसके लिए हमें 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजों को उपचारित करके,
0: मतलब 4 ग्राम, बिल्कुल, मतलब 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज में हम इसको मिलाएं और इस प्रकार से उपचारित करें, निश्चित है कि वो एक अच्छा बीज उपचार माना जाएगा।
1: इसके बाद अगर हम बात करें तो एक विभिन्न प्रकार के आजकल जैव उर्वरकों के ऊपर शोध किया जा रहा है, तो विभिन्न प्रकार के जीवाणु जैव उर्वरक जो रोग प्रबंधन में तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसके साथ साथ पोषक तत्व प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके द्वारा बीज को उपचारित करने पर यह मृदा में अपनी संख्या को बढ़ा करके नाइट्रोजन एवं फॉस्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से हमारे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पर्म और फास्फोरस घोलक जीवाणु प्रमुख हैं।
0: राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर और पीएसबी की आपने बात की है। अब अमूमन हमारे किसान भाई दो प्रकार की फसलें लगाते हैं, एक तो एक बीज पत्री, एक द्वि बीज पत्री, यानी दलहनी फसलें और सामान्य फसलें। तो इनमें कौन कौन सी जो बैक्टीरिया हैं या कौन कौन सी ऐसे जो आपके जीवाणु हैं जो दलहनी फसलों के लिए हमें यूज करना है, और किसान भाइयों को कौन ऐसे हैं जो बिना दलहनी के लिए उन्हें उपयोग करना
1: है? अगर हम दलहनी फसलों की बात करें तो इनमें इनकी जड़ों में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, तो इसके लिए हम राइजोबियम और फास्फोरस घोलक जीवाणु जिसे हम पीएसबी कहते हैं, इनको प्रमुखता से दलहनी फसलों के लिए उपयोग में लाया जाता है और आदलहनी फसलों के लिए एजोटोबैक्टर, एजोस्पोरम और पीएसबी इन जीवाणुओं को उपयोग में लाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु क्या होता है, दलहनी फसलों की जड़ों में गांठों में पाया जाता है।

0: और यह हवा से नत्रजन को लेकर पौधों को उपलब्ध कराता है। यह सभी दलहनी फसलों के लिए प्रमुखता से उपयोग में लाया जाता है। इसकी अगर हम इसकी बीज उपचार की विधि के बारे में बात करें तो हम 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको बीजों को उपचारित कहते हैं।
1: अच्छा।
0: और इसी तरह फास्फोरस घोलक जीवाणु हम सभी प्रकार की फसलों में उपयोग में लाते हैं, चाहे वो दलहनी हो चाहे अदलहनी फसलें हो। यह अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में परिवर्तित कर देता है। यह सभी फसलों में उपयोग में लाया जाता है। और इसकी मात्रा अगर बात अगर हम करें तो यह 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हम इसको उपचारित करते हैं।
1: मतलब ये हो गया कि हमारे किसान भाई अगर दलहनी फसलों का बीज उपचार करना है तो उन्हें राइजोबियम और पीएसबी की आवश्यकता पड़ेगी, और अगर हमारे किसान भाई एक बीज पत्री यानी दलहनी फसलों का नहीं अगर उपचार कर रहे हैं, कोई सामान्य बीज है, तो उनके लिए एजोक्टोबैक्टर और पीएसबी, कुल मिला के पीएसबी का हमें दोनों जगह यूज करना है यानी प्रयोग करना है, चाहे वो दलहनी फसल हो या हमारी एक बीज पत्री फसल हो।
0: जी। अब अगर अदलहनी फसलों की बात करें तो अदलहनी फसलों के लिए हम एजोटोबैक्टर और एजोस्पोरम को मुख्य रूप से उपयोग में लाते हैं। एजोटोबैक्टर एक ऐसे जीवाणु होते हैं जो मृदा में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और हवा के नत्रजन को भूमि में छोड़ने का कार्य करते हैं। इनको हम केवल दलहनी फसलों को छोड़कर सभी फसलों में उपयोग में ले सकते हैं। इनकी भी मात्रा अनुशंसित मात्रा की बात अगर हम करें तो बीज उपचार हेतु 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसकी मात्रा का हम उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से एजोस्पोरम बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो यह मृदा में पौधों के जड़ क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला जीवाणु है जो वायुमंडल की नत्रजन को स्थिरीकरण करने का कार्य करता है। यह दलहनी फसलों को छोड़कर हम सभी प्रकार की फसलों जैसे धान, मोटे अनाज, गन्ना इत्यादि सभी फसलों में इसको हम उपयोग में ले सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसके द्वारा बीज उपचार करने के लिए हम 5 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज को उपचारित करते हैं, उसके पश्चात बीज को बुआई हेतु प्रयोग में लाते हैं।
1: अब हमारे कुछ ऐसे उर्वरक भी हैं, जीवाणु भी हैं, कुछ जैव उर्वरक हैं, उनके द्वारा भी हमारे किसान भाई बीज उपचार करते हैं। वो कौन कौन से जैव उर्वरक और जीवाणु हैं?
0: मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जैव उर्वरकों में हमारे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पोरम, पीएसबी है। और अगर हम जैविक कारकों की बात करें तो जैसा हमने पहले बताया कि ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ट्राइकोडर्मा ब्रेडी, इसके अलावा सीडोमोनास, बैसिलस सबक्लस प्रमुख हैं। अगर हम जीवाणु जैवरोगों द्वारा बीज उपचार की प्रक्रिया के बारे में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम हम 1 लीटर पानी में 100 से 150 ग्राम गुड़ मिलाकर घोल को गर्म करते हैं, और जब वह गर्म घोल ठंडा हो जाए तो उसके पश्चात हम 1 हेक्टेयर हेतु 600 ग्राम जीवाणु जैवरोग को उसमें घोल लेते हैं। उसके पश्चात बीज की सतह फैलाकर उस पर हम उस उर्वरक के घोल को हल्के हाथों से कोटिंग कर देते हैं। उसके पश्चात 4 घंटे तक छाया में सुखाकर उसको उपयोग में ले लेते हैं।
1: आकाशी, ये तो सारा बीज उपचार हो गया। हमारे किसान भाई इस समय जैविक खेती भी कर रहे हैं।
0: जी।
1: किसान भाई प्राकृतिक खेती यानी नेचुरल फार्मिंग भी कर रहे हैं।
0: जी।
1: और निश्चित ही हमारे किसान भाइयों को करना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हम बीमारियों से कैसे बचे, और उसके लिए जो जैविक उत्पाद है उनकी आवश्यकता पड़ेगी, और साथ ही साथ हमारी जो खेती है उसकी लागत कम कैसे हो। अगर लागत कम करना है, उत्पादन बढ़ाना है, किसानों की अमूमन जो लागत है वो बढ़ती जा रही है, इसके लिए हमारे किसान भाई और भारत सरकार का भी ऐसा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा किसान भाई नेचुरल फार्मिंग करें यानी प्राकृतिक खेती करें। जो किसान भाई इस समय प्राकृतिक खेती कर रहे हैं वो बीजों को कैसे उपचारित करें और किस विधि से करें और काहे से करें?
0: जो किसान भाई हमारे प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उनको बीज उपचारित करने के लिए हम बीजामृत का उपयोग करते हैं। बीजामृत एक है जो किसानों द्वारा अपने आसपास जो उपलब्ध पदार्थ हैं जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, चूना, मिट्टी, इन पदार्थों के एक घोल द्वारा तैयार किया जाता है।
1: तो ये जैसे हमारे किसान भाई अगर बीजामृत बनाना चाहे तो इसकी कितनी कितनी मात्रा उनको लेनी चाहिए?
0: इसके लिए किसानों को 5 किलोग्राम गाय का गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम चूना, 1 किलोग्राम मिट्टी और 20 लीटर पानी की आवश्यकता होती है।
1: जी।
0: इन पदार्थों को मिलाकर हम एक घोल तैयार करते हैं जिसे बीजामृत कहा जाता है। यह घोल हमारा 100 किलोग्राम बीज के लिए बीज उपचार हेतु पर्याप्त होता है।
1: अच्छा, अब बात यह आती है कि हमारे किसान भाई जैसे जो भी खाद दे रहे हैं, बीज उपचार कर लिया है, बीज उपचार करने से पहले किसान भाइयों को क्या भूमि शोधन करना चाहिए, यानी कि जो मृदा है उसको भी शोधन करना चाहिए, और अगर शोधन करना चाहिए तो वो कौन कौन सी विधियां हैं और उससे क्या लाभ किसान भाइयों को होगा?
0: जो किसान भाई अगर बीज उपचार कर रहे हैं और मृदा शोधन करना चाहते हैं तो बीज उपचार करने से तो बीजों को लाभ होगा ही होगा। इसके साथ ही अगर मृदा उपचार करना चाहते हैं तो जो अभी जैव उर्वरक हमने बताए हुए हैं उनके द्वारा मृदा शोधन भी किया जा सकता है। इसके लिए जैव उर्वरकों की अत्यधिक मात्रा की आवश्यकता

0: होती है जिसके हम जिसको हम पानी में घोल बना करके मृदा पर छिड़काव के द्वारा उपयोग में लाते हैं। बीज उपचार करने से न केवल बीजों का अंकुरण अच्छा होता है बल्कि बीज जनित एवं मृदा जनित विभिन्न प्रकार के रोगों से उनकी सुरक्षा प्रदान होती है और दलहनी फसलों में मुख्यतः जो खरीफ की फसलों में बोई जाती है उनमें नोड्यूलेशन की संख्या में वृद्धि होती है जिससे मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बहुत अधिक मात्रा में होता है।
1: साथ ही साथ किसान भाइयों को आकाशीय ये भी बताइए कि हमारे किसान भाई खाद का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं
0: जी।
1: अगर किसान भाई संतुलित खादों का प्रयोग करें
0: जी।
1: तो खेती में कितना फायदा होगा?
0: जिस प्रकार से मानव जीवन में हमें एक संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार मृदा को भी एक संतुलित पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसान भाई वर्तमान में अंधाधुंध उर्वरकों का उपयोग किए जा रहे हैं जिसके कारण आज बहुत प्रकार की बीमारियां मनुष्य में एवं विभिन्न प्रकार की बीमारियां पशुओं में फैलती जा रही हैं। इसका मुख्य कारण अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग ही है। किसानों को सर्वप्रथम मृदा की जांच करानी चाहिए। इसके पश्चात जो कृषि विज्ञान केंद्र या ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के किसी भी केंद्र के द्वारा जो मात्रा अनुशंसित की जाती है उसमें डालने के लिए उस अनुशंसित मात्रा का ही संतुलित मात्रा में उपयोग करना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में जैविक उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। हमें हमारी मृदा में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व अघुलनशील अवस्था में उपलब्ध होते हैं जैसे फास्फोरस जिंक इनके लिए हमें घुलनशील अवस्था में लाने के लिए विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरकों का उपयोग करते हैं जैसे फास्फोरस घोलक जीवाणु जिंक घोलक जीवाणु और अब तो वर्तमान में नैनो यूरिया विभिन्न प्रकार के तरल उर्वरक भी सरकार द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं। किसानों को इन उर्वरकों की एक संतुलित मात्रा का ही उपयोग में प्रयोग में लाना चाहिए जिससे एक संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन हो सके।
1: आकाश जी आप एक युवा हैं
0: जी
1: और भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान में शोध कार्य कर रहे हैं, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? आजकल हमारे युवाओं में होड़ लगी है नौकरी पाने की, जबकि हमारा जो युवा है वो धीरे धीरे खेती की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है और हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस समय खेती से दूर भाग रहे हैं?
0: एक प्राचीन कहावत है कि उत्तम खेती मध्यम वान अधम चाकरी भीख निदान, अर्थात प्राचीन काल में ही खेती करना एक सबसे अच्छा कार्य माना जाता था। असल में किसी भी देश के मानव संसाधन को उत्पादक बनाने में युवाओं का एक बड़ा योगदान रहा है। कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की कोई कमी नहीं है। भारत की लगभग 50% से अधिक आबादी कृषि से ही जीविकोपार्जन करती है। वर्तमान में फल फूलों की खेती मशरूम की खेती पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन मिल्क प्रोडक्ट तैयार करना कुक्कुट पालन मधुमक्खी पालन मछली पालन खाद्य प्रसंस्करण दलहन और तिलहनी प्रोसेसिंग यूनिट इत्यादि प्रमुख रोजगार के साधन है। तो कृषि शिक्षा की अगर हम बात करें तो कृषि शिक्षा और शोध में उत्तरोत्तर लगातार प्रगति होती जा रही है और जिसके कारण कृषि में नए नए शोध के नए नए विषय सामने आए हुए हैं। इसलिए युवा प्रतिभा को कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित कर रही है और उच्च शिक्षा प्राप्त कर युवाओं को खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से नए किसान इंजीनियरिंग स्नातक या MBA शिक्षा हासिल करने के पश्चात खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं और अच्छी शिक्षा उपज प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए कृषि में भविष्य की रोजगार की अपार संभावना है।
1: बिल्कुल सही कहा आकाश जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी, हमारे जो युवा कृषक हैं उनको भी दी। निश्चित ही हमारे किसान भाई इसको सुनकर लाभान्वित होंगे। आकाश जी आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ तो भैया देखो जो तो सुनी अभी अपन ने भेंट वार्ता कृषि में बीज उपचार का महत्व, आकाश यादव वरिष्ठ शोध अध्येता भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी से जिनसे बतकाव कर रहे थे पुष्पन भैया। तो देखो भेंट वार्ता भी होगी और अब सुना था कछु संदेश।
3: अरे भैया का करें जब खेती किसानी में कौन फसल में कितने पानी देवे खाद बीज कितने से ले आवे किसे पूछ में कछु समझे ही में नहीं आऊ।
4: अब चिंता छोड़िए किसान भाइयों, क्योंकि आकाशवाणी झांसी प्रस्तुत करता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला। 24 कड़ियों के इस कार्यक्रम में कृषि बागवानी पशुपालन मत्स्य आदि से संबंधित जानकारियाँ और व्यवहारिक अनुप्रयोग की विधियाँ बताई जाएंगी। यह कार्यक्रम 10 मई 2026 से प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
5: अरे साचू भैया।
4: हाँ बाबू।

0: बिल्कुल सर। हाँ
1: हाँ तो भैया देखो संदेशन की बात अब अपन से बतकाओ कहना ना भैया कल लो जाए, लेकिन बतकाओ कर भी के पहले हमारे किसान भैया सोच रहे होंगे बतकाऊ करे जो जाने का मनोरंजन नहीं करवो तो नहीं। बिल्कुल भैया देखो एक अपन को कहरवा सुनवा रहे और गावे वाले कलाकार भैया है राम प्रसाद अहरवार, तो देखो हम भी सुने और अपन भी सुनो।

हाँ भैया, एक दिन बरस जैसो कटरो, और देखो भैया कितना उम्दा अपन ने जो कहरवा सुनो, और गावे वाले कलाकार वही क्या थे, राम प्रसाद अहिरवार। और देखो आज की सीख में एक ही बात हम अपन से कहो चाहें कि अपन को जैविक खाद अपनाने हैं और मिट्टी को स्वास्थ्य अपन को बचाने हैं। कैसे भैया, रासायनिक खादन के अनादंध प्रयोग से अपन देखो मिट्टी को स्वास्थ्य खराब कर जा रहे हैं, तो इस चीज से अपन को बचने हैं। जैविक खाद अपन अपनाओ और भैया परंपरागत खेती अपन करें तो अपनी मिट्टी भी बचे और अपनों भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। और देखो भैया, घड़ी आगे इजाजत नहीं दे रही अपन से कछु और बतकाओ कर भी खिलाने, तो लिख लो कार्यक्रम को पतो, कार्यक्रम चौपाल द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड है भैया 284128। एक ही संगे अपने भैया पवन कुंद वाद्या, नमस्कार।

पहले सुनिए ये सूचना। कुमारी मोहिनी पुत्री मनोज उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम विलाटी खेत थाना एरच जिला झांसी जो दिनांक 13 अप्रैल 2026 को दोपहर 12 बजे अपने घर से कहीं चले जाना व वापस न आने के संबंध में थाना एरच जनपद झांसी में दिनांक 20 अप्रैल 2026 को गुमशुदगी की पंजीकृत किया गया। आपकी शारीरिक बनावट है रंग गोरा चेहरा गोल आंख कान नाक औसत है कद 5 फीट है। जिस किसी को इनके बारे में सूचना मिले कृपया कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झांसी को सूचित करें।

अभी आप सुन रहे थे किसानों का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल, एफएम 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में और खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना।

और अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ देर बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित करेंगे 7:19 पर प्रादेशिक समाचार और 7:31 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। बुंदेली लोक संगीत का कार्यक्रम खुशबू माटी की प्रसारित किया जाएगा 7:45 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। 8:15 पर एक कलाकार क्रम में फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रेया घोषाल के गाए कुछ गीत।

8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। नौ बजकर 15 मिनट पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आकाशवाणी मुंबई से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुनेंगे। श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम हेलो झांसी प्रसारित किया जाएगा रात्रि 9:30 बजे। स्वर व प्रस्तुति सहयोग किरण लता का होगा, प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि कुमारी। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में जसवंत सिंह और अनुराधा पौडवाल की गायी कुछ गजलें। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

FM 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। 6:35 हुए हैं, लीजिए सुनिए नए पुराने गीत सुहाने।

अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में अभी आपने प्रिया सरिया का लिखा ये गीत सुना। संगीत दिया था सचिन जिगर ने। फिल्म का नाम था ए जेंटलमैन।

0: ऑफ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: भैया कछू अनमने दिखा रहे, क्या बात है
2: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
1: हैं? अपन को भैया पता नहीं है, आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
2: हेलो किसान फोन इन जोका है भैया?
1: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उसको समाधान करने के लाने बैठक है विशेषज्ञ भैया।
2: कैसे पाए समस्या को समाधान?
1: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
2: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
1: फोन नंबर है 0510-232-0068।
2: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अपना हो हमारे किसान भैया परेशान।

0: थ्री इडियट्स इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान की आवाज में। शब्द रचना स्वानंद किरकिरे की थी, संगीत शांतनु मोइत्रा का था।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: किशोर कुमार की आवाज में अभी आपने फिल्म सौतन का ये गीत सुना। सावन कुमार के गीत को संगीत दिया था उषा खन्ना ने।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में अभी आपने फिल्म सन्यासी का ये गीत सुना। वर्मा मलिक के गीत को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
3: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
4: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: ये गीत था आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाज में। फिल्म का नाम था बाजीगर। जफर गोरखपुरी के गीत को संगीत दिया था अनु मलिक ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म नूरी का ये गीत अभी आपने सुना। साहिर ने गीत लिखा था, संगीत दिया था खयाम ने। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म पाकीज़ा का ये गीत। शब्द रचना कमाल अमरोही की है, संगीत गुलाम मोहम्मद का है।

लता मंगेशकर के गाये फिल्म पाकीज़ा के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने समाप्त हुआ। एफएम 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। शाम के 7:19 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

0: क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
1: करेक्ट।
0: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
2: आरबीआई कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र, 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह, प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जनभागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक, अब समाचार विस्तार से।

0: गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देशभर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा।
1: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए हब बनेगा और खासतौर पे यहाँ एरोट्रोपोलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाकर बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
0: इस पहली उड़ान से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसानों को स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ भेजा गया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के प्रतिबद्ध है और इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।
2: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज लखनऊ, बेंगलुरू, हैदराबाद और अमृतसर के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। 1 जुलाई के बाद 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें संचालित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़कर एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में रामभाव महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने आयोजन के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। इस सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स एक साथ एक मंच पर जुटे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार की इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक

0: बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचार

0: newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। 12 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से शुरू हुआ। श्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली। भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अयोध्या में श्रीराम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
2: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो अब ट्रस्ट को करना है, क्योंकि 90% निर्माण कार्य अब हस्तांतरित हो गया है, ट्रस्ट को दे दिया गया, अभिलेख दे दिए गए, रिकॉर्ड दे दिए गए, तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं जरूर कहूंगा कि एक चुनौती है। ट्रस्ट जो राम कथा संग्रहालय है, हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
0: सोमवती अमावस्या आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में आस्था के साथ मनाई गई। प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण के साथ घाट पर जल अर्पित कर पूजन किया और जरूरतमंदों को अनाज और वस्त्र दान किया। सोमवार और अमावस्या का यह मेल स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। सनातन धर्मावलंबी महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए आज के दिन व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके कच्चे सूत का फेरी देती हैं। अधिक मास का भी समापन सोमवार को पड़ने से आज बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में श्रद्धालु जलाभिषेक किया। प्रवीण आकाशवाणी समाचार प्रयागराज।
0: इस अवसर पर अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मिर्जापुर सहित अन्य जिलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान के साथ ही प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद। कहा, अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र। 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जनभागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
5: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
5: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री। चलो,
4: कहाँ
6: एडमिशन कराने? खाता हुआ एक्टिव,
4: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। शाम के 7:31 हुए हैं और प्रस्तुत है स्वास्थ्य वार्ता। स्वास्थ्य वार्ता स्वास्थ्य मैगजीन के अंतर्गत, पहले सुनिए ये वार्ता जिसका विषय है रेबीज से बचाव, और वार्ताकार हैं सुनील यादव।
1: नमस्कार, मैं सुनील यादव चीफ फार्मासिस्ट हूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय में। मैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में SIHFW में लगातार तमाम सारे हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दे रहा हूं। इसके अलावा मैं उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल का चेयरमैन रहा हूं। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो जन स्वास्थ्य का विषय है, रेबीज एवं पशु के काटने पर सावधानियां, इस पर चर्चा करूंगा। हम लोग हर जगह इस चीज को कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एक ऐसा चीज है ये कि जहां पे प्रिवेंशन ही सब कुछ है, रेबीज में प्रिवेंशन ही सब कुछ है, और अगर रेबीज हो गया तो 100% ये जानलेवा है, लेकिन इसको पूरी तरीके से रोकी भी जा सकती है अगर हमने उसका वैक्सीनेशन करा लिया या समय पे प्रिवेंशन का इलाज ले लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ये कहता है कि रेबीज एक वायरल रोग है, लैसा वायरस से होता है। ये संक्रमित पशुओं के काटने से, खरोचने से या उनकी लार, उससे खुले घाव या म्यूकस मेम्ब्रेन के संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता है। अगर ये होता है तो आपको केवल वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना है। ये ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है, और एक बार अगर रोग के लक्षण प्रकट हो गए तो आप 100% मृत्यु हो जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि इसके बारे में आप जानकारी रखें, जागरूकता बहुत ही आवश्यक है। इसकी एपिडेमियोलॉजी को अगर समझते हैं हम, तो विश्व स्तर पे लगभग हर वर्ष 26,000 से लेकर 55,000 लोगों की डेथ रेबीज के कारण होती है। हमारे देश में प्रतिवर्ष लाखों लोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर या अन्य पशुओं को काटने का शिकार होते हैं। कुछ देशों में चमगादड़ के काटने से भी ये रोग हो रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश और भारत को अगर हम देखते हैं तो अधिकांश जो भी मामले आते हैं वो आवारा कुत्तों के ही काटने से हो रहे हैं, और बच्चों में ये जोखिम बहुत ज्यादा पाया जाता है। चिकित्सालयों में हमने देखा है कि बच्चों की संख्या भी बहुत होती है, क्योंकि वो अक्सर पशुओं के साथ जब खेलते हैं तो सावधानी नहीं बरतते, या उनकी ऊंचाई कम होती है बच्चों की, और पशु उनको आराम से अपना शिकार बना लेते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर कोई कुत्ता या कोई अन्य पशु काट ले तो हमें सबसे पहले क्या करना है? तो जैसे ही कुत्ता काटे या चाटे तो तुरंत घाव की अच्छी तरह सफाई करनी है। अब सफाई करने का इसका एक गाइडलाइन बनी हुई है। उस गाइडलाइन में कहा गया है कि काटे हुए स्थान को कम से कम 15 मिनट तक साबुन से धोना है और बहते हुए पानी में धुलना है। अगर आपके पास टोटी का पानी, टैप वाटर आ रहा है, तो टैप के नीचे वो पार्ट कर लें शरीर का जहां पे कुत्ते ने काटा है या जानवर ने काटा है या चाटा है, और साबुन लगाते रहिए। अगर आपके पास टैप वाटर नहीं है तो किसी भी बर्तन में आप पानी ले लीजिए और पानी को उस पर गिराते रहिए और धुलते रहिए। ये सबसे सरल उपाय है और संक्रमण के खतरे को काफी हद तक कम कर देता है। और घाव पर आपको घर में कुछ नहीं करना है, कोशिश ये करें कि कोई भी पट्टी नहीं बांधेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि लोग अक्सर चिकित्सालयों में आते हैं तो पट्टी बांध करके आते हैं, तो आपको पट्टी नहीं बांधना है। धुलने के बाद आप कोई एंटीसेप्टिक जैसे पोविडीन, आयोडीन है, या जिसको बीटाडीन के नाम से आप लोग जानते हैं, वो लगा सकते हैं। गांव में एक मिथ है, हम लोग चिकित्सालयों में देखते हैं कि लोग जब आते हैं कुत्ता काटने का मरीज लेकर के, तो घाव पर मिर्च लगाए होते हैं या हल्दी लगाए हुए होते हैं। इस मिथ को तोड़िए, घाव पर कोई मिर्च नहीं लगाना है, कोई हल्दी, तेल, मिट्टी, चूना, राख, किसी प्रकार का कोई लेप जो है घरेलू न लगाइए। ये ऐसी प्रथाएं जो है नुकसानदायक हो सकती हैं और संक्रमण को और फैला सकती हैं। घाव की सफाई के तुरंत बाद आप तुरंत सरकारी जो भी चिकित्सालय आसपास हो वहां जाइए। अगर सरकारी चिकित्सालय नहीं है तो निजी चिकित्सालय पर भी जा सकते हैं। मेरा ये कहना है कि लगभग सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो 5,000 से लेकर 50,000 के एरिया में हर जगह उपलब्ध हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जिला चिकित्सालय हैं, या जो बड़े चिकित्सालय हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सभी जगहों पे एंटी रेबीज वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों उपलब्ध हो गया है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि स्थानीय चिकित्सालय जो सरकारी चिकित्सालय है वो वहां पे जाएं और वहां के चिकित्सक से तत्काल संपर्क करें। चिकित्सक ये तय करेंगे कि ये जो बाइट है वो बाइट किस प्रकार की है और उसमें कौन सी दवा, कौन सा इंजेक्शन लगाना आवश्यक है। हम अगर शॉर्ट में बात करते हैं तो जो गाइडलाइन है WHO की, उसमें पशुओं के काटने की घटनाओं को 3 श्रेणी में विभाजित किया है, Grade 1, Grade 2 और Grade 3। Grade 1 में केवल पशु छू लिया या आपने पशु को छू लिया, उसके द्वारा त्वचा को बिना नुकसान पहुंचाए चाट लिया उन्होंने, या ऐसी जगह चाटा जहां पे स्किन ब्रोकन नहीं है, ऐसे मामलों में इसको Grade 1 कहा जाता है और यहां पे वैक्सीन की आवश्यकता नहीं होती। Grade 2 दूसरी श्रेणी है ये, इसमें त्वचा में हल्की खरोच आ जाती है और इसमें जो है एंटी रेबीज वैक्सीन की आवश्यकता होती है। Grade 3 ये गंभीर होती है, जिसमें गहरा घाव हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, यानी कि रक्त बह रहा होता है, किसी वाइटल आर्गन यानी महत्वपूर्ण आर्गन पे काट लिया हो कुत्ते ने या जानवर ने, चेहरा, गर्दन, सिर या हाथ, जो अपर लिम्ब है बॉडी

0: उस पे अगर काट लेता है तो वहां से वायरस को ब्रेन तक पहुंचने में आसानी होती है, इसलिए ऐसी जगहों को हम लोग ग्रेड 3 में रखते हैं। या किसी आपके म्यूकस मेम्ब्रेन पर संक्रमित जो पशु का लार है वो सीधा उस पे लग गया हो तो इसको भी जो है ग्रेड 3 में ही माना जाता है। तो इस मामले में जहां पे भी ग्रेड 3 होता है वहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि सीरम होता है इसको लगाया जाता है और वो घाव पे ही लगाया जाता है जिससे कि वायरस जो है वो रेप्लिकेट ना करने पाए, वायरस को इन्फिल्ट्रेट कर दिया जाता है उसी जगह पे घाव और उसके आसपास ये लगा दिया जाता है। हालांकि इसमें एक चीज और है कि अगर वैक्सीन पहले से किसी को लगी हुई है या किसी पेशेंट को 7 दिन हो गया है वैक्सीन लगाए उसके बाद दोबारा उसको बाइट होती है या गंभीर बाइट होती है तो इम्यूनोग्लोबुलिन लगाने की आवश्यकता कम होती है। अगर कोई भी जानवर काट लेता है तो उसमें ये लोग कहते हैं कौन से जानवर के काटने से इसको लगाना है, तो केवल कुत्ता ही नहीं बिल्ली बंदर लोमड़ी भेड़िया या कोई अन्य संक्रमित स्तनधारी पशु अगर है तो उसके काटने से फैल सकता है। कुछ लोग ये जरूर पूछते हैं कि चूहे के काटने से होता है कि नहीं, तो गाइडलाइन ये कहती है कि जो जंगली चूहे हैं या जो घर में नहीं रहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशनों पे मोटे चूहे रहते हैं तो अगर वो काटते हैं तो वहां पे भी वैक्सीन लेते हैं। कितने इंजेक्शन लगाए जाने हैं, अब आप अस्पताल में जाएंगे तो 2 तरीके का ट्रीटमेंट होता है, एक इंट्राडर्मल लगता है जो दोनों बाहों पे लगता है, एक इंट्रामस्कुलर लगता है जो मांस में लगता है। अगर इंट्राडर्मल आप लगाते हैं तो 4 बार विजिट अस्पताल में करनी है और अगर मांस में लगता है तो 5 बार विजिट करनी होती है। अगर पहले से टीका लगा हुआ है किसी व्यक्ति को तो अगले 3 महीने के बीच में बाइट होने पर संभवतः वैक्सीन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन चिकित्सक को दिखाना आवश्यक है। और अगर 6 महीने हो 3 महीने से ज्यादा हो गया है तो उसे 2 टीका और लगेगा, वो A1 साइड लगेगा, इंट्राडर्मल लगेगा, वहां पे रेबीज के इम्यूनोग्लोबुलिन की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ लोग ये भी गलती करते हैं कि अगर पालतू कुत्ते ने काट लिया तो उपचार की आवश्यकता नहीं समझते, ये बहुत आवश्यक है कि उपचार करना है आपको और अस्पताल तक जाना है। अगर आपके घर में पालतू कुत्ता या बिल्ली है तो निश्चित रूप से आप उस कुत्ते का एंटी रेबीज टीकाकरण जरूर करा लीजिए, क्योंकि आपके बच्चों के लिए भी खतरा हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है। सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर रेबीज नियंत्रण के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, आप लोगों को हमेशा हम लोग एजुकेट करने का प्रयास करते हैं। तो आप याद रखिए कि पशु काटे तो घबराए नहीं, घाव को तुरंत साबुन और पानी से धोएं, डॉक्टर से संपर्क करें, वैक्सीन लगवाएं। हाई रिस्क कैटेगरी में अगर आप हैं, यानी आप पशुओं के साथ कार्य कर रहे हैं, आपने कुत्ता पाल रखा है या आप रेबीज के किसी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं तो प्री एक्सपोजर वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए, 3 डोज उसकी वैक्सीन की लगती है। ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसे सही समय पर उपचार लेकर के पूरी तरीके से रोका जा सकता है। थोड़ी सी जागरूकता आपकी जान बचा सकती है और दूसरे की भी जान बचा सकती है। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार तथा समाज को भी रेबीज के प्रति जागरूक बनाएं। धन्यवाद।
1: रेबीज से बचाव, इस विषय पर आप ही आप सुन रहे थे सुनील यादव की वार्ता। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं वार्ता जिसका विषय है किडनी स्वास्थ्य के प्रति रहें सचेत, और वार्ताकार हैं डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा।
2: डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा, मैं पोस्टेड हूं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में एज अ कंसल्टेंट मेडिसिन। आज हम बात करेंगे गुर्दे से संबंधित बीमारी और उसके बचाव के बारे में। गुर्दे से संबंधित बीमारी कई प्रकार की होती हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं उसको। एक्यूट किडनी इंजरी किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन या डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती है। मेनली क्रॉनिक किडनी डिजीज जो होती है वो गुर्दे से संबंधित किसी भी स्ट्रक्चरल या फंक्शनल डिफॉर्मिटी जो कि 3 महीने या उससे ज्यादा परसिस्ट करती है तो हम इसे क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। इसके कई कारण होते हैं, एक तो जो कि गुर्दे से संबंधित कारण है किडनी की साइज छोटी हो जाए, या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं क्रॉनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और सबसे मुख्य जो कारण देखा जा रहा है कि हमारे समाज में सोसाइटी में डायबिटीज जो एक पैंडेमिक के रूप में हो गई है और इसका मरीज ध्यान नहीं रखता है डायबिटीज का, उचित दवाएं समय पे जांचें और प्रॉपर परहेज प्रिकॉशन नहीं लेता है डायबिटीज कंट्रोल को लेकर के वो नेग्लिजेंस करता है जिसके कारण गुर्दे की समस्या शुरू हो जाती है। गुर्दे ठीक होते हैं लेकिन डायबिटीज मर्ज की वजह से गुर्दे के काम में खराबी आ जाती है। तो ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहे, उसका इलाज प्रॉपर न हो, प्रॉपर कंट्रोल ब्लड प्रेशर का न हो तो भी गुर्दे में समस्या आ जाती है। तो ये 2 कारण ऐसे हैं जिससे अगर हम प्रॉपर मेंटेन रखें तो हम गुर्दे की बीमारी से बचा सकते हैं अपने आप को। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये 2 गुर्दे के दुश्मन होते हैं, तो ऐसे में हमें समय पे प्रॉपर स्क्रीनिंग होते रहना चाहिए और जैसे ही शुगर बढ़ के HbA1c बढ़ के मिले 6.4 से ज्यादा तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने किसी भी कंसल्टेंट को दिखा करके उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कराना चाहिए। तो ये रही बात मुख्यतः कारण की। अब इसका बचाव किया जा सकता है, हम रेगुलर इंटरवल्स पे पानी पीते रहें, डिहाइड्रेशन को अवॉइड करें, हम डाइट में प्रोटीन इंटेक अपना रखें, जंक फूड्स अनहेल्दी फूड्स इसको अवॉइड करें, और किसी भी प्रकार का जैसे कि किडनी स्टोन है, किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है किडनी यूरिनरी

0: कॉन्ट्रैक्ट में उसका समाधान हम कर लें तो भी हमको गुर्दे खराब होने से हम उसको बचा सकते हैं। कोई भी ऐसा मरीज जिसको कि कुछ लक्षण हम बताना चाहेंगे, जिसको कि पैरों में सूजन आ जाए, पेशाब से साबुन की फेनर जैसे झाग बनने लगे ज्यादा, अर्ली मॉर्निंग फेशियल पफिनेस कहते हैं, सुबह उठने के बाद आंखों के चारों तरफ सूजन रहती है जो कि दोपहर तक कुछ कम हो जाती है, और पेशाब से संबंधित कुछ लक्षण है जैसे कि पेशाब का फ्लो प्रॉपर ना होना, पेशाब कम होना, सांस फूलना, चलने में सांस फूलना, सीधे लेटने में सांस फूलना, खाना खाते समय जी मालिश करना या उल्टी जैसा महसूस होना, भूख कम लगना, ये सारी समस्याएं अगर हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से मिल करके किडनी से संबंधित कुछ जांचें करा के, जैसे कि यूरिया, क्रिएटिनिन, सोडियम, पोटेशियम, और अगर डायबिटीज का मर्ज भी है मरीज को तो HbA1c और यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो UACR जो कि 30 मिलीग्राम पर ग्राम से कम होना चाहिए नॉर्मली, और 30 से 300 मिलीग्राम पर ग्राम तक माइक्रो एल्बुमिनूरिया कहते हैं, और 300 मिलीग्राम पर ग्राम से ज्यादा अगर है तो ये माइक्रो एल्बुमिनूरिया कहा जाता है। ये अगर है तो अलर्ट हो जाना चाहिए। क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ है तो भी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि ये शुरुआती हो सकता है कि गुर्दे की खराबी की शुरुआत हो। ये कुछ लक्षण है जो अगर मरीज में है, इंसान में है, तो किडनी से संबंधित समस्या को लेकर के अलर्ट हो जाना चाहिए। इसके लिए खान पान में भी कुछ आपको, जैसा कि मैंने बताया कि अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है और किडनी साइज नॉर्मल है, तो किडनी की बीमारी से बचने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि खान पान में अपना हाइड्रेशन मेंटेन रखिए, पानी का इनटेक प्रॉपर रहे आपका। कोई भी दवा, खास करके दर्द की दवा जिसके हम NSAIDs कहते हैं, NSAIDs का ओवर जिलस यूज, अब्यूज ऑफ NSAID नहीं होना चाहिए। मादक पदार्थों का सेवन जैसे कि अल्कोहल वगैरह नहीं लेना चाहिए। ये सब करके हम गुर्दे को सेफ रख सकते हैं। और अगर इस तरह के कोई लक्षण आप में है, आपका डायबिटीज अनकंट्रोल है, ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल है, और जो लक्षण मैंने बताए इनमें से कुछ भी लक्षण अगर आपके शरीर में आपको दिख रहे हैं, तो एक बार जरूर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में 30 नंबर कमरे में 8 से 2 मेरी OPD होती, वहां जरूर आकर के एक बार अपने आप को दिखाएं और उचित परामर्श देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। एक चीज और ध्यान में रखें कि अपने गुर्दे को बचाने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि NSAID अब्यूज जो कि दर्द की दवाओं का, अपने मन से ओवर द काउंटर लेकर के एक्स्ट्रा इस्तेमाल ना करें। दर्द की वजह क्या है उसका इलाज करें, न कि दर्द की दवा से दर्द का इलाज करें। इसी तरह से कुछ भ्रांतियां लोगों में है कि शुगर अगर हो गया है तो वो अपने डॉक्टर को बिना दिखाए कुछ जड़ी बूटी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ इस तरह की लोकल प्रिपेयर्ड मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं जिसपे कोई खास स्टडी नहीं हुई रहती है, और फायदे का तो पता नहीं लेकिन नुकसान वो जरूर करेगा। चूंकि गुर्दा क्या होता है कि एक प्रकार की शरीर की एक छन्नी होती है, जो भी वेस्ट मटेरियल्स, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं शरीर में वो किडनी के ही द्वारा फिल्टर आउट होकर के यूरिन के रास्ते बाहर निकलते हैं। कोई भी अगर हम हैवी मेटल यूज कर रहे हैं या कोई भी ऐसा हैवी मॉलिक्यूलर वेट का पार्टिकल कुछ खा रहे हैं जो कि किडनी से फिल्टर होने में किडनी को इंजरी कर रहा है, तो वो गुर्दे के लिए नुकसानदायक होगा। तो इसलिए कोई भी इलाज या कोई भी दवा बिना अपने डॉक्टर के उचित परामर्श के न इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपका सीधे आपके गुर्दे पे प्रभाव करेगा और गुर्दे आपके खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो टेक अवे मैसेज सिर्फ यही मेरी तरफ से आप सभी लोगों को रहेगा कि अपने गुर्दे को बचाना है तो प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, हेल्दी डाइट रखनी है, डाइट में प्रोटीन की मात्रा एडिक्वेट हो जो कि एक हेल्दी एडल्ट के लिए 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे का है, और पानी खूब पीते रहें, अननेसेसरी की दवाओं के इस्तेमाल से बचें। अगर शुगर के मरीज हैं तो शुगर का कंट्रोल प्रॉपर रखें, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाते रहें, नियमित जांचें कराते रहें, और डायबिटीज जिसको है उसको हर 6 महीने साल भर पे UACR की जांच और क्रिएटिनिन की जांच नियम से कराते रहना चाहिए, ताकि अगर कुछ बढ़ रहा है तो समय रहते हम उसको अलर्ट हो जाएं और उसे कंट्रोल करने में सक्षम हों।
1: किडनी स्वास्थ्य के प्रति रहें सचेत, इस विषय पर भी आप सुन रहे थे डॉक्टर अभिषेक कुमार मिश्रा की ये वार्ता, और इसी के साथ आज का स्वास्थ्य वार्ता स्वास्थ्य मैगजीन कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण, और अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। FM 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है बुंदेली लोक संगीत का कार्यक्रम खुशबू माटी की। पहले सुनते हैं कुछ संदेश।

0: लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: भैया कछु अनमने दिखा रहे, का बात है
2: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
1: है अपन को भैया पता नहीं, आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
2: हेलो किसान फोन इन जोका है भैया?
1: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उनको समाधान करवे के लाने बैठक है विशेषज्ञ भैया।
2: कैसे पाए समस्या को समाधान?
1: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
2: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
1: फोन नंबर है 0510-232-0068।
2: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अपना हुए हमारे किसान भैया परेशान।
3: अरे भाई रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
7: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
6: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: अभी आपने निरंजन कुमार शर्मा के स्वर में ई लोक भजन सुना।
1: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
2: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
3: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

0: स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
3: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
4: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
5: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
3: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
4: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

ब्रजलाल पाल और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना ये लोक भजन। इसके साथ ही बुंदेली लोक संगीत का कार्यक्रम खुशबू माटी की समाप्त हुआ। एफएम 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। 8 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

आज के हवा महल में हम आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार वाल्टर की लिखी झलकी नीम हकीम। निर्देशक हैं गोपाल सक्सेना। तो आइए सुने झलकी नीम हकीम।

0: दर्द तो मेरी जान लेकर ही रहेगा।
1: ये दर्द ना हुआ आफत हो गई। मैं पूछती हूँ जी, ये हाय हाय करके सारा घर को सिर पर उठा रखा है। कसम से कहती हूँ, इस दांत को निकलवा क्यों नहीं देते?
0: क्या मतलब?
1: लो अब इन्हें मतलब समझाओ। देखो जी, तुम्हारी जगह अगर मेरे दांत में दर्द होता तो कब का निकाल देती?
0: ठीक कहती हो भगवान, मैं भी यही कहता हूँ।
1: क्या कहती हो?
0: यही कि मेरी जगह अगर तुम्हारे दांत में दर्द होता तो मैं भी कब का निकलवा देता।
1: तो मेरा दांत तो तुम निकलवाने को तैयार हो और

0: क्यों दर्द कर रहा है, क्यों नहीं निकलवा देते? हाय हाय करके मेरे सर में दर्द कर दिया।
1: भाई मेरी तो हिम्मत होती नहीं। हे भगवान, उसे देखा था सुगत को, जब उसने अपना दांत निकलवाया था उसका मुंह कैसा सूज गया था।
0: अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुमने ये जो हाय दर्द कहकर और चिल्ला चिल्ला कर मेरी बेइज्जती करवा रखी है, उसका क्या करूं?
1: क्या मतलब? यानी कि मेरी हाय हाय करने से तुम्हारी बेइज्जती हो रही है देवी जी?
0: ओहो, पड़ोस ने जाने क्या सोचती होंगी कि पता नहीं मैं तुम्हें क्या क्या सुन रही हूँ जो तुम चिल्ला रहे हो।
1: ठीक है, लेकिन मैं हाय मेरा दांत।
0: सुनो जी, मैं जब छोटी थी तो मेरा भी एक बार दांत दर्द हुआ था। अच्छा? उस वक्त मेरी नानी जी ने मेरे दांत के नीचे देसी घी का गर्म रुई का फोया रखा था।
1: फोया?
0: हाँ जी, रुई को गर्म देसी घी में भिगोकर दांत के नीचे रखा। कसम से कहती हूँ मेरे दांत का दर्द एकदम ठीक हो गया था।
1: तो वही लाओ ना भगवान, मेरी तो दर्द से जान निकली जा रही है।
0: अरे वही तो लाई हूँ, लो ये कटोरी में गर्म घी और ये रुई का फोया, लो ये मुँह में रखो, खोलो मुँह, ये लो। अरे क्या हुआ भगवान, ये पता नहीं क्या मुसीबत आ गई। अरे क्या बात है, घी क्या ज्यादा गर्म था?
1: गर्म? ओहो, दांत के साथ सारा मुंह भी जल गया।
0: बाप रे, भगवान ने क्या
1: से कुछ भी नहीं खाया, खाली दूध पीकर गुजारा कर रहा था। अब तो दूध भी कैसे पिया जाएगा?
0: तो तुमसे किसने कहा था कि जल्दी से मुंह खोल दो? घी गर्म था तो थोड़ी देर ठहर जाते।
1: तुमने नहीं कहा था कि मुंह खोलो?
0: सुनो जी, एक बार और मेरे दांत में दर्द हुआ था।
1: अच्छा फिर?
0: कसम से कहती हूँ मेरी दादी जी घर पर आई हुई थी, बस उन्होंने फिटकरी जलाकर और गर्म पानी में घोलकर मुझे जो कुल्ले कराए और बस
1: फिर
0: मेरे दांत का दर्द फौरन गायब।
1: तो क्या फिर अब मुझे भी कुल्ले करवाओगी?
0: हाँ जी, मैंने फिटकरी जलाकर रखी है और पानी गर्म होने के लिए चढ़ा रखा है, अभी लाती हूँ। कौन? आती हूँ। कांता बहन आओ। बहन आओ।
2: क्या बात है शांति बहन, क्या भाई साहब की तबीयत कुछ खराब है?
0: हाँ बहन, क्या बताऊँ, इनके आज सुबह से दांत में बहुत दर्द है। कसम से कहती हूँ मेरे तो नाक में दम आ गया है।
2: क्या, दांत में दर्द? बहन मेरी मानो तो लौंग का तेल लगाओ। हमारे उनके भी एक बार दांत में दर्द हुआ था।
0: हाँ।
2: मैंने लौंग का तेल लगाया, फौरन ठीक हो गया।
0: अच्छा, लौंग का तेल मगर यहाँ मिलेगा कहाँ?
2: मैं देखती हूँ, घर में शायद बचा हुआ पड़ा हो।
0: बड़ी मेहरबानी होगी बहन।
2: मेहरबानी की क्या बात है बहन, आए आखिर पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। मैं अभी लाती हूँ।
0: ठीक है। मैंने कहा जी, लो ये गर्म पानी में फिटकरी घुली रखी है, लो कुल्ले कर लो।
1: पानी? पानी गर्म तो नहीं है?
0: देख लो ना।
1: हाँ ठीक है, मेरा तो मुंह न जाने कैसा कैसा हो गया।
0: अच्छा, मुंह तो जैसा होगा वैसा ही रहेगा, मैं कहती हूँ कुल्ले करो।
1: अच्छा ठीक है।
2: लो शांति बहन, बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी मिली है, मैं रुई पर ही लगा लाई हूँ। अब ये रुई तुम मुंह में रख दो, ठीक हो जाएंगे। मैं जाती हूँ, सारा काम पड़ा है, जाके बर्तन भी धोने हैं, कपड़े भी साफ करने हैं।
0: सुनो जी, ए जरा ये रुई मुंह में रख लो, ये मुंह खोलो।
1: मगर ये फिटकरी का पानी?
0: ये बाद में कर लेना, तुम मुंह तो खोलो।
1: लो। ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो?
0: अजी अब क्या है?
1: भगवान जान, तुम भाई जाओ, तुमने रुई ताजा रखी है।
0: ओहो, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
1: बताता कैसे देवी जी, तुमने रुई से तो सारा मुंह बंद कर दिया था। खैर मैं खुद ही रख लेता हूँ। ऐसे मर गया, मर गया।
0: ओ, अब क्या हो गया?
1: मेरी तो जान ही निकल गई। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तेजाब।
0: ओहो, मेरी मानो तो डॉक्टर के पास चलो।
1: डॉक्टर के पास?
0: इस मुंह में दांत को निकलवाना ही होगा।
1: मगर
0: अगर मगर कुछ नहीं जी, चलो डॉक्टर के पास
1: चलो। आए मैं मरा, आए मर गया रे।
0: नमस्ते डॉक्टर साहब।
3: नमस्ते। हाँ, तो कौन से दांत में तकलीफ है?
0: देखिए डॉक्टर साहब, ना मैं सुई लगवाऊंगी और ना सुन करवाऊंगी, बस हम बहुत जल्दी में हैं, जल्दी से आप दांत निकाल दीजिए।
3: कमाल है, आप तो बहुत बहादुर और हिम्मत ही लगती हैं। कौन सा दांत है?
0: चलो जी आगे बढ़कर अपना दांत दिखा दो।
3: क्या आप? ये आइए, आप इस कुर्सी पर बैठ जाइए।
1: मगर डॉक्टर साहब, दांत निकलवाने में ज्यादा दर्द तो नहीं होगा?
3: बिल्कुल नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा। नर्स?
4: यस डॉक्टर।
3: जरा मेरे औजार तो देना।
4: ओके डॉक्टर। ली डॉक्टर।
1: क्या डॉक्टर साहब, आप इससे मेरा दांत निकालोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों?
1: मर जाऊंगा डॉक्टर साहब, मर जाऊंगा मैं, मर जाऊंगा।
3: लगता है आप बहुत डर रहे हैं।
1: देखो देवी जी, मेरा तो सर घूम रहा है।

0: कोई बात नहीं।
1: बड़े बड़े औसाद देखने में डरावने लग रहे हैं।
0: कोई बात
1: नहीं, ये डॉक्टर इससे ही मेरा दांत निकालेगा।
0: अजी मैं कहती हूँ तकलीफ भी तो दूर हो जाएगी। आज सुबह से ही तुमने सारा घर सरगर उठा रखा है।
2: तो आप तैयार हैं दांत निकलवाने के लिए?
1: क्या मतलब, मैं देखता हूँ कौन मेरे दांत को हाथ लगाता है।
2: ये क्या कहते हो?
0: अजी मैं कहती हूँ दांत नहीं निकलवाना। क्या?
1: नहीं बिल्कुल नहीं।
2: ये बैठे बिठाए क्या हुआ? ए हजरत दांत निकलवा लो।
1: बस खबरदार जो दांत का नाम भी लिया तो।
0: अजी तुम्हें क्या हो गया है? दर्द तो दूर हो जाएगा, अब दांत निकलवाओ।
1: हर किस नहीं, मेरे दांत के पास आने की जरूरत भी की तो। चलो घर, फौरन घर चलो, मेरा दांत अपने आप ठीक हो जाएगा।
0: लेकिन दांत?
1: हम घर जाकर अपना घरेलू इलाज करेंगे मगर दांत नहीं निकलवाएंगे।
0: अच्छा चलो।
3: भाई भाई मेरे दांत तो सुनो, मेरी फीस सुनिए।
0: अजी मैं कहती हूँ उठना है कि नहीं? फाइल लो, ये तो मजे में सोने लगे। अरे उठो ना।
4: क्या?
0: एक कसम से कहती हूँ जब से डॉक्टर के पास से आए हो सो ही रहे हो। लो चाय पी लो।
1: मगर पीऊँ कैसे, मेरी तो दांत के तरफ से जान निकलने लगी है।
0: ओहो अभी तो चैन से सो रहे थे, डॉक्टर के पास गए भी और दांत क्यों नहीं निकलवाया? अब मैं क्या करूँ?
1: ऐसा करो ये चाय तुम पी लो, मेरे तो दर्द।
0: हे भगवान, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, अब चाय भी नहीं पी रहे, मैं क्या करूँ?
5: क्यों बहन शांति, अब कैसा है तुम्हारे इनके दांत का दर्द?
0: क्या बताऊं बहन, इनका तो खाना पीना भी बंद है।
5: अरे ये दर्द भी तो जानलेवा होता है, तुम ऐसा करो।
0: हाँ।
5: इनके जिस दांत में दर्द है ना,
0: हाँ,
5: उसके नीचे ये पत्ते दबवा दो। अच्छा। फौरन ठीक हो जाएगा।
0: अच्छा कैसे पत्ते हैं?
5: एक बार मेरे दांत में भी दर्द हुआ था, तब मेरी माँ ये पत्ते लाई थी।
0: हाँ।
5: मेरा दर्द एकदम ठीक हो गया था। तो फिर आऊंगी पता करने, सारा घर का काम पड़ा है, कपड़े धोने हैं, झाड़ू लगानी है।
0: लो जी ये पत्ते मुंह में रख के देख लो,
1: बड़ा अच्छी टेस्ट है इनका तो।
0: अभी ठीक हो जाएगा, घबराओ मत।
6: कमाल है, मुझे तो कांता ने बताया कि तुम्हारे इनके दांत में दर्द है।
5: अरे हाँ,
6: आ आ आ की आवाज तो आ रही थी, मैंने समझा शायद भाई साहब रोजाना की तरह रियाज कर रहे होंगे।
0: नहीं बहन, ये गर्म पानी के कुल्ले कर रहे थे।
6: अरे हाँ, शक तो मुझे भी हुआ था कि आज रियाज कुछ लंबा हो गया।
0: हाँ बहन, इनको बहुत तकलीफ है।
6: अरे हाँ, दांत में कुछ लगाया है?
0: अरे सभी कुछ तो लगाया, जिसने जैसा कहा वैसा ही किया।
6: कमाल है, तुम ऐसा करो ये लहसुन लो, मैं छील कर लाई हूँ, तुम फौरन जिस जगह दांत में दर्द है उसके नीचे दबा दो।
0: लेकिन मगर...
6: अरे लेकिन वेकन को छोड़ दी। कमाल है, मीतू बहन भी आ गई। अरे आना आ मीतू।
7: आज मैंने भी सुना था कि इनके पति के दांत में दर्द है, मैंने कहा पड़ोसन के नाते।
6: बहन ये तो हमारा फर्ज है।
7: मेरी बात सुनो बहन।
0: हाँ।
7: वो लहसुन मुँह से निकलवा कर ये मैं जो दवा रुई में लाई हूँ ना, ये रख दो, फिर देखना।
0: लेकिन
7: लेकिन वेकन कुछ नहीं बहन, एक बार मेरी माँ के दांत में दर्द हुआ था तब डॉक्टर ने ये दवा दी थी, बस एक बार लगाई, आज पूरे 5 साल हो गए हैं, मजाल है उनके दांत में फिर दर्द हुआ हो।
6: लेकिन लहसुन तो कोई बुरी चीज नहीं है।
7: अरे तो इस दवाई को भी आजमाने में क्या हर्ज है?
6: अरे कमाल है, देख लेना बहन कहीं 19-20 ना हो जाए। हाँ।
7: मुझे तुम लोगों से कोई दुश्मनी है क्या? फिर डॉक्टर की दी हुई दवा है, ऐसी वैसी तो होगी नहीं।
0: लड़ने की क्या जरूरत है, ला मैं ये भी उनके मुंह में अभी रखे देती हूँ।
6: अरे कमाल है, अच्छा मैं तो चलती हूँ।
7: मैं भी चलती हूँ।
0: ये तो हमारी किस्मत है कि इतना अच्छा पड़ोस मिला है।
7: अरे मेहरबानी कैसी बहन, दुख सुख में पड़ोस को ही तो काम आना चाहिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ।
6: अरे आप जाती तू अब?
7: हाँ बहन रमा चलो।
4: हाय राम रे, ओ होय राम रे,
8: राम जी।
4: कौन है भैया?
8: दुखी राम मां।
4: आओ भाई हिदायती राम आओ।
8: सुनाओ खुशी राम मां, की हाल है? ओ यार एक ही मुंह लटका के बैठा है।
4: अरे मेरे दांत में दर्द हो रहा भैया।
8: ओए की होया तेनु दर्द?
4: हाँ दांत में दर्द है।
8: ओए कुछ दसेंगा भैया, हाय हाय हाय लगा रहे हैं।
0: ये कैसे बताएं भाई साहब, इनके दांत में बेहद दर्द है, सब इलाज करके देख लिया कुछ बनता ही नहीं।
8: बस कमाल है भाई जी। जरा जी बात पीछे इतना हंगामा खड़ा कर लिया।
0: जरा सी बात। अरे भाई साहब सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया, जिसने जैसी दवा बताई वैसा ही किया, मगर क्या करूं?
8: फायदा नहीं होया।
0: हाँ।
8: हो ही कितना सकता है प्रजा जी, कुछ नुस्खे होंगे ना नुस्खे जो सिर्फ किसी किसी ने मालूम होंगे ने। ओए ठहर जा ठहर जा। ओए ओए गल सुन, ओए दुखी रामा ठहर जा, उन्हीं दिन आले रगड़ दिना ले ले ले ले। तेरी किस्मत चंगी है, असि इत्थे आ गए हैं।

0: माकू।
1: हाँ
2: मगर इससे क्या होगा?
1: ओए पूछ के ये देना होएगा कि नहीं।
2: अरे
1: तू भी यार अजीब आदमी है। ओ देखो देख दांत च दर्द उदो होता है तो दांत च कीड़ा लगा होवे।
2: कीड़ा?
1: हाँ कीड़ा। कीड़ा भी उदो लगता है जब मिठा खाता होवे। ओ तू जरूर मिठा खाता होना है।
2: हाँ यार कल मैंने लड्डू खाया था।
0: मगर तुमने लड्डू कब खाया जी?
2: अरे भगवान दफ्तर में कांता ने अपनी शादी की खुशी में बांटे थे।
1: तम्बाकू दांदे थल्ले रख ले ते कीड़ा मर जाएगा दर्द खत्म हो जाएगा।
2: मगर
1: छाटो और मुंह दे अंदर ना जान दे थी। शाबाश
0: दर्द ठीक हो जाएगा जी।
2: मुझे
1: जी
2: मुझे
1: 5 मिनट लगेंगे।
2: चक्कर आ रहा है।
1: चक्कर आएगा ओए दंद दे कीड़े नु भी चक्कर आएगा। ओ नट्टन ले बाहर आएगा। ओए ओए ओए ओए ओ गाजन ओ दुखी रामा ओ इसके मैं ला रहे हैं। ओ ओ हो ओए ओए की होया तनु
2: गाद बाहर गिर गया।
0: दिखाओ तो अपना मुंह। तो
1: दंद बाहर निकल गए।
2: दर्द था वो भी और उसके पास वाले दो दांत भी बाहर।
0: दिखाओ तो सही क्या हुआ?
1: ओए दांत निकल गए सारे।
2: उसके साथ दांत बाहर गिर गए।
1: कितने दांत?
2: दो।
1: दो निकल गए?
2: हाँ जी।
1: गया ना?
2: ओए दो।
3: दिखाओ तो हाथ हो गई। दांत निकला और दर्द निकला। ओए हाथ चिल्ला रहा था रात से। अब चलो

हवा महल में अभी आप सुन रहे थे राजकुमार वाल्टर की लिखी झलकी नीम हकीम। निर्देशक थे गोपाल सक्सेना। आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में सरती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन के साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। एफएम 103 पर आकाशवाणी का यह झांसी केंद्र है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे एक कलाकार के अंतर्गत श्रेया घोषाल के गाए कुछ गीत।

श्रेया घोषाल की आवाज में अभी आपने फिल्म कबीर सिंह का ये गीत सुना। इरशाद कामिल ने गीत लिखा था, संगीत दिया था अमाल मलिक ने। और आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म राज 3 का ये गीत।

0: अभी आपने श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म सांवरिया का ये गीत सुना और आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: अभी आपने सुना ये संदेश. श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं गायिका श्रेया घोषाल के गाए गीत.

अभी आपने श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म एक्शन रिप्ले का ये गीत सुना। इरशाद कामिल ने गीत लिखा था, संगीत दिया था प्रीतम ने। और कार्यक्रम के अंत में सुनिए श्रेया घोषाल की आवाज में फिल्म देवदास का ये गीत। शब्द रचना नुसरत बद्री की है और संगीत इस्माइल दरबार का।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आज आपने श्रेया घोषाल के गाए गीत सुने। देवदास के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम समाप्त हुआ। एफएम 103 पर आकाशवाणी का यह झांसी केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने के हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार संध्या और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और

0: नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
0: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, एआई चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता, भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
3: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत एआई पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
1: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: एस स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफ लाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें

0: शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
1: एलएनजी कैरियर दिशा
2: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्दे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership, ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H, clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
4: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजी, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
3: In the first visit

0: राजा जानी फिल्म का गीत था लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: जे हम तुम चोरी से बंधे।

0: एन दत्ता की तर्ज थी सहल उद्यानवी का लिखा ये गीत। आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म धर्मपुत्र से। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया था धरती कहे पुकार के। इस फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

0: बख्शी का लिखा ये गीत आपने सुना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। चरस फिल्म का ये नगमा था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाये इस गीत के साथ ही आपके लिए ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम FM 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। लीजिए सुनिए फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर व प्रस्तुति सहयोग किरण लता का है। प्रस्तुत करता है अंजलि कुमारी।
2: हेलो झांसी।

0: सूरज की तपिश हो या बादलों की छांव, हर मौसम में बना रहे अपनों का लगाव। आपकी आवाज, आपके जज्बात और आपके अरमान, इसी का नाम है हेलो झांसी, जो है हमारी और आपकी पहचान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आकाशवाणी के सभी सम्मानित श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूं मैं किरण लता। श्रोताओं, आज 14 जून है। आज का ये दिन बेहद खास है। आज है विश्व रक्तदाता दिवस। आज का ये दिन हमें मानव सेवा और समर्पण का संदेश देता है। इसी के साथ ही मानसून भी तपती दोपहरियों के बीच दस्तक दे रहा है, तो आइए कुछ पल निकालिए अपनी व्यस्त जिंदगी से अपनों के लिए। कहिए अपने दिल की बात, साझा कीजिए अपने विचार और जुड़ जाइए आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम हेलो झांसी में। हमें कॉल करने के लिए हमारा कॉलिंग नंबर है 0510232068। रिकॉर्डिंग का समय है प्रत्येक रविवार और बुधवार को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच का। तो देर किस बात की, जल्दी से उठाइए फोन और घुमा डालिए हेलो झांसी में, हम कर रहे हैं आपका इंतजार। तो चलिए श्रोताओं, अब हम लेते हैं हमारे आज के पहले कॉलर का कॉल और देखते हैं ये क्या दिल की बात हमसे कहना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, हेलो झांसी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैडम नमस्ते, मैं बनमाली सिंह परियार बोल रहा हूँ ग्वालियर से।
0: नमस्ते बनमाली जी।
1: जी नमस्ते, मैं आप

0: का झांसी रेडियो का नियमित श्रोता हूँ
1: जी जी,
0: और समय समय पर गाने फरमाइश सुनते रहता हूँ। और मैं ब्लाइंड हूँ, मैंने नौकरी की है सेंट्रल जीएसटी में।
1: जी जी जी।
0: और संगीत, संगीत से मुझे बहुत प्रेम है। संगीत में मैंने बी म्यूज भी किया है गायन में।
1: बहुत बहुत बढ़िया बात है ये तो। और बताइए कि आज आपका क्या सुनने का मन है कार्यक्रम में?
0: ये है एक मेरे महबूब फिल्म का गाना है जो लता जी का है, तेरे प्यार में दिलदार जो है मेरा हानेदार, कोई देखे या ना देखे अल्लाह देख रहा है।
1: बेहतरीन फरमाइश है आपकी। चलिए हम आपको आपकी फरमाइश पे सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना। सुनिए और आनंद लीजिए इस गीत का। धन्यवाद।

0: हेलो झांसी।
1: हेलो झांसी,
0: कौन बोल रहे हैं आप?
1: मंगल सिंह कुशवाहा, झांसी तहसील से।
0: मंगल सिंह कुशवाहा,
1: झांसी से बोल रहा हूँ।
0: जी जी जी जी, बताइए मंगल सिंह जी, क्या कर रहे हैं इस समय आप?
1: बढ़िया, स्वास्थ्य बढ़िया है। मैरिज ब्यूरो चल रही है अपना सर
0: जी?
1: मैरिज ब्यूरो चल रहा है अपना।
0: अच्छा, मैरिज ब्यूरो चलाते हैं आप? बढ़िया है, दिलों से दिलों को जोड़ने का काम करते हैं।
1: बढ़िया पुण्य का काम करते हैं।
0: बढ़िया पुण्य का काम करते हैं, जोड़े बनाते हैं। कहते हैं जोड़ा ईश्वर बनाकर भेजता है, लेकिन उस जोड़े को एक दूसरे से मिलाने का काम आप करते हैं। जी, अब बताइए अपनी पसंद का गीत बताइए, कौन सा गीत
1: पसंद का गाना? जॉनी मेरा नाम का जो गाना सुनना हमको, बाबुल प्यारे
0: जी,
1: पायल की चमचम तुझे पुकारी ये मन
0: जी। बहुत अच्छा गाना है ये, से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। नमस्कार।

0: हेलो झांसी।
1: हेलो झांसी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं आप और कौन बोल रहे हैं?
1: पारदी नेहरू नगर मोड़ झांसी से अवधेश कुमार बोल रहे हैं।
0: अच्छा, मोड़ से बोल रहे हैं अवधेश जी।
1: जी
0: अवधेश जी, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आपकी पहले भी बात हो चुकी है।
1: जी, 3 महीने पहले बात हुई थी।
0: जी जी जी, बताइए आज कौन सा गाना सुनने के फरमाइश लेकर आए हैं आप?
1: आज गाना सुनेंगे धरती पे माँ बाप भगवान।
0: ये तो सच है कि भगवान है।
1: भगवान, हाँ ये तो सच है कि भगवान है, धरती पर माँ बाप का।
0: चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो झांसी।
1: नमस्कार, मैं हूँ।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे
1: हैं
0: आप?
1: मैं विकास बोल रहा हूँ, प्रयागराज से। कैसी हैं मैम आप?
0: बहुत बढ़िया हैं हम विकास जी। और बताइए, प्रयागराज में कैसी गर्मी पड़ रही है?
1: बहुत गर्मी है मैम, अभी दो दिन पहले यहाँ बारिश भी हुई थी।
0: अच्छा अच्छा, ये बताइए विकास जी, आज का दिन कुछ खास है, हमारे श्रोताओं को बताएंगे आज क्या है?
1: आज मैडम जी रक्तदान दिवस जो ये हमारे देश में हो रहा है ना
0: जी,
1: और इस पर हम एक दूसरे को देकर किसी की हेल्प कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, कहा जाता है रक्तदान महादान, तो अगर हमारी रक्त की चंद बूंदों से किसी को नया जीवन मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत ही पुण्य का कार्य है। आप करते हैं रक्तदान?
1: बिल्कुल मैम, हमने तो दो तीन बार कर दिया है।
0: अच्छा अच्छा, और बताइए आज क्या खास फरमाइश लेकर आए हैं आप हमारे श्रोताओं को सुनाने के लिए?
1: मैम जी, एक गाना है, फिल्म का नाम है तमन्ना।
0: तमन्ना।
1: और इसमें एक गाना है, ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं।
0: हाँ जी,
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: हमें भी आपसे बात करके बेहद खुशी हुई। चलिए आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर तमन्ना फिल्म का ये गीत।
1: धन्यवाद मैम।
0: धन्यवाद।

0: हेलो झांसी।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
1: जी मैडम, संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: संतोष जी, मेरी और आपकी पहले भी बात हो चुकी है।
1: जी मैम।
0: जी बताइए संतोष जी, कैसे हैं आप?
1: मैम बहुत अच्छे हैं। समय प्री मानसून की बारिश मध्य प्रदेश में हो रही है और घर के कामों में व्यस्त थी, खास करके जो हमारे जो खेत होते हैं उनकी सफाई कर रहे थे और बस उसी काम में लगे हुए थे मैडम।
0: जी जी, तो देखिए आपको आकाशवाणी से इतना स्नेह है कि इतनी व्यस्त दिनचर्या में भी आपने कॉल करने का समय निकाल लिया, ये जानकर हमें बेहद खुशी हुई। और बताइए संतोष जी, आज क्या खास फरमाइश लेकर आए हैं आप?
1: जी मैम, सबसे पहले तो आपको और सुनने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा क्योंकि 90 वर्ष पूरा कर चुका है प्रसार भारती आकाशवाणी।
0: जी
1: आप... और 90 वर्षों का सफर इतना लंबा रहा है और इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम शो की गिनती हम नहीं कर सकते। रामचरितमानस से गान हो गया, समाचार प्रभात, लगातार हमें निरंतर मिलते रहते हैं सूचनाओं से भरी।
0: जी 90 वर्ष की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी श्रोताओं का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा तो आगे के 90 वर्ष भी आकाशवाणी बेहद खूबसूरती के साथ पूरा करेगा। आपने हमारा 90 वर्ष का विशेष कार्यक्रम सुना था हेलो झांसी पिछले सप्ताह?
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल मैम, लगातार जो आपके खास करके आप जैसे उद्घोषकों की जो प्रस्तुति थी बहुत ही बेहतरीन थी और जिस तरीके से कार्यक्रमों का प्रचार आपने बताया और जिस प्रकार से कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण था बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक था।
0: इतनी सारी प्रशंसा के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे सभी साथी बहुत मेहनत करते हैं आप तक ये प्रोग्राम लाने के लिए और आप जब दिल से हमारी तारीफ करते हैं तो यकीन मानिए हम सभी को बेहद खुशी होती है। आप बता दीजिए अपनी पसंद का फरमाइशी गीत।
1: जी मैम, मूवी का नाम है साजन।
0: साजन जी, कौन सा गाना?
1: गाना है देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: जी मूवी देखी है आपने?
1: बिल्कुल मैम, ये बहुत ही प्यारी मूवी थी और इस फिल्म के सारे जो गीत थे बहुत ही अच्छे रहे उस जमाने में।
0: जी जी, ये आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर साजन फिल्म से ये नगमा। एंजॉय की

0: हेलो झांसी।
1: हेलो झांसी।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: मैं राजा बोल रहा हूँ रामपुर से।
0: जी राजा जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रामपुर।
0: रामपुर, रामपुर कहाँ?
1: रामपुर यूपी, उत्तर प्रदेश।
0: अच्छा, उत्तर प्रदेश, ओके। और बताइए, आपका कॉल पहली बार लगा है या इससे पहले भी आप आकाशवाणी में हेलो झांसी कार्यक्रम सुन चुके हैं?
1: मैंने मोबाइल ऐप से सुना है, वैसे कॉल तो मेरी पहली बार लगी है। इससे पहले मैं विविध भारती में कॉल लगाता हूँ, वहाँ मेरी कॉल लगी है, वहाँ से बात हुई है। आपके प्रोग्राम में पहली बार कॉल लगी।
0: जी, मैं आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कुछ बताइए अपने बारे में।
1: बस मैम कुछ नहीं, अपना ऐसी हल्का फुल्का कारोबार है।
0: किस चीज का?
1: ये मोटरसाइकिल के पार्ट्स मिलते हैं हमारे पास।
0: अच्छा अच्छा, मोटरसाइकिल के पार्ट्स आप बेचते हैं?
1: जी मैम।
0: ओके, और बताइए। जी
1: गीत सुनना चाहूँगा।
0: हाँ जी बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: राजा हिंदुस्तानी मूवी का।
0: राजा हिंदुस्तानी मूवी से कौन सा गाना?
1: वो क्या रात आई है मोहब्बत रंग लाई है, तेरे इश्क में नाचेंगे, वो पार्टी में जो गीत होता।
0: जी जी जी, सुनवा रहे हैं आपको आपकी पसंद का राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये नगमा। सुनिए और एंजॉय कीजिए अपनी पसंद के इस गीत को।

0: हेलो झांसी।
1: हेलो
0: हेलो झांसी, में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हेलो झांसी, नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते
1: जी, हम विनय कुमार मंडीदीप रायसेन एमपी से बोल रहे हैं मैडम।
0: विनय कुमार जी, विनय कुमार जी, और बताइए क्या करते हैं विनय कुमार जी?
1: जी मैडम, ये हर्षी कंपनी में काम भी करते हैं और ओला रैपिडो गाड़ी भी चला लेते हैं।
0: बहुत बढ़िया, आप अपने समय का भरपूर सदुपयोग करते हैं।
1: जी हाँ मैडम।
0: है ना, मतलब आपने अपने आप को काम के प्रति समर्पित करके रखा है। एक काम से फुर्सत मिलती है तो आप दूसरे काम में लग जाते हैं, ऐसा ही है ना?
1: जी
0: जी। और बताइए क्या चल रहा है?
1: बस मैडम बढ़िया है, यही रेडियो सुनना पसंद भी आता है, टाइम निकाल के गाना भी सुन लेते हैं।
0: तो रेडियो में कौन कौन से कार्यक्रम खास पसंद आते हैं आपको?
1: जी ये फोनिंग वाला मेरे सबसे फेवरेट लगता है।
0: फोनिंग कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसमें आपको आपकी आवाज भी सुनने को मिलती है।
1: जी हाँ।
0: जी चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए आज कौन सा गीत आप सुनने की फरमाइश लेकर आए हैं?
1: मैडम एक मूवी आई थी 1987 में, उसमें बढ़कर करके है, उसमें एक गाना है आँख से छलका आंसू, यही गाना चाहिए मैडम।
0: आँख से छलका आंसू किस मूवी का है?
1: जी ये पिक्चर का नाम है बढ़कर, ऐसे करके है कुछ।
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा विनय जी, धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। सुनिए अपने पसंद का ये गीत।

0: हेलो झांसी, कौन बोल रहे हैं?
1: समोदिया से इलियास पाशा बात कर रहा हूँ।
0: इलियास पाशा
1: जी मैम,
0: बताइए कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, हमारे यहाँ समोदिया चौराहे पर चावलों की दुकान है, यहाँ चावल बेचते हैं, हर वैरायटी का चावल है मैम।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कौन सी वैरायटी का चावल सबसे अच्छा होता है, बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी बासमती 11-21 का चावल सबसे बढ़िया माना जाता है मैम।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया जानकारी आपने हमारे श्रोताओं को दी। ये भी बताइए कि कीमत वाइज कौन सा चावल बेस्ट और अच्छा होता है?
1: मैम ये 11-21 का ही कीमत इसकी अच्छी होती है और यही वैरायटी सबसे बढ़िया होती है, और वैरायटी तो काफी होती है, मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे आपने तो सारी वैरायटी बता दी।
0: अच्छा अच्छा, तो कितने रुपए किलो मिलता है ये?
1: ये मैम 120 रुपए किलो मिलता है।
0: अच्छा, पर ये तो जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसे वही अफोर्ड कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ जो जन सामान्य के लिए हो वो किस कीमत का होता है?
1: जी जी, वो 35 रुपए किलो होता है मैम।
0: अच्छा 35 रुपए किलो, वो कौन सा चावल है?
1: ये 26 का चावल होता, मोटा चावल में आता है।
0: अच्छा।
1: और एक बासमती होता है, वो आता है 60 रुपए की रेंज में।
0: अच्छा, तो बिक्री किसकी ज्यादा होती है?
1: मैम ये मीडियम वाला ज्यादा बिकता है, और ये जो होता है 120 वाला, तो ये तो मेहमान उमान आते
0: हैं।
1: हाँ,
0: तो वही मैं आपसे कह रही थी ना कि ये चावल थोड़ा सा महंगा है, इसलिए डेली रूटीन में व्यक्ति नहीं इस्तेमाल करता है, और खास तौर से जो सामान्य परिवार होते हैं वो इतना महंगा चावल डेली नहीं खाते हैं, है ना?
1: जी जी, वो बस 60 वाला और 35 वाला ज्यादा बिकता है।
0: जी जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके, और बहुत ही अच्छी आपने चावलों के बारे में जानकारी दी। आप खूबसूरत सी फरमाइश भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए, क्या है
1: आज मुझे आप अपनी पसंद का गीत सुनवा देना, क्योंकि आवाज इतनी प्यारी आपकी।

0: बात करने का अंदाज इतना प्यारा, तो आपकी पसंद भी बहुत प्यारी होगी। आज मैं बहुत आपकी पसंद का गीत सुनवा मैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपको हमारी आवाज पसंद आई। चलिए, आपकी पसंद का मान रखते हुए हम आपको सुनवाएंगे अपनी पसंद का गीत, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी फरमाइश जरूर पसंद आएगी। सुनिए और एंजॉय कीजिए अपने पसंद के इस गीत को। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो झांसी।
1: हाँ नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड जिला सातारा से सुखाराम यादव बोल रहा हूँ।
0: सुखाराम यादव
1: जी? जी
0: जी, बताइए सुखाराम यादव जी, आपका कॉल पहली बार लगा है कार्यक्रम में?
1: नहीं, दो महीने हो गए। तो
0: अच्छा, दो महीने हो गए। चलिए, आपने हमारी बात का सम्मान रखा, ये हमें जानकर बहुत अच्छा लगा कि दो महीने हो गए तो फिर आपने कॉल लगाया, क्योंकि हम अक्सर अपने बातचीत में कहते हैं कि जिन श्रोताओं के कॉल एक बार अटेंड हो गए हैं वो दो महीने के अंतराल पर ही कॉल करें, है ना
1: जी?
0: बहुत अच्छा हमें आपसे बात करके लगा। और बताइए क्या करते हैं आप?
1: मेरा वर्कशॉप है, वेल्डिंग का काम करते हैं।
0: जी जी, और बताइए आपके यहाँ मौसम कैसा चल रहा है?

0: है अब क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने लगी है?
1: नहीं, हमारे इधर बारिश नहीं, हमारे तापमान 38-39 है अभी तक।
0: अच्छा, आपके यहाँ अभी गर्मी बरकरार है? ठीक है, उम्मीद कायम रखिए, जल्दी ही बरखा रानी आपके यहाँ भी मेहरबान होंगी।
1: हेलो
0: जी, बताइए आज कौन सा गाना आपने श्रोताओं को सुनवाना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम है जमीर।
0: जमीर?
1: हाँ, अमिताभ बच्चन का।
0: जी जी, कौन सा गाना?
1: जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल।
0: बहुत खूबसूरत गीत है ये, मेरा भी फेवरेट गीत है। इस गाने को सुन के एक अजीब सी जिंदा दिली महसूस होती है। आप कितने भी कष्ट में हो, ये गाना आपको मोटिवेट करता है ना?
1: जी जी।
0: चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं आपकी पसंद का ये नगमा। धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए।
1: डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: जी जी।
1: सबसे पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: धन्यवाद।
1: हमारे मित्र गौतम राय बोले जी, लोकेंद्र वर्मा जी
0: जी,
1: गंगाधर सावनकर जी
0: जी,
1: सुनील झा जी, दिलीप पहुजा जी, धीरज भाई रबारी जी, रामचरण विश्वकर्मा जी, पाटिल तारुकर जी, धनुज आपके चेलो जी, हम सभी की सुना चाहती।
0: चलिए, आपकी फ्रेंड लिस्ट बहुत लंबी है, आपके सभी दोस्तों को नजर है ये गीत।

0: हेलो झांसी,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मेरा नाम नितेश आर्या है।
0: नितेश आर्या, बताइए नितेश जी, आपका कॉल पहली बार लगा है या आप हमारे रेगुलर श्रोता हैं?
1: रेगुलर श्रोता है।
0: रेगुलर श्रोता है, इससे पहले कब कॉल लगा था आपका आखिरी बार?
1: आखिरी बार अभी याद नहीं है। आप कैसे हैं?
0: हम बहुत बढ़िया हैं, और आपसे

0: बात कर रहे हैं।
1: आपकी बात बहुत अच्छी है।
0: धन्यवाद हमारी तारीफ करने के लिए। और बताइए,
1: आप कार्यक्रम बहुत अच्छा प्रस्तुत करती हैं।
0: हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी कोशिश रहती है कि आप श्रोताओं की फरमाइशों का, आप श्रोताओं के सुझावों का हम ख्याल रखें, और आपसे बातचीत करना हमें भी बेहद अच्छा लगता है, जिस तरह आपको हमसे बात करना अच्छा लगता है। आप श्रोताओं की कॉल्स का इंतजार रहता है और आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। क्या करते हैं आप?
1: अभी पढ़ाई कर रहे हैं।
0: पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं?
1: अभी नाइन्थ में है।
0: अच्छा, नाइन्थ में है। ओके, स्टूडेंट हैं आप।
1: आज मुझे गाना सुनना है।
0: जी, गाना सुन बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम है एक लहू के दो रंग।
0: लहू के दो रंग, कौन सा गाना?
1: जी जी,
0: कौन सा गाना इस फिल्म का?
1: हसीनों को आते हैं क्या क्या बहाने, खुदा भी ना जाने तो हम कैसे जाने।
0: चलिए, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: वर्मा बोल रहा हूँ, धानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से मैडम।
1: ओके, उज्जैन से बोल रहे हैं आप, महाकाल की नगरी उज्जैन।
0: जी मैडम जी, महाकालेश्वर जी की नगरी है।
1: जी जी, बताइए लोकेन्द्र जी, क्या कर रहे हैं आप इस समय?
0: बस बिल्कुल मैडम जी, आपके प्रोग्राम में फोन लगा रहा था, फोन लग गया
1: जी।
0: और आज 14 जून है, 14 जून को हम ब्लड डोनर डे मनाते हैं।
1: जी
0: जी,
1: तो आप आज आप हमारे श्रोता दोस्तों से इस अवसर पर कुछ संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ बिल्कुल मैडम जी, ये जो आज का दिवस मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है
1: जी,
0: और इसमें हर व्यक्ति को ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से किसी की व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, और ब्लड डोनेट करना अपने स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक रहता है।
1: जी जी,
0: क्योंकि जितना ब्लड आप डोनेट करेंगे तो उतना खून आपके शरीर के अंदर 24 घंटे के अंदर वापस उपलब्ध हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है, बन जाता है
1: जी।
0: और इससे आपको स्वास्थ्य बहुत ठीक रहता है, हार्ट अटैक की संभावनाएं कम रहती है मैडम
1: जी। बहुत ही अच्छी बात बताई हमारे श्रोता दोस्तों को आपने। रक्तदान करना न केवल फर्ज है बल्कि ये बहुत ही बड़ा पुण्य का कार्य है। आपने रक्तदान किया है?
0: हाँ मैडम जी, मैंने एकाध बार ही किया है, बस ज्यादा नहीं कर पाया हूँ मैं, क्योंकि मेरा वेट लो है इसलिए मेरे को मना कर देते हैं वो।
1: अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आपने सोचा और आप जागरूक हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही अपने साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी रक्तदान के बारे में जागरूक करते रहिए, और सामाजिक संदेश अपने परिजनों को और अपने आसपास के लोगों को पहुंचाते रहिए। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: गाना सुनना है मैडम, ये फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथोनी, इसमें एक गीत है, ये सच है कोई कहानी नहीं, खून खून होता है पानी नहीं।
1: जी, का ये गीत हमारे आज के विषय
0: के अनुरूप है।
1: जी चलिए, हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत, सुनिए और एंजॉय कीजिए।
0: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।

0: मिलते हैं बिछड़ने के लिए, बिछड़ते हैं फिर मिलने के लिए, यही जिंदगी का खूबसूरत सिलसिला है। आज की मुलाकात बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नई बातों नए उत्साह के साथ। तो श्रोताओं, आप भी बनिए हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा, जुड़िए हमारे साथ कार्यक्रम हेलो झांसी में। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होती है प्रत्येक रविवार व बुधवार को दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच, और ये प्रोग्राम आप सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को रात्रि 9:30 से। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए हमारा फोन इन नंबर है 0510232068। तो इस नंबर पर कॉल करके आप जुड़िए हमारे साथ। श्रोताओं, एक छोटी सी गुजारिश है कि जिन श्रोताओं का कॉल इस कार्यक्रम में आज शामिल हो गया है, वो एक निश्चित अंतराल के बाद दोबारा कॉल करें, ताकि हमारे नए श्रोताओं को भी कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिल सके। तो देर किस बात की, आप भी कॉल करें और अपने दोस्तों से भी कॉल कराएं। और दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज, इंस्टा पेज और यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहिए, और याद रखिए कि आपका प्यार ही हमें कार्य करने की ऊर्जा देता है। तो फिर मिलेंगे, आपकी आवाज है, मंच हमारा है, और आपके दिल से दिल का ये सफर बहुत ही प्यारा है। अगले अंक में आपसे मुलाकात जल्दी होगी। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी, और ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाया आपकी रेडियो सखी किरण ने। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो झांसी।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो झांसी। सर्व प्रस्तुति सहयोग किरण लता का था, प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। एफएम 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत। आइए सुनते हैं जसवंत सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाज में ये गजल।

अभी आपने ये गजल सुनी जसवंत सिंह और अनुराधा पौडवाल की आवाज में, कलाम जमीर काजमी का था। और आइए अब सुनते हैं जसवंत सिंह की आवाज में प्रशांत वसला की ये गजल।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। लीजिए अब सुनिए जमीर काजमी का कलाम, आवाज अनुराधा पोटवाल की है।

कार्यक्रम में एक और गजल सुनिए, अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की आवाज में, रचना रानी मलिक की है।

अनुराधा पौडवाल और जसवंत सिंह की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। FM 103 पर आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए एमओयू इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में एआई के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल

0: सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इजरायली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said, elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। ये हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate in a working session on the theme Forging New Partnerships and Rebuilding International Solidarity, along with leaders of G7 countries, partner countries and representatives of the World Bank and the African Development Bank. The French city of Evian is all set to host the 52nd G7 summit beginning tonight. The meeting is getting underway as the US and Iran have finalized a deal to end the West Asia conflict. French President Emmanuel Macron will formally welcome leaders of G7 countries, which include the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Italy and Japan, along with the presidents of the European Council and the European Commission later tonight. India, Brazil and South Korea, Kenya and Egypt have been invited to the summit as partner countries. Defense Research and Development Organization DRDO today successfully conducted the flight test of the indigenously developed long-range land attack cruise missile from APG Abdul Kalam Island in Odisha. In a social media post, Defense Ministry said that the missile achieved all mission objectives